अक्सर हम लोग भाग दौड़ में इस सुहानी भोर को जीना ही भूल जाते हैं। देर से उठना, फिर वही दफ्तर या कॉलेज की जल्दबाजी। लेकिन कभी कभी जरा अलार्म को आधा घंटा पहले सेट करके देखिए और फिर देखिए ये राहें क्या कहती हैं।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन सुबह के 6:35 और 30 सेकेंड हो चुके हैं। समाप्त करें प्रोग्राम सुबह गाही।
1: प्रोग्राम सुबुगाही सुनने वाले सभी सामीन की खिदमत में हमारा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम के आगाज में कुरान मजीद की इन आयात मुबारक की तिलावत और तर्जुमा सुन।

प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे सुबह का ही। ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है, मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

घर घर तक पहुंचने वाली यह आवाज आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की है। मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन बारी बारी से नशर किए जाएंगे। जरा सा इंतजार फरमाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने के

प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन नाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: summer zone of Jammu Division from 1st of June to 5th of July. I beg your pardon, to 15th of July. The minister said the decision has been taken in view of the onset of the summer season and to ensure the well-being of students, teaching faculty and college staff. The minister further informed that regular academic activities in all colleges will resume after the conclusion of the vacation period on 15th of July. In IPL cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bengaluru in the final of 2026 season at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. RCB's batting has been one of the strongest in the tournament, with Virat Kohli leading the charge. In the bowling department, Bhuvneshwar Kumar and Josh Hazlewood have been among their key performers with a new ball. Meanwhile, Gujarat Titans will once again rely on key batters like skipper Shubman Gill, Sai Sudarshan, Jos Buttler, while the all-rounder Jason Holder has strengthened their bowling attack with important wickets in the second half of the season. In badminton, India's men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Indonesian duo of Muhammad Shohibul Fikri and Fajar Alifian in the final of the Singapore Open today. The Indian pair is yet to win a title since clinching the Thailand Open in May 2024. And that is the end of this news bulletin.
1: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्स और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्स पर। समीन, सुबह के 7:10 हो चुके हैं। नश होता है लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह मुख्तसर वक्फे के फौरन बाद।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
4: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
3: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
4: क्या
5: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-112100 पर।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
9: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
8: नहीं माँ, वैसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
9: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
8: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
9: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
8: माँ, अब 7 रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
9: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
8: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
9: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
8: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
10: डोंट वरी,
11: फीस तो देखो।
12: क्या हाल है, क्या हुआ?
10: फीस की टेंशन,
12: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
13: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
10: वो कहाँ है?
13: मिठाई।
14: RBI कहता है
15: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, लाइव शो पयाम सुब के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ हैं
1: जी, मैं हूं हिलाल और कंट्रोल रूम में हमारे साथ हैं नसीम
0: जी। दोस्तों, नया दिन, नई उम्मीदें और संडे का दिन। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम नशरियाती दोस्त लम्हे हमारे साथ लाइव शो सुन के अपने अपने काम वो भी मुकम्मल करेंगे।
1: सकीना जी, वक्त ही जिंदगी है।
0: बिल्कुल,
1: जो वक्त जाया करता है हकीकतन जिंदगी का जिया करता है।
0: देखिए, सुबह सुबह इतनी पॉजिटिव बात आपने की,
1: बिल्कुल
0: दिल को छू गई। ये 100% सही आपने कहा। वैसे हर एक इंसान की तमन्ना होती है कि उसकी जिंदगी सुख से गुजरे। सुख हासिल करने के लिए इंसान के पास तीन बुनियादी चीजों के अलावा हर कोई सहूलत मुहैसर हो तो सोने पे सुहागा। वो कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, बाकी लग्जरीज भी आपके पास हो तो कह सकते हैं ना कि सोने पे सुहागा।
1: बिल्कुल सही, ये सब चीजें कड़ी मेहनत के बाद हासिल होती है। ये कह सकते हैं कि जिंदगी के इम्तिहानात कभी खत्म नहीं होते
0: जी,
1: क्योंकि हर दिन एक नया वर्क है।
0: देखिए, हर हाल एक नया सबक है। कभी खाली हाथों में हिम्मत का इम्तिहान, कभी बड़े हाथों में इंसानियत का इम्तिहान। जो ये बात समझ जाए कि दोनों हालतें आरजी हैं, न गम रहने वाला है न खुशी रहने वाला, कि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो न तो वो एक इंसान जो ये समझ ले कि ऐसा हो सकता है, आरजी सब कुछ है, तो न तो वो कामयाबी पे इतराएगा न वो नाकामी से टूटेगा। बस वो इम्तिहान देता रहेगा खामोशी से, ईमानदारी से और इंसान बनकर।
1: बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया, क्योंकि बहादुरी ही सच्चाई है, एक इंसान को आगे ले जाती है। जिंदगी के कहीं भी इम्तिहान से घबराना नहीं, खुद को गंवाना नहीं।
0: देखिए, जब हम सुबह सुबह ऐसी पॉजिटिव वाइब्स अपने नशियाती दोस्तों में डाल देते हैं माइक्रोफोन के जरिए, तो एक हिम्मत सी बन जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान जो सुबह सुबह था तीन चार साल मूड खराब है, नेचुरल प्रोसेस है। कुछ वाकयात ऐसे होते हैं डे टू डे लाइफ में या डे टू डे रूटीन में कि जैसे मूड खराब होता है।
1: बिल्कुल सही होता है।
0: जब आपके साथ कोई ऐसा होता है जो पॉजिटिव वाइब देता है, अच्छी बात करता है, समझदारी की बात करता है, हिम्मत बढ़ाता है, या ये कहता है कि मैं हूं ना
1: सही में
0: इशु आख अलमिया उनके ना सगर का परेशान चो आसान अंदर किन चो यहां कि मदीना का हौसला।
1: सही में
0: हौसला देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कोशिश गैस रोजिन की अगर कहा परेशान चो, अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो मुझसे थे कि इंसान रोजित के शफकत चिकात करे।
1: बिल्कुल सही,
0: के हिम्मत है कि तेमिस दियत के कशिर पोछ ना अगर कहूं इनते सात दिन मगर अगर सु पुलिस पर तेमिस सीत रोजे हिम्मत बंदाई सु इंसान के ब्रो पके।
1: देखिए, वो कहते हैं ना कि इंसान की जो यादों की डायरी होती है, यादों का एक एल्बम उसके पास होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो उसमें काफी सारी खट्टी मीठी यादों का एक मिक्सचर होता है।
0: अच्छा भी है लाइफ में, बुरा भी है।
1: बिल्कुल सही।
0: और जब आपके पास अच्छा है तो इतराइए मत, परेशानी है तो घबराइए मत।
1: बिल्कुल,
0: अल्लाह पे भरोसा रख के आप आगे बढ़िए, फिर देखिए कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।
1: जरूर।
0: फिलहाल हम अपने सुनने वालों के लिए एक कश्मीरी नगमा पेश करते हैं। क्या इसकी वारिश सुबह आसान लिसनर यम इंतजार अच्छे आसान की मंकुस कोशर बर्थ ही पेश
1: कर
0: डेल वायत ऐसनिश तो गॉड निश डेल चाहिए बुझ तो इस तुझे तो ऐसे थे।

0: जी दोस्तों, लाइव शो या यूं कहिए कि लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर और एफएम 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ से एक साथ। और आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ है
1: हिलाल।
0: संडे का दिन है और संडे का थीम होता है गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड। हमने सोचा हिलाल कि सुबह सुबह किसी और मौजू पे बात करने से पहले आगाज हमने पॉजिटिविटी से किया।
1: बिल्कुल सही।
0: तो अब शुरुआत करेंगे खुशी की खबरों से।
1: बिल्कुल सही
0: है ना कि उठते ही कोई इधर उधर की खबर ना जाए। हम चाहते हैं कि सभी का मूड अच्छा

0: रहे खुशी की खबरें सुनें। तो कश्मीर और दुनिया भर से जो ताज़ा तरीन खुशी की खबरें हैं, हौसला अफजा खबरें हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ईद उल अज़हा हो गई, तो उस हवाले से यह खबर है कि वादी में ईद के त्यौहार के मौके पर लाइव स्टॉक कह सकते हैं कुर्बानी के जानवरों की जबरदस्त तजारत देखने में आई, जिसका हजम 384 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था और वादी में तकरीबन 1200 से ज्यादा ट्रक भेड़ के लाए गए थे, जिससे मकामी मईशियत को नुमाया
1: फरोग मिला। बिल्कुल।
0: और एक खबर है जो आलमी सतह
1: के हवाले से, जो बिल्कुल ये आलमी सतह पर माहौल दोस्त तवानाई के इस्तेमाल में तारीखी इजाफा हुआ। सूरज और हवा से बिजली पैदा करने की शरह कोयले से बहुत आगे निकल गई है। तुर्की जैसे मुल्क ने रिकॉर्ड शमसी तवानाई के शहर कायम करके दुनिया को हैरान कर दिया है।
0: देखिए, वाकई में ये खुशी की खबर है जब हम डिपेंडेंट है एक ही सोर्स बिजली का, जो यहाँ पे कश्मीर में है।
1: बिल्कुल।
0: तो रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे भी लोग अब उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर सहूलत मुयसर है, आप बिजली पैदा कर सकते हैं, तो उस तरफ भी जाना चाहिए। अब दूसरी खबर खेल शायकीन के लिए, वो ये कि फुटबॉल के सबसे बड़े मेले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नशरियाती हकूक बाजाबता तौर पर हासिल कर लिए गए हैं, जिससे फुटबॉल शायकीन दुनिया भर की तरह पूरे जोश खरोश के साथ ही मुकाबले अपने टीवी और मोबाइल फोन्स पर भी देख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये वाकई में खुशखबरी है उनके लिए जो खेलों के वाकई दिलदार
1: और खासतौर से जो अभी की बात आपने की फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, ये बहुत ही खासतौर से कुछ बल्कि यूं कह सकते हैं लाखों की करोड़ों की तादाद में जो इस खेल के जो मद्दा है शायकीन है, ये उनके दिल और धड़कन में ये खबर जाकर बस जाएगी, क्योंकि वो इस चीज के ज्यादा शौकीन रहते हैं।
0: स्क्रीन पे देखना चाहते हैं बैठे, तो उनके लिए तो वाकई में ये खुशखबरी है।
1: अब जरा वादी के हवाले से भी एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं।
0: जी,
1: वादी में सयाहत की सनत तेजी से बहाल हो रही है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे मकामात पर सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच रही है, जिससे मकामी मईशत और रोजगार को जबरदस्त फरोग मिल रहा है।
0: हम तो दुआ करते हैं लाल कि ऐसा ही ये सीजन चलता रहे आगे भी, क्योंकि यहाँ के जो यूथ है, हम कहते हैं ना बेरोजगारी
1: है। बिल्कुल।
0: देखिए, दुकानदार हो, चाहे बोट वाला हो, चाहे घोड़े वाला हो,
1: मरकबान,
0: सभी के पास कुछ न कुछ पहुंचता है।
1: बिल्कुल पहुंचता है।
0: दकार चुन रोजान का, तो यिम से चुफ़े दे वातान। तो हम तो कह सकते हैं एक रीढ़ की हड्डी हमारी टूरिज्म मशहूर है। तो उस हवाले से ये जो खुशी की खबर आपने शेयर की, वाकई में एक अच्छी खबर है जो सुनने वालों तक पहुंच गई। और ये कह सकते हैं कि आपने टूरिज्म की बात की, सुनने वालों तक ये बात पहुंचा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इंतजाम भी किए जा रहे हैं और सालाना यात्रा की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इंतजामी और मकामी बाशिंदे मिलकर यात्रा को पुरअमन और खुशगवार बनाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, जिससे मकामी लोगों की मेहमान नवाजी वो भी काबिले दीद होगी। वैसे कश्मीर तो मेहमान नवाजी के लिए
1: माना जाता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही। जम्मू कश्मीर के बदरवा में लेवेंडर की काश्त से वाबस्ता किसानों और सयाहों के लिए खसूसी लेवेंडर फेस्टिवल 2026 का इनकाद किया जा रहा है, जिसने इस इलाके को मुल्क भर में एक नई पहचान दी है।
0: वाकई में खुशी की खबर है। और ये कह सकते हैं कि जब ये फेस्टिवल्स होते हैं, खुशी की खबरें हम शेयर करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो यकीनन जो जवान पीढ़ी है, पहले देखिए महदूद एक हुआ करता था, अब लिटरेचर फेस्टिवल भी होता है। अब ये जो आपने लेवेंडर फेस्टिवल की बात की, जब आप किसी चीज में एक्सेल करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आपने कश्मीर में देखी, बहुत सारे बच्चियों ने या लड़कों ने कुछ स्टॉल्स खोले थे, उनको भी नुमाइश के लिए पेश किया गया कुछ चंद दिन कबल। तो एक खुशी की लहर जवान लोगों में, देखिए एक ही ट्रैक नहीं है कि नौकरी के पीछे भागना है, अगर उनकी पीठ थपथपाई जाए इस मामले में भी कि वो कुछ करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे।
1: जरूर, इसमें मतलब मैं ये कह सकता हूं आपकी बात के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए रोजगार के बेशुमार मौके हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा बाहर निकलना है और देखना है, मौके को तलाशना है।
0: अपने टेस्ट को चेंज करना। कई लोग ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई तो हम फिट है, ठीक है, आराम से जहनी सुकून है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। वहां पे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, तो उस तरफ भी आप अटेंशन मबजूल कीजिए। और बेशक कश्मीर अक्सर

0: जी असम बचन पानस निश थावने
1: बराबर, मतलब बिल्कुल सही कहा,
0: एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिए बाहर निकलने की। अब चूंकि संडे है, सभी ये बात हमारी इंशाल्लाह सुन रहे होंगे, वो इस बात पे अमल भी करेंगे कि घर से निकलना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको मौके मिलेंगे। फिलहाल एक प्यारा सा ट्रैक आपके लिए, सुन लीजिए, एंजॉय कीजिए।

0: पयामे सुब।
1: जी दोस्तों, आप लाइव मॉर्निंग शो समाप्त कर रहे हैं पयामे सुब, और आपको बताते चलेंगे कि आज 31 मई 2026 यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। जी सकीना जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में, आपका क्या ख्याल?
2: देखिए, तंबाकू नोश इस बात से या इन बातों से बेखबर तो नहीं है कि सिगरेट नोशी जो है, तंबाकू नोशी जो है, वो सेहत के लिए मुज़िर है। ख्वातीन की बात करें तो सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी एक कह सकते हैं कि अगर खातून हामिला है तो बच्चा ज़ायल होने का खतरा रहता है।
1: देखिए, इसी एतबार से अगर देखें तो मर्द हजरात को भी कई तरह के अमराज लाहक हो सकते हैं, याददाश्त मुतासिर हो सकती है। तंबाकू नोशी का दूसरा पहलू यह भी है कि ये एक फजूल खर्ची है, और फजूल खर्ची कहीं भी या किसी भी मुआशरे या मजहब मिलत में बिल्कुल मना है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब ये सवाल पैदा होता है कि सिगरेट नोशी तर्क कैसे की जाए। माना कि सरकार उनके सख्त कवानीन हैं, वो किसी हद तक इसमें रोक या रुकावट पैदा कर सकते हैं, लेकिन इससे बात बनती नजर नहीं आती है। अब देखिए, हम कहते हैं कि नशा मुक्त भारत,
1: हाँ बिल्कुल,
2: वो अभी मुहिम चालू है, शुरू है, हो चुकी है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मार्चेस होते रहते हैं, लेकिन जब भी वो मार्च निकलता है तो कोई अफराद जब हम मिलते हैं तो कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है जो इस ग्रुप में होते हैं, जो इस भीड़ में होते हैं, वही सिगरेट पी रहे होते हैं, वही शराब नोशी करते हैं, तो एक दिल आजुर्दा हो जाता है, बहुत सोचने पर इंसान मजबूर होता है कि इंसान करे क्या।
1: यानी मतलब जाहिरी तौर पर वो भी इस मुहिम में, इस तहरीक में शामिल तो हैं, लेकिन इरादे उनके कुछ मुख्तलिफ होते हैं।
2: कह सकते हैं कि अगर एक इंसान ये तय करे कि तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी से परहेज करूंगा या छोड़ दूंगा, तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये इरादा एक इंसान का है, आपका है।
1: बिल्कुल, और ये इरादा जितना मजबूत होगा उतनी ही जल्द आप ये बुरी आदत जो है तर्क कर सकते हैं।
2: सही बात है, और इसका मतलब ये हुआ कि सिगरेट छोड़ना न छोड़ना आपके कुव्वत इरादे पर मुनासिर है। जितना ये आपका मजबूत होगा उतनी ही तेजी से आप ये छोड़ देंगे बुरी आदत।
1: बिल्कुल सही।
2: वैसे अपनी जगह की बात है, ये लिसनर्स से मैं मुखातिब हूँ, किसी से कहिएगा नहीं, वही कि तंबाकू पीने से या सिगरेट पीने से न तो गम बुलाया जा सकता है और न ही सेहत इससे बेहतर होती है, या कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर कसुनाकस हाथ में सिगरेट लिया या मुंह में हुक्का लिए या हुक्के की पाइप लेकर वो आगे बढ़ता, और आप कह सकते हैं कि सारे फिर सिगरेट पी रहे होते।
1: बिल्कुल,
2: ऐसा कुछ नहीं है,
1: कुछ भी नहीं।
2: इसको आप जहन से निकालिए कि आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप फिक्र को धुएं में उड़ा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, कभी बच्चे देखा देखी में भी इस तरह बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल सही।
2: जब हम टीन एज की बात करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि वालिद साहब कहते हैं कि सिगरेट की डिब्बी ला के दीजिए, तो बच्चा क्या सीखेगा?
1: गलत बात है ना,
2: गलत
1: ये
2: बात
1: आप
2: है।
1: एक गलत दिशा दे रहे हैं बच्चे को,
2: बच्चे को कि ये मुशुबासा की शायद सही, लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आप अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं कि सिगरेट नोशी से, शराब नोशी से, इस बुरी लत से आप दूर रहे, तो पहले प्रैक्टिकली आपको ये दिखाना पड़ेगा, घर में माहौल तैयार करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखिए, सड़क पे तो आप निकलेंगे जुलूस के सूरत में कि हम नशा मुक्त भारत की बात करेंगे, कश्मीर को इससे पूरी आजादी दिलाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं पर्सनली ये बात शेयर कर रही हूँ कि ये घरों से स्टार्ट करना।
1: बिल्कुल सही है।
2: तो फिलहाल एक कश्मीरी गीत अपने सुनने वालों के लिए, उम्मीद करते हैं कि सिगरेट नोशी से, बुरी आदतों से आप दूर रहेंगे, और जितना हो सके संडे हैं, पेरेंट्स से बात सुन रहे हैं अपने बच्चों को।
1: सकीना जी, एक बात यहाँ पर कतकलाफी, माफ
2: जी जी जी, बात कीजिए।
1: यहाँ पर आपने जैसे सिगरेट नोशी की बात की, मैं यहाँ पे अपने सामीन से यहाँ पे मुखातिब होना चाहता हूँ कि जो सिगरेट या जो दिगर इस तरह की मसनूआत है, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ शक्लें हैं, उन तमाम चीजों से हमें बचना है, अपनी नई पौध को बचाना है, अपने घर और अपने माहौल को एक सही मुस्बत कदम की तरफ बढ़ाना है।
2: बिल्कुल, एक पर्सनैलिटी के तौर पे अगर आपको उभरना है, अच्छी शख्सियत बनना है, तो बुरी आदतों से बचना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल सही।

0: लीची
1: बिल्कुल सही,
0: बहुत विटामिन से वाफिर मिकदार में इसमें होता है जो जिस्म की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है। और लीची में
1: एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिल्द को साफ और तरवताजा रखते हैं,
0: और इसके अलावा पोटेशियम और दीगर अज्जा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं, इसमें वाफिर मिकदार में होते हैं।
1: इसके अलावा कम कैलोरीज और ज्यादा पानी होने की वजह से लीची वजन घटाने में मदद देती है।
0: अक्सर खवातीन फिर कोशिश करते हैं, मर्द हजरात भी कोशिश करते हैं कि वजन वाल हो। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कारामद होते हैं, और लीची की अगर बात करें इसमें मौजूद कॉपर खून की सुर्ख खलियात बनाने भी मदद देता है, मैग्नीशियम भी इसमें होता है, फॉस्फोरस भी होता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में वो बहुत कारामद है लीची। तो सीजनल फ्रूट्स खाते रहिए। फिलहाल आपको बताएंगे कि
1: 7:45 हो रहे हैं और ये वक्त है फिलहाल खबरों का, सुनते हैं कश्मीरी में खबरें।
0: जी थोड़े से वक्फे के बाद अभी कुछ सेकेंड्स बाकी है, जी खबरें सुन लीजिए, हम आपके साथ हैं।
2: ये छे आकाशवाणी सुबह की 7:05 सपद खबर नाम है चुस्ब तजम्मुल अहमद गोड अख नजर खास खास खबरन हंजन सुर्खियन पे। वजीर अजम नरेंद्र मोदी करन आज पन्निस रतवार रेडियो प्रोग्राम मन की बातस मज मुल्क तो मुल्क नेबर रोजन वालन लोकन सित ख्याल बावत। डी के शिव कुमार चे कर्नाटकस मज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी हिंद सरबराह चारन आमित तिम तुलन बुधवार दो वजीर अला सिंध हैसियत हल। खजान वजारत वोन आलमी गैर यकीनी बावजूद भारत मयशी कारकर्दगी जबर रूजम तो खादन हिंदिस मुतवजन इस्तेमाल वोत बो दिन बाप सपद अकिस रेतस जारी रोजन वोल खेत बचाव अभियान चंद्रवार दो पे शुरू। वजीर अजम नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रतवार रेडियो प्रोग्राम मन की बातस मज आज सुबह 10:00 मुल्क तो मुल्क नेबर रोजन वालन कुमिलन सित पनन ख्याल यह अमे प्रोग्राम अखत 34 शुमार। यह प्रोग्राम यी आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सरसी नेटवर्कस अलाव AIR न्यूज़ वेबसाइट बे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एपस पे बराह रास्त नशर कर। अमे अलाव यी AIR न्यूज़ DD न्यूज़ PMO तो इतला तो नशरियात वजारत सन्जन यूट्यूब चैनलन पे सद सोद नशर कर। आकाशवाणी करी प्रोग्राम की हिंदी नशरिया पते इलाकई जबान मज अमुक तर्जम नशर। कर्नाटकस मज डी के शिव कुमार कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी हिंद सरबराह मुंतखब कर आमित तिहुंद इंतखाब छु सिद्धारमैया सिंध इस्तीफा पत सपुदमुत। रियासत के पार्टी लेजिस्लेचरों कर अत सिलसिलस मज सिद्धारमैया तो डॉक्टर जी परमेश्वर सिंध दस पेश कर आमस करारदाद मंजूर। डी के शिव कुमार सिंध दफ्तर दस जारी एक प्रेस रिलीजस मज यमे कथि हूं तस्दीक कर आमुत कानून साजिया के अरकानों तिम पन्न लीडर मुंतखब करमित पत वोन बेंगलुरुस मज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हिंद जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपालन जे नाम निगारन सत कतान जे डी के शिव कुमार गसन रियासत किस गवर्नर समखने तो करन हुकूमत बनान दावा पेश। तमो कोर ऐलान जे शिव कुमार तुलन नविस वजीर आला सिंध हैसियत 3 बुधवार दो हल। मरकजी खजान वजारत वोनमुत जे भारत इक्तिसादी कारकर्दगी छे मगरबी एशियास अंदर जारी तनाज बावजूद ते बेहतर रूजमच। वजारत सिंध माहान इक्तिसादी जायज मुताबिक मई 2017 दौरान भारत जर मुबादल जखीर किस बेहतर सतहस पे रूदमित। वजारत वोनमुत जे आलमी माहौल खाम तेल नरख हुरन सत बेहन गैर यकीनी बनोमुत यमकिन अक्सर बजन मीशतन हुंद शरह नमो कम सपुदमुत तो अम् भारतीय मीशत बापत ठर पैद करमित। वजारत मुताबिक कलीदी इंडस्ट्रियन हुंद इंडेक्स मार्च रेतस मज 0.4% कम सपुदमुत हालांकि बुनियादी ढांच तो मैनुफैक्चरिंग सरगर्मी छे पन्ने रफ्तार सान जारी। तम वोनमुत जे तमाम तर शिटनार बावजूद भारत शरह नमो मुतवजन मुल्क तमाम तर चैलेंजो बावजूद मुशी एतबार मुस्तकम। ज़िरात कुमिलन हिज बजाई हिंद मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहानन वोनमुत जे खेत बचाव अभियान गच कुमिलन खहन तो गामन रलावन वाजिन अख जामे तहरीक।

आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय 7:55 और 35 सेकंड हो चुके हैं। एक नजर डालते हैं अब के बाद हमारे यहां से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए आज सुबह 11 बजे कौम से मुखातिब हो रहे हैं। याद रहे ये मन की बात प्रोग्राम का 134वां शुमारा होगा। हिंदी नशरिया के फौरन बाद आकाशवाणी श्रीनगर से 11:30 पर मन की बात का कश्मीरी तर्जुमा भी पेश किया जाएगा। याद रहे मन की बात का कश्मीरी तर्जुमा रात 8 बजे दोबारा नश्र होगा। मन की बात का पहाड़ी तर्जुमा सुपर 4 बजे, शीना तर्जुमा 4:30 पर और गोजरी तर्जुमा 5 बजे नश्र होगा। और अब मामूल के प्रोग्राम, रात 9:30 पर प्रोग्राम नश्र होगा डिस्कशन टाइम। मौजू है साहित्य एकेडमी और कश्मीरी जुबान। शुरका है प्रोफेसर सतिंदर सिंह नूर, मिस्टर ए कृष्णमूर्ति, श्रीमती रेनू भान, डॉक्टर अजीज हाजनी और रफीक राज। शब 10 बजे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम नश्र होगा आपकी फरमाइश, मेजबान जावेद अंद्राबी। लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह में आप आज सुबह 8:15 पर प्रोग्राम समाप्त करेंगे। सन तारीख मौजू है आर्कियोलॉजी इन कश्मीर, शरीकी गुफ्तगू है मोहम्मद सलीम बेग और सतीश विमल। स्पॉन्सर प्रोग्राम खामोशी कुदरत की जुबा है आप सुनेंगे 8:45 पर। मकामी रोजनामों से तरतीब दी गई सुर्खियां नष्ट होती है सुबह 9 बजे। कश्मीरी मौसीकी पेश होगी सुबह 9:30 पर, रात 8:30 पर और रात 9 बजे। स्पॉन्सर प्रोग्राम जेके बैंक डायरी आप समाप्त करेंगे सुबह 9:45 पर। एक और स्पॉन्सर प्रोग्राम रेडियो साथी आप सुन सकते हैं सुबह 10 बजे। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना हफ्तवार प्रोग्राम होनहार समाप्त करेंगे सुबह 10:30 पर। प्रोग्राम की मेजबान है शौकिया कुरैशी। उर्दू गजलों से आप महजूज हो सकते हैं दिन में 12:10 पर और 12:40 पर। मगरबी मौसीकी का हफ्तवार प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शो आप समाप्त करेंगे दिन में 1:10 पर, तोहा मीरानी और मुख्तार मलिक के साथ।

इस सुबह खबर की पेशकश प्रोग्राम नई मंजिलें आप सुनेंगे दोपहर 2:30 बजे। फिल्म संगीत से आरास्ता प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए नश्र होता है सुपहर 3 बजे। शाम 6:05 पर प्रोग्राम नश्र होता है गमी भाई नहले खतरे और हालात हजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचता है शाम 7 बजे। तो समी नीति तफसील आज हमारे यहां से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वी 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। सुबह के 8 बज रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से अब ठीक 8 बजे हिंदी खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे। जरा सा इंतजार फरमाएं।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के

0: राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के

0: कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी

0: इसमें 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रेयासिस ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला की वबा फूट पड़ने के बाद सफरी पाबंदियां आयद करने या अपनी सरहदें बंद कर देने वाले ममालिक से इन इकदामात पर दोबारा गौर करने की अपील की है। जनाब गेब्रेयासिस का कहना है कि इस तरह के इकदामात बीमारी से निमटने की कोशिशों में रुकावट बन सकते हैं। मशरकी कांगो के बुनिया में इजहार ख्याल करते हुए जनाब गेब्रेयासिस ने कहा कि बुनिया के उनके दौरे का मकसद मुतासर बिरादरियों के साथ सीधे तौर पर मसरूफ अमल होना है और सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में बीमारी से निमटने की कोशिशों को मुस्तहकम करने में मदद करना है। जमहूरिया कांगो के सेहत हुकाम ने 900 से ज्यादा मुश्तबा इबोला मामलों में 200 से ज्यादा मुश्तबा अमवात रिपोर्ट की हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा ने राजधानी कंपाला में नए इन्फेक्शन समेत मजमूई तौर पर 9 मामलों की तस्दीक की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी कल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मशरकी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ मकाम पर आज छींटे पड़ने के साथ झालाबारी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ मकाम पर कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी चलने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियाती एजेंसी ने अगले 2 दिन के दौरान राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने की भी पेशगोई की है। केरलम में शदीद बारिश के इम्कान के तहत 6 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं शदीद बारिश और 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। अलबत्ता केरलम में बाजाब्ता तौर पर मानसून की आमद का ऐलान नहीं किया गया है। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 सीजन के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच खेला जाएगा। RCB ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और 3 दिन के वक्फे के बाद फाइनल में दाखिल हो रही है। टूर्नामेंट की मजबूत तरीन उनकी बल्लेबाजी रही है, जिसमें विराट कोहली की कारकर्दगी नुमाया रही है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड नई गेंद के साथ टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। दूसरी जानिब शुभमन गिल की क्यादत में गुजरात टाइटंस ने लीग मरहले में टॉप 2 में जगह हासिल की और क्वालिफायर 1 में शिकस्त के बाद वापसी करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम एक बार फिर अपने अहम बल्लेबाजों गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर इंतजार करेगी, जबकि ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सीजन के दूसरे हिस्से में अहम विकेट्स लेकर गेंदबाजी को और मजबूत किया है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। खातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल्कामे क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से शिकस्त देकर UEFA चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने ज़राअत और किसानों की फलाह और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को सुर्खी के साथ पेश किया है कि मुल्क भर में खेत बचाओ मुहिम 1 जून से चलाई जाएगी, जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने BJP के कौमी सदर नितिन नवीन के इस बयान को पहले सफ़े पर जगह दी है कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 मुल्क के हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान भारत की मीशत मजबूत मगर एहतियात जरूरी, वजारत खजाना के इस बयान के साथ रोजनामा इनकलाब ने लिखा है कि वजारत खजाना ने मुख्तलिफ माशी इशारों की बुनियाद पर भारत की मीशत के करीबी मुस्तकबिल को मजबूत करार दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंगलियांग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी

0: हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा।
1: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 8:45 हो चुके हैं। नश्रोता स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम खामोशी कुदरत की जुबान है।
2: खामोशी कुदरत की जुबान है, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं
3: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपन अतराल, सिकडाफर चौक, ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बर्षा नगर, नट्टीपोरा, श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011।
2: खामोशी कुदरत की जुबान है, प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। सामिन, खौफ, परेशानी, वसवसा, बेचैनी, क़ुर्ब व इज़्तिराब, अगर आम इंसान की ज़हनियत से इसके असबाब और दर्जात को मुतय्यन किया जाए तो अव्वल नंबर पर मौत का खौफ। इसी खौफ से हम लोग खौफ ज़दा हो जाते हैं और खाइफ होकर हम कार्डियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और दीगर रूहानी बुजुर्गों के साथ रब्त बना लेते हैं। हकीकत ये है कि वक्त से पहले और वक्त के बाद कुछ भी मुमकिन नहीं, और अहले ईमान इसी पर यकीन भी रखते हैं। हर एक ये बात जानता है कि मरना अटल फैसला है और ये फैसला भी हमारा नहीं, तो मरने से पहले ही मरना किस काम का? और मरने के खौफ से जो परेशानियां रोनुमा हो जाती हैं वो उस जिंदगी को भी खा जाती हैं जिसको फिलॉसफी में हाल कहा जाता है। और फिलॉसफी में एक साहब यहां तक कह गए कि वक्त न मुस्तकबिल होता है न माजी, वक्त वही है जो इस वक्त है। तो इस वक्त का वक्त इस वक्त बर्बाद मत करिए वरना मुस्तकबिल बर्बाद होगा। अगर माजी आप अपने जहन पर सवार करके इस वक्त कुछ भी सोच रहे हैं तो आप इस वक्त का वक्त भी खराब कर देते हैं। अगर ऊपर वाले ने फहम दिया है तो तलाश करें जिंदगी का मकसद, मकसद वही जिसे खुदा राजी हो जाए। स्टूडियो में तशरीफ फरमा है वादी के नामवर यूनानी तबीब डॉक्टर हकीम नसीर अहमद शाह साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम।
2: डॉक्टर साहब, जो हमने आगाज में कहा मौत का खौफ और इसका हल, क्या है इसका हल?
4: देखिए, बरसों पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, ऑस्ट्रेलिया के एक साइंसदान थे रेमंड मोदी
2: जी,
4: तो उन्होंने कुछ 1000 केसेस का मुताला किया था, तहकीक की थी इन पे। ये कौन से 1000 केसेस थे? नियर डेथ एक्सपीरियंसेस।
2: अच्छा।
4: बहुत बार हमने भी कहानियाँ सुनी होगी बचपन में या बचपन से लेकर आज तक कि फला शख्स मर गया और उसके बाद गुसल देते वक्त वो खड़ा हो गया।
2: बिल्कुल।
4: बहुत बार हमने ये भी सुना होगा कि कब्र तक ले आ गया मैयत को और वहाँ पर मैयत जो है फिर से
2: जी बिल्कुल जिंदा हुई।
4: तो ऐसे मामले यहाँ हमारे हाँ भी हुए हैं। तो ऐसे 1000 मामलों पे इन्होंने छानबीन की जिनका नाम रेमंड मोदी है।
2: अच्छा।
4: तो उनसे कहा गया कि भाई जब आप मर गए थे फिर आप जिंदा हुए। कई लोग तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने डॉक्टर ने उनको सर्टिफाई किया कि हाँ जी डेथ हो गई, डेथ सर्टिफिकेट भी ले गए। तो डेथ सर्टिफिकेट ईसीजी के बगैर तो होती नहीं
2: जी।
4: तो उसके बाद भी वो जिंदा हो गए।
2: अच्छा।
4: तो इस दौरान वो कहाँ थे, ये सवालात थे। तो 1000 केसेस में दो तरह के जवाब आ गए।

0: जी
1: एक वो जिन्हें हम नेक लोग कहते हैं
0: बिल्कुल
1: उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, और एक वो जिन्हें हम गुनाहगार कहते हैं, अल्लाह हमें माफ़ करें, उनका ट्रीटमेंट अलग होता है।
0: जी
1: जो नेक लोग कहते हैं कि जो ही उन्हें मौत के करीब होते हैं तो कुछ वजूद आते हैं,
0: अच्छा
1: यानी हम लोग चूँकि जो ईमान रखते हैं मलकुल मौत या फरिश्ते होते
0: बिल्कुल
1: हैं तो हम लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जो इन फरिश्तों में जो है ना कुछ दूसरे नाम भी बोलते होंगे, तो उनका कहना है कि कुछ वजूद, वजूद एक जाहिर सी बात है इंसानी जिस्म तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, वो आते हैं बहुत प्यार लेके, बहुत मोहब्बत लेके। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी मोहब्बत जितनी दुनिया में कभी किसी ने की नहीं है इनके साथ जो मरने वाला होता है,
0: जी
1: उससे भी ज़्यादा प्यार मोहब्बत से आते हैं पेश, और खुशबू लेके आते हैं, हो सकता है जन्नत की खुशबू,
0: बिल्कुल
1: और बहुत प्यार से बहुत बहला के बहुत इसको जो है कहते हैं कि यार ये यहाँ क्या रखा है, आओ हमारे साथ देखो कितने अच्छे मज़े हैं, है ना। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि एक खिड़की जैसी खोल ली जाती है और जन्नत के नज़ारे दिखाई दिए जाते
0: क्या
1: हैं
0: बात है
1: और
0: माशाल्लाह
1: जन्नत की खुशबू आती है, और ये आदमी अपनी जो चाहत है इनकी यानी खुशी खुशी उनके साथ चला जाता है,
0: क्या बात है
1: और जब चला जाता है तो ये एक तरह की मौत है जो रेमंड मोदी की किताब से मैं ये आपको बता रहा हूँ। और दूसरा जो ट्रीटमेंट है गुनाहगारों का वो बिल्कुल अलग होता है। उनका कहना है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है
0: जी
1: तो इस तरह की सिचुएशंस में उनको बिल्कुल खींचा जाता है,
0: अच्छा
1: जैसे चर्निंग हो, जैसे टोरंटो हो, यानी वो जो गोल गोल
0: गोल गोल
1: घूमने वाली कोई चीज़ हो, तो इनके रूह को या इनके एहसास को कोई चीज़ गोल गोल गोल गोल गोल गोल घुमा घुमा घुमा घुमा के ले रही है किधर, और एक काला टनल सा,
0: अच्छा
1: यानी जिसका कोई इंतहा नहीं,
0: ओहो
1: बस खींचती चली जाती हैं और गोल गोल घुमा घुमा के ली जाती हैं, और अंधेरा होता है वहाँ पर, कोई रोशनी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये दूसरा ट्रीटमेंट है।
0: जी
1: तो यहाँ जो बात पता चली वो ये है कि मरना तो हर किसी को है, एक गुनाहगार को भी और नेक नेकोकार, मगर जो ट्रीटमेंट है मौत के वक्त वो
0: वो
1: अलग
0: अलग
1: अलग,
0: अलग है बिल्कुल
1: दोनों के लिए अलग अलग
0: अलग
1: है,
0: अलग
1: यानी गुनाहगारों के लिए अलग है और नेकोकारों के लिए अलग है। एक और रिसेंटली एक स्टडी हमने पढ़ी थी तो उसमें इसी तरह से नियर डेथ एक्सपीरियंस एक ऑपरेशन टेबल पे किया जाता है जिसके कुछ अजा फ्रीज किए जाते हैं, जब फ्रीज अजा होते हैं तो ये रूह निकल कर ऊपर आ जाता है,
0: अच्छा
1: और ऊपर जब आ जाता है तो उसके बाद जो है ये वो जो ऑपरेशन टेबल पे प्रोसीजर होता है वो सारा कुछ देख लेते हैं। कुछ बातें सर्जनस एनेस्थेटिक्स या कुछ थिएटर बॉयज़ वगैरह आपस में करते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं कि ऑपरेशन ठीक होगा, कुछ बुरा बोलते हैं, तो बहरहाल ये किसी भी तरह से फिर वापस ये डिफ्रीज होने के बाद जो है फिर से ये रूह वापस आ
0: आ
1: जाती
0: जाती
1: हैं,
0: है
1: और
0: बिल्कुल
1: उसमें और फिर क्या होता है कि वो जो लड़ी जब वो अपने फिर से ज़िंदा हो जाती है, हम लोग यही लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर, तो फिर वो उन सर्जन से ये बात ज़रूर करती हैं कि तुमने तो ये कहा था ये नहीं बचेगी, और वही अल्फाज कहा कि तुम कैसे, तुम सुन रहे थे, कहने नहीं मैं बिल्कुल ऊपर थी
0: अरे
1: और
0: क्या
1: सारा
0: बात है
1: प्रोसीजर देख रही थी, आपने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या, मगर उसके मन से जो एक बात निकली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ,
0: जी
1: और वही बात है हमें, कहले इस दौरान मैंने इतना सुकून पाया, इतना सुकून हासिल किया जब मैं जिस्म में नहीं थी, वो एक लड़ी की बात है, कि जितना सुकून मुझे ज़िंदगी भर नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से कोई मजदूर जो कोई बोझ अपने पीठ पे लादता है, चाहे बोझ कम हो या ज़्यादा हो, एक जगह से दूसरी जगह तक इस बोझ को वो ट्रांसफ़र करता है, और हो सकता है

0: बोझ बहुत भारी हो और उस भारीपन की वजह से इसको अजियत हो, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि एक रूह को ये जिस्म वही बोझ है जो मौत के वक्त आजाद होता है।
1: क्या तो लिकुल दा इन दवाउन वलिकुल मर्जन शफाउन, अल्लाह ताला हन छुन त्युत कांति मर्ज बनोमुत यमिक न तेम शफा छु थोमुत सैन कम छ खोज तो छांडुन। तो यह क्यों दग दादिन बवासीर म्याद दादिन प्राणियन कल दादिन कोठ दोद कमर दोद गर्दन हिंस दाग पी सी ओ डी तो चमि हिंदन दादिन खतर अस सत रब्त करित याद थो यूनानी तो पंचकर्मा हस्पताल छे कुदरती उसूलन हिंदिस बुनियादस पे इलाज करान रेप्त करियो
2: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स लाल चौक अनंतनाग कोट रोड शुपया खानका फैजपना त्राल सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर उर्दू बाजार बारामूला मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर इकबाल कॉलोनी बर्शा नगर नट्टीपोरा श्रीनगर सेल नंबर 9419408011।
0: देखिये जब हम देन में समझने की कोशिश करें इस हालत को तो बरजक जिसको हम परदक बोलते हैं तो आलम बरजक यहाँ से शुरू हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस्म जो रिपेयर रिजनरेट होता रहता है, जिस्म बदले जाते हैं, एहसास वही रहता है, उसी एहसास का नाम जो है रूह है। और जब ये जिस्म ख़त्म भी हो जाता है, एहसास ख़त्म नहीं होता है, रूह ख़त्म नहीं होती है, रूह आलमी अरवा से मिल जाती है। तो आलमी अरवा क्या है? जैसे ये कमरा है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
1: जी,
0: अगर इस के मालिक को कभी पसंद आए कि इस बिल्डिंग को इस कमरे को हटा के दूसरा बनाए तो ये स्पेस कहाँ जाएगी? ये स्पेस यूनिवर्सल स्पेस से मिलेगी। इसी तरह से रूह है, कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिल जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कॉन्शियसनेस कभी मरती नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और हम लोग इसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक तिनका है, तो तिनका जो है पूरे कायनात के साथ मिल गया, वहाँ क्या है हमारे इल्म से बिल्कुल बाहर है,
1: बाहर है बिल्कुल।
0: तो जाहिर सी बात है हम जो बात बताना चाहते हैं वो ये है कि अगर सच्चा ईमान है, अगर इस बात का ईमान है कि हमें मुलाकात करनी है उस खालिक के साथ जिसने हमें पैदा किया है,
1: माशाल्लाह,
0: तो मौत का खौफ कोई नहीं है। खौफ उसको होना चाहिए जिसने अभी तौबा नहीं की है। तो बेहतरीन मौका है, जब भी मौका मिले तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो। तो तौबा ही एक सूरत ऐसी है कि जिससे एक इंसान ज़हनी तौर, नफ्सियाती तौर, रूहानी तौर फिर से जन्म ले जाता है। और अगर ऐसी सूरत हाल हमारे जहन में, हमारी नफ्सियात में, हमारे जिस्म या उनके सेल्स में ट्रांसमिट हो जाए ये सोच, तो इंशाल्लाह हमारा भी वक्त जब भी आएगा तो शायद इत्मीनान की मौत हम भी मर जाएंगे। और मगर ये वाली जो सिचुएशन है, यानी वो जो बेइत्मीनानी है, वो जो खौफ है, वो शायद जहन में ना रहता। तो कोशिश हमें हर हाल में ये करनी चाहिए कि वही काम करें जिस पे अल्लाह राज़ी हो, जिस पे खुदा राज़ी हो, और अगर उसकी रजामंदी हमें मिल गई तो फिर किसी चीज़ का न खौफ होगा न डर होगा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। जी तो चाहता है कि और मैं यहाँ बैठूँ आपके साथ और सवाल करूँ और आपके जवाब सुनूँ, लेकिन क्या करें, जैसा कि वक्त का जिक्र हुआ, हमारे प्रोग्राम का भी वक्त मुकर्रर है, तो इस वक्त प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, फिर कुछ बातें आपसे जानेंगे। जब तक के लिए आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह हामी व नासिर। लिकुल दा इन दवाउन वलिकुल मर्जन शफाउन, अल्लाह ताला हन छुन त्युत कांह ते मर्ज बनोमुत यमिक न तेम शफा छु थोमुत सैन कम छ खोज तो छांडुन। तो यह क्यों दग दादिन बवासीर म्याद दादिन प्राणियन कल दादिन कोठ दोद कमर दोद गर्दन हिंस दाग पी सी ओ डी तो चमि हिंदन दादिन खतर अस सत रब्त करित याद थो यूनानी तो पंचकर्मा हस्पताल छ कोद

0: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई
1: पहचान। घंट
2: घोमिया
3: मोटर्स वाले गई पंच वरी प्याजो लोड कैरियर कना दह क्विंटल तुला लोड मजबूत बाड़ी तरह किलोमीटर माइलेज दमदार इंजन तो मौके पे फाइनल
4: मौके पे प्याजो लोड कैरियर LCD फ्री स्कीम सिर्फ रद्द करो कश्मीर मोटर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर तो दुर्गा नाग डलगेट श्रीनगर।
5: जी लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह में जारी है आज की सुर्खियां। एक उर्दू रोजनामे की सुर्खी है कि बेहतर अवामी खिदमात की फरहमी बर वक्त पूरा करना लाजमी, अफसरान अपने फराइज की अंजामदेही में अवाम पर अपनी नुक्ते नजर अपनाएं और अवामी खिदमात की बेहतर फरहमी को यकीनी बनाएं, जवाबदेही और जवाबदेही की अहमियत को लाजमी बनाएं। सकीना ये तो
6: एक और उर्दू रोजनामे की शे सुर्खी है। शुमाली कमान के फौजी सरबराह का LOC दौरा, कुपवाड़ा सेक्टर में ऑपरेशनल तैयारियों और दिफाई इंतजाम का मुआयना।
5: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि शदीद गर्मी के लहर से सेब सनत बहरान का शिकार, कीमतों में नुमाया कमी, कोल्ड स्टोरेज में लाखों टन सेब फंस गए, मंडियों में कमजोर तलब और महंगी ट्रांसपोर्ट से बागबानों की मुश्किलात में इजाफा।
6: एक और सुर्खी है, कश्मीर में पांचवीं जालाबारी ने बागबानों की कमर तोड़ दी, शोपियां और पुलवामा के काश्तकारों को भारी नुकसान, चंद मिनटों में महीनों की मेहनत बर्बाद।
5: वजीर खुराक और शहरी सप्लाई सतीश शर्मा की मरकजी वजीर रेलवे से मुलाकात, जम्मू राजौरी पुंछ रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अहिया का मुतालबा किया।
6: सेब नहीं सेब के सैकड़ों दरख्तों का कत्लेआम, नामालूम अफराद की तलाश के लिए चाडोरा में पुलिस की कोशिशें तेज से तेज तर।
5: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि वादी में वजारत सकाफत हुकूमत हिंद की जानिब से थिएटर सरगर्मियां जारी, बादशाह कल्चरल सोसाइटी ने गांदरबल में डेंस ड्रामा पेश किया।
6: अब खेल सफात से चंद एक सुर्खियां।
5: जी
6: अहमदाबाद में IPL का फाइनल खेलना हमारे हक में है, गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमल गिल का इंकशाफ।
5: अब फीफा वर्ल्ड कप के बारे में एक शह सुर्खी एक उर्दू रोजनामे पर है जो हॉकी से दिलचस्पी रखते हैं, तो ये आपको बता दें कि अर्जेंटीना का फीफा वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, लियोनेल मेसी छठा आलमी कप खेलेंगे।
6: एक और सुर्खी है, कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स 5 जून को मुनक्कद होंगे।
5: तो ये थी आज की सुर्खियां, आप हमारे संग बने रहिए, लाइव पयाम शुभ जारी है।
7: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और TVS कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
8: आज की सुर्खियां, सुर्खियां, सुर्खियां।
9: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
10: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
9: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
10: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुब।
11: यारो वनबाज़ यारो
9: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
10: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर पयामे सुब
12: सुनो सजना
10: पयामे सुब।

0: जी दोस्तों, लाइव पयाम सुबह आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी मेजबान सकीना और
1: शौकीन हिलाल के साथ।
0: हिलाल, एक गजल मैंने क्यों करके रखी है, लेकिन उससे पहले अपने दोस्तों को मैं ये बता दूं, सबके पास तो ये खबर पहुंची गई होगी कि उर्दू के अजीम शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब का इंतकाल हुआ ईद के ही दिन।
1: जी बिल्कुल,
0: डिमेंशिया में मुब्तला थे, 91 बरस के थे। लेकिन जब हम उनकी शायरी की बात करते हैं, उन्होंने पीछे जो एक खजाना छोड़ा है
1: बिल्कुल,
0: उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और ये कह सकते हैं कि उर्दू शायरी की तारीख में
1: हमेशा जिंदा रहेगा। इस तरह मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी,
0: ये उनकी मकबूल तरीन गजल है। और हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, ये भी उनकी एक गजल है। और घर घर इस शायरी की वजह से बशीर बद्र साहब मकबूल हुए। तकरीबन 6 दहाइयों तक मुशायरों की दुनिया पर राज करने वाले बशीर बद्र आखिरी बरसों में बीमारियों के एक डिमेंशिया बीमारी के बाइस हुए, अपने चाहने वालों से दूर रहे। लेकिन ये कह सकते हैं कि इनके अशार में जो खूबी थी या जो चाशनी थी, जिसकी वजह से वो लोगों के दिलों में बस गए, वो यही वजह है कि उनकी गजलें सिर्फ अदबी हलकों तक महदूद नहीं
1: रही,
0: बल्कि अवामी हाफसे का एक हिस्सा बन गई।
1: डॉक्टर बशीर बद्र के इंतकाल के साथ उर्दू गजल का एक अहद अपने इख्तिताम को पहुंच गया।
0: लेकिन
1: उनके लफ्ज, उनके अशार और उनका नर्म शीरीन लहजा हमेशा अदब के उफक पर जगमगाता रहेगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। एक मुमताज शायर है अंजुम बारा बंकवी, उन्होंने नई गजल का सबसे बड़ा शायर बशीर बद्र साहब को करार दिया। अब जो उर्दू अदब से वाबस्ता दोस्त हैं या शायकीन हैं इनकी शायरी के, बशीर बद्र साहब की शायरी के, उनके लिए हम एक गजल पेश करते हैं। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में ये बेहतरीन गजल है, आप सुन लीजिए। ये एक हिसाब से खराज तहसीन है बशीर बद्र साहब को, तो आप ये सुन लीजिए।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग में जिवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।

0: 31 मई इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर।
1: आप सभी का प्रोग्राम में इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। हमें उम्मीद है कि खुशियों और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा आपने अच्छी तरह से मनाया होगा।
0: आज के शुमारे की शुरुआत हस्ब मामूल आइए करते हैं इदारिया से।
1: दोस्तों, एक कहावत है कि जान है तो जहान है, जिसके एक मानी ये हैं कि अच्छी सेहत से ही हम अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं, जबकि इसके दूसरे मानी हैं जान यानी जान पहचान या किसी को अच्छी तरह से जानना और जानने के बाद किसी से राबता रखना या मरासिम रखना ही बेहतर जिंदगी का उसूल है। आज की इस मादा परस्त दुनिया में जहां पैसा मरकजी अहमियत हासिल कर चुका है, किसी पर भरोसा करना या किसी का भरोसा हासिल करना दोनों ही कार्य दारद हैं और ऐसे में बैंक्स का रोल निहायत ही अहम बनता है। लफ्ज बैंक के मानी ही भरोसा, एतमाद और यकीन है, जो एक कस्टमर बैंक पर और बैंक एक कस्टमर पर जताता है, और बैंकिंग का सारा निजाम इसी एतमाद और भरोसे पर चलता है। और हमारे लिए बैंक का मतलब जम्मू कश्मीर बैंक है, जो हमें हर हाल में अपना लगता है। एक बूढ़ी माँ की सूत की कताई का बरकत वाला पैसा हो या एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह का मेहनत से कमाया हुआ पैसा, पेंशनर की उम्र भर की कमाई हो या छोटे बच्चों की गुल्लक में जमा शुदा मासूमियत का खजाना, कारोबारियों की दिन भर की कमाई हो या कारखानादारों की प्रतीत, घरेलू औरतों की चुन्नी में बंधा हुआ जरूरत का पैसा हो या मजदूर के माथे के पसीने का पैसा, सबके लिए अगर कोई महफूज जगह है जहाँ उनका पैसा सेफ रहे तो वो बैंक है। और साथ ही हर शख्स की हर जरूरत का एहसास और उसे पूरा करना भी बैंक अपनी जिम्मेदारी समझता है। ऐसे में जान पहचान का होना अहम बन जाता है, इसलिए बैंक का ग्राहक को जानना और अच्छी तरह से जानना और भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। ग्राहक को जानना या नो योर कस्टमर, जिसे हम उर्फ आम में KYC कहते हैं, एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ही नहीं बल्कि हमारा एक समाजी फरीजा है, क्योंकि इस अमल से ही हम माली मामलात में शफाफियत ला सकते हैं, कौम दुश्मन, समाज दुश्मन और ब्लैक मनी के धंधे में मुलवस लोगों को बेनकाब करने में हम कानून की मदद कर सकते हैं। बैंक के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि वो अपने ग्राहक का नाम, वल्दियत, पता, कामकाज, फोन नंबर वगैरह जाने, ताकि पता चले कि किस शख्स ने बैंक के पास अपना मेहनत का पैसा जमा किया है और 2 नंबरी और 10 नंबरी अशखास की शनाख्त भी हो सके। अगर हमारा पैसा साफ है, हमारा कारोबार साफ है और हमारी नीयत साफ है तो डर किस बात का। बेखौफ होकर अपने KYC दस्तावेज बैंक में जमा कीजिए और देश को खोखला करने वाले अनासिर को पहचानने में मदद कीजिए। इसके अलावा अगर हम अपना पता तब्दील करें, अपना फोन नंबर बदलें या किसी भी तरह से हमारे एड्रेस में या पहचान में तब्दीली वाका हो तो बैंक को इसकी इतला जरूर दें। re-KYC प्रोसेस के जरिए अपना शनाख्ती प्रोसेस मुकम्मल करें। KYC या re-KYC बैंक और ग्राहकों की साझा जिम्मेदारी है, जो न सिर्फ बैंकिंग निजाम को महफूज बनाता है बल्कि कस्टमर्स को मुख्तलिफ किस्म की फ्रॉड से भी बचाता है। वाजह रहे कि बैंक में आपके जमाशुदा KYC डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल महफूज हैं, जो किसी भी सूरत किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते हैं। आपके KYC डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास आपकी अमानत होते हैं और वो बैंक ही क्या जो अमानत में खयानत करे। जम्मू कश्मीर बैंक आपसे गुजारिश करता है कि आप अपने तमाम अकाउंट्स का KYC अपडेट जरूर कराएं, ताकि आपकी बैंकिंग महफूज, आसान और शफाफ रहे।
2: एक जरूरी इतला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
0: भारत जैसे विशाल देश जहाँ लगभग 150 करोड़ लोग आबाद है, हर एक नागरिक का मालियाती निजाम में शामिल होना एक मिशन है, जो साल 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना से शुरू हुआ और बाद अजां 3 समाजी तहफ्फुज़ स्कीमों के साथ इसमें गरा कदर इजाफा किया गया। मुद्दा और मकसद हर नागरिक को बैंकिंग निजाम के साथ जोड़ना, ताकि हर घर में कम अज कम एक बैंक अकाउंट मौजूद हो जिसके जरिए सरकारी मदद बराह रास्त हासिल की जा सके। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और

0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी दो खास इंश्योरेंस स्कीम्स के जरिए कुदरती आफात, हादसात और मौत की सूरत में मुतासिरा कुंबे को माली इमदाद मुहैया कराई जा सके और अटल पेंशन योजना के जरिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए 60 साल की उम्र से बाज़ाबिता माहाना पेंशन। हुकूमत के ये सब इकदामात अवाम को बाइख्तियार माली तौर खुद मुख्तार और उन्हें तहफ्फुज फराहम करना है। लाखों लोग इन स्कीमों से लाभ उठा चुके हैं और सरकारी इमदाद का फायदा भी उन्हें मिल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ दोस्त सोच रहे हैं। आपका सबसे भरोसेमंद मालियाती इदारा जेके बैंक आपको सलाह दे रहा है कि 20 रुपए और 436 रुपए की इंश्योरेंस स्कीम्स के साथ साथ जीरो बैलेंस वाला जनधन अकाउंट भी खोलें, ताकि आपके परिवार को आपकी मौजूदगी में और आपके अचानक चले जाने के वक्त माली सहारा हासिल हो। अटल पेंशन योजना से अपना आने वाला कल महफूज बनाइए और चैन से रहिए। यकीन मानिए, हम हमेशा आपको सही बात की ही सलाह देते हैं।
1: कितनी बार कहा है अपने बच्चों को समझाएं, वरना मकान बदल ले।
2: अपने बच्चों के मासूम बचपन को खिलने और खेलने का भरपूर एहसास दिलाएं। जेके बैंक हाउसिंग लोन स्टार्टिंग एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ जस्ट 7.35%। स्पेशल ऑफर 22 मई से 6 जुलाई तक। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक।
3: एक जरूरी इतला, जम्मू कश्मीर बैंक के उन बुजुर्ग, माजूर और बीमार ग्राहकों से गुजारिश की जाती है जो किसी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों पर नहीं आ सकते हैं, कि वो जेके बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग से फ़ायदा उठाएं, जहां बैंक के नुमाइंदे उनके घर आकर मुख्तलिफ बैंकिंग सहूलियात जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स वसूल करना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, कैश डिपॉजिट करना या अपने अकाउंट से कैश निकालने जैसी सहूलियात वगैरह शामिल हैं। नॉमिनल चार्जेस के एवज आपको घर बैठे मैसर होंगी। लिहाजा आज ही अपनी बैंक शाख से राबता करें और इन सहूलियात से फ़ायदा उठाएं।
0: दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड्स की वजह से बहुत सारे अफराद को उनकी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ा है। फ्रॉडस्टर्स नित नए हरबे अमला कर मासूम लोगों को अपने झांसे में फंसाने के लिए हमेशा बेड़ियों की मानन तैयार रहते हैं। इस सिलसिले में कुछ अरसे से ऑनलाइन लोन ऑफर करने से जुड़ी फ्रॉड्स मंजरे आम पर आई है। इस नुक्ते पर बात करने और इस फ्रॉड से बचने की तदाबीर के हवाले से हमने बात की बैंक के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर मुनीर कोंगवानी से। इस जिम्न में उनका कहना था,
4: सामीन आदाब, जेके बैंक अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको वक्तन फोक्तन साइबर फ्रॉड्स के बारे में आगाही देता रहा है और आपको जानकार रहने और सतर्क रहने पर जोर देता रहा है। हम आपको वक्तन फोक्तन साइबर फ्रॉड्स के बारे में क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं उनके बारे में काफी आगाही देते रहे हैं, और आपसे हमेशा हमारी यही गुजारिश रही है कि आप जानकार रहें, सतर्क रहिए और अपने डिजिटल सिस्टम्स की सिक्योरिटी के लिए हर इकदाम करें। सामीन, हाल ही में हमने साइबर फ्रॉड्स के बारे में एक नई मोडस ऑपरेंडी देखी है, जहां पर मोबाइल फोन यूज करने वाले यूजर्स लोन हासिल करने के लिए गूगल ऐप पे जाते हैं या ऐप स्टोर पे जाते हैं और वहां से काफी सारी लोन एप्लीकेशंस जो इजीली अवेलेबल है उनको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं और उनसे लोन फैसिलिटी हासिल करने के लिए एक डिजिटल KYC कराते हैं। डिजिटल KYC करने के बाद उनको वो लोन वहां से इजीली मिल जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी है जिनका नाम लेना चाहूंगा मैं, हेलो लोन ऐप, कैश मार्केट लोन ऐप, मैजिक लोन ऐप, क्रेजी कैश लोन ऐप, आसान लोन ऐप और बहुत सारी ऐसी लोन ऐप्स है जो आपको इमीडिएटली लोन फराहम कर देती है। लेकिन ये सारी लोन ऐप्स आपको लोन फराहम करने के बाद आपको बुली करती है और आपको काफी ज्यादा थ्रेट्स आती है और आपको ब्लैकमेल करती है। आपने जो वीडियो KYC कराया हुआ होगा उन तस्वीर को, उन फोटोग्राफ्स को जो बोरोवर्स के होते हैं उनको मॉर्फ करके आपको धमकियां दी जाती है कि आपका इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ाया जाता है। इवन दो हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जहां पर कस्टमर उनको जितना भी उसने लोन लिया है वो बिल्कुल उनके अकाउंट में वापस डाल देता है और कहता है कि मेरा जी अकाउंट बंद कर दो, मुझे लोन नहीं चाहिए। लेकिन वो वहां से उसको बुली करके, उसको धमकियां देके, वो पैसा फिर से उसके अकाउंट में वापस डाल के उसको कहते हैं नहीं जी ये लोन आपको लेना ही पड़ेगा और अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपके ये तस्वीर आपके फेसबुक अकाउंट पे, आपके लिंक्डइन अकाउंट पे, आपके ट्विटर हैंडल पे डाल के आपके सारे कॉन्टेक्ट को ये बता देंगे कि आप डिफॉल्टर हो चुके हो। और कभी कभी ऐसे भी केसेस हमको मिले हैं जहां पर वो इन केवाईसी

0: फोटोग्राफ्स की मॉर्फिंग करते हैं, इनको एडिट करते हैं और ऑब्जेक्शनेबल नाशाइस्ता तस्वीर बना के फेसबुक में इस बोरोवर के कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस बोरोवर को। हाल ही में हमने काफी ज्यादा केसेस देखे हैं जो रजिस्टर हुए हैं पूरे इंडिया में, उसमें एक 38 साल नौजवान ने ये सदमा बर्दाश्त न करते हुए खुदकशी का रास्ता अख्तियार किया। सो हमारी मोदमाना गुजारिश है आप सबसे कि मेहरबानी करके आप होशियार रहे, कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन पे ऐसे खामखा डाउनलोड न करें। हर एक एप्लीकेशन की अगर यूजेबिलिटी आपके लिए है और आपकी एक कंफर्ट लेवल है कि नहीं ये एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है तभी यूज करें। हम आपको कहते आए हैं और फिर से कह रहे हैं कि पूरी कायनात में मुफ्त कोई चीज नहीं मिलती है, देयर इज नो फ्री लंच। ऐसे लोगों पर भरोसा न करें, ऐसी कंपनीज पर भरोसा न करें और ऐसा न समझे कि आपको जी लोन बिल्कुल इजीली मिल जाता है तो चले जी ठीक है हम ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके लोन ले लें हमारा काम आसान हो जाएगा। यकीन माने ये सारी फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशंस जो आज की डेट में एप स्टोर पर डाली जाती है, प्ले स्टोर पर डाली जाती है, ये आपको गुमराह करने के लिए है और आपको परेशानी में डालने का सबब बन जाती है। सो एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके आपको अगर शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, तो मेहरबानी करके एक ट्रस्टेड बैंकर के पास ही ये खिदमत हासिल करें, क्योंकि ट्रस्टेड बैंकर एक जिम्मेदार बैंकर होता है और उस पे आप हमेशा भरोसा कर सकते हो, उनसे आप मिल सकते हो और उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा, फैसिलिटेशन कैसे होगी, इसका डिसबर्सल सिस्टम क्या रहेगा। सो ट्रस्टेड बैंकर और ट्रस्टेड बैंक पे ही भरोसा करें और इन एप्स को डाउनलोड करने से परहेज करें। शुक्रिया।
1: हर इंसान का एक ख्वाब होता है अपना घर जिसमें अपने पन का एहसास हो, हर अपना अपने पास हो। इस ईद J&K बैंक के साथ ख्वाबों को मिले उनका पता। J&K बैंक हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग एट जस्ट 7.35% 22 मई से 6 जुलाई तक। पूरा कीजिए अपने घर का ख्वाब हमारे साथ। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक।
2: तमाम PMJJBY और PMSBY सार्फीन मुतवजा हों,
3: आपकी सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज का अगले चंद दिनों में रिन्यूअल ड्यू है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अपने बैंक खाते में PMSBY के लिए ₹20 जबकि PMJJBY के लिए ₹436 अवेलेबल रखें, ताकि जब बैंक ये प्रीमियम आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट करे पैसा वहां मौजूद हो। बसूरत दीगर इन इंश्योरेंस स्कीम्स के साथ जुड़े हुए तहफुजात और मुराद से आप महरूम रहेंगे। प्रीमियम की रकम 25 मई से यकुम जून 2026 के दरमियान किसी भी वक्त डेबिट की जाएगी।
4: हेलो,
5: क्या पर इतने जल्दी?
4: हेलो,
6: क्या हुआ?
4: अबू की बीमारी के वक्त एक दोस्त से पैसे उधार लिए थे, उसे पैसे आज के आज ही चाहिए, कैसे बंदोबस्त करो?
6: जम्मू एंड कश्मीर बैंक चल के गोल्ड ज्वेलरी पे गोल्ड लोन लेते हैं। आप आज के आज दोस्त को पैसे वापस करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर बैंक को चुकाते जाएं। ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, हम जैसे आम लोगों का बैंक।
2: और अब इनामी सवाल की बारी।
3: दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे J&K बैंक क्रेडिट कार्ड पर चल रहे ऑफर द्वारा कस्टमर्स को मिल रहे कैशबैक की परसेंटेज पूछी थी।
2: इस सवाल का सही जवाब है 10%।
3: दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाब ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें दिए गए बेशतर जवाब सही थे, लेकिन कुरा अंदाजी के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं।
2: कश्मीर डिवीजन से पालपोरा चाडोरा के मोहम्मद अरहम पाल, जम्मू डिवीजन से चुवादी जम्मू के अर्जुन सिंह और लद्दाख से लेह के सोनम नामग्याल।
3: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
2: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
3: दोस्तों, आपको बताना होगा कि PMJJBY और PMSBY के सालाना प्रीमियम डिडक्ट होने की आखिरी तारीख क्या है।
2: आपके जवाब हमें 6 जून शनिवार शाम 5 बजे तक हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी jkbankdiary@jkbmail.com पर मौसूल होने चाहिए।
3: तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर
2: 1800-890-2122
3: या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
2: www.jkb.bank.in।
7: अभी आप सुन रहे थे J&K बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट J&K बैंक।
8: आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय सुबह के 10 बज चुके हैं। एक मुख्तसर वक्त

0: प्रोग्राम समाप्त करेंगे रेडियो साथी।
1: रेडियो एक हर गली हर कूचे तक पहुंचे, अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल, रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर।
1: रेडियो साथी, आकाशवाणी श्रीनगर के हफ्तवार प्रोग्राम रेडियो साथी में आप सब सामईन को हम खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं मेरी साथी रिफत आरा। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, सिविक कनेक्ट, यानी शहरियों और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के दरमियान पुल। ये पुल सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि एतमाद, शिफाफियत, सहूलत और जवाबदेही का है।
2: रशीद, सबसे पहले तो ये बताइए कि सिविक कनेक्ट का तस्वीर आम आदमी की जिंदगी में कैसे माने रखता है?
1: रिफत, सिविक कनेक्ट दरअसल उस ताल्लुक का नाम है जिसके जरिए एक आम शहरी अपनी जरूरियात, मसाइल और तवक्कात हुकूमत तक पहुंचाता है और हुकूमत उनका बरवक्त और मुवस्सर हल फराहम करती है। जब ये राबिता मजबूत होता है तो न सिर्फ खिदमात बेहतर होती हैं बल्कि एतमाद भी पैदा होता है।
2: बिल्कुल दुरुस्त। हमारे मुआशरे में अक्सर लोग ये समझते हैं कि सरकारी निजाम तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन हालिया बरसों में कई ऐसे इकदाम हुए हैं जिन्होंने फासले कम किए हैं। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन खिदमात, हेल्पलाइंस और अवामी दरबार।
1: जी हाँ, और इन इकदाम का मकसद यही है कि शहरी को दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। अब लोग घर बैठे दरख्वास्त दे सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपनी फाइल की पेशरफ्त भी देख सकते हैं। ये शिफाफियत की जानिब एक अहम कदम है।
2: जब हम अवामी खिदमात की बात करते हैं तो उसमें सेहत, तालीम, पानी, बिजली और सफाई जैसे बुनियादी शोबे शामिल हैं। अगर इन खिदमात की फराहमी मौसर हो तो शहरियों की जिंदगी आसान हो जाती है।
1: और यही वो जगह है जहां शहरियों की राय बहुत अहम हो जाती है। अगर कोई मसला है जैसे पानी की किल्लत या सड़क की खराबी, तो शहरियों को चाहिए कि वो अपनी आवाज बुलंद करें और मुतलिका महकमे तक पहुंचाएं। अब इसके लिए कई प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं।
2: आपने बिल्कुल सही कहा। पहले लोग शिकायत दर्ज करवाने से कतराते थे या उन्हें मालूम ही नहीं होता था कि कहां जाना है, लेकिन अब शिकायत के इजाले का एक बाकायदा निजाम कायम किया गया है।
1: जी, शिकायत दर्ज करने के बाद उस पर कोई कार्रवाई होना और मुकर्रर वक्त में उसका हल निकलना निहायत जरूरी है। यही असल में जवाबदेही का तकाजा है। अगर कोई महकमा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो उसका एहतिसाब होना चाहिए।
2: जवाबदेही एक ऐसा सुतून है जिसके बगैर कोई भी निजाम देरपा नहीं हो सकता। जब अफसरान और इदारे अपनी कारकर्दगी के लिए जवाबदेह होते हैं तो वो ज्यादा संजीदगी से काम करते हैं।
1: और शहरियों का भी ये फर्ज है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। सिर्फ शिकायत करना काफी नहीं बल्कि दुरुस्त मालूमात फराहम करना, कवानीन की पासदारी करना और इज्तिमाई भलाई के लिए ताउन करना भी जरूरी है।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर।
1: रेडियो साथी
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
0: इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सड़कें, पुल, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट,

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो साथी,
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
2: सामिन, याद रखिए कि स्विक कनेक्ट एक दोतरफा अमल है। जब शहरी और हुकूमत एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है।

0: प्रोग्राम की, तो जो भी दोस्त हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहे वो जरूर आ सकता है।
1: जी, क्या नाम है आपका?
2: मदीहा महराज।
1: जी मदीहा, क्या सुनाएंगी आप?
2: चिड़ियाघर की सैर।
1: जी।
2: चलो चले सब चिड़ियाघर को देखे चलकर, शेर बबर को, बबलू शमसी चन्नू आओ, एक लाइन में सब आ जाओ, अपना अपना टिकट कटाओ, रहना हर कोई हाथ पकड़ कर, अलग ना होना कहीं झगड़ कर, हाथी का दीदार भी करना, ऊंट से आंखें चार भी करना, देखो बंदर शोर मचाए, उछले कूदे नाचे गाए, मोर को देखो पर फैलाए, अपने परों से सब कुलवाए, प्यारी चिड़िया उड़ती जाए, ची ची ची ची करती जाए, भूख लगी तो खा लो पी लो, ऐश करो मस्ती में जी लो, शाम हुई अब घर को जाओ, सारी दिन के थकन मिटाओ, शुक्रिया।
1: क्या नाम है आपका?
3: हूर फातिमा।
1: जी हूर, क्या सुनाएंगी आप?
3: शेर और चूहे की कहानी।
1: जी।
3: एक बार शेर जंगल में खाना खाकर सो गया, चूहे को शेर के ऊपर नजर पड़ी और वो उसके ऊपर खेलने लगा, जब शेर उड़ गया उसने उसको पकड़ लिया।
1: फिर क्या हुआ?
3: फिर चूहा बहुत डर गया, उसने बोला कि मुझे छोड़ दो कि मैं कभी

0: चार भी करना, ऊंट से आंखें चार भी करना, देखो बंदर शोर मचाए, उछले कूदे नाचे गाए, मोर को देखो पर फैलाए, अपने परों से सबको लुभाए, प्यारी चिड़िया उड़ती जाए, ची ची ची ची करती जाए, भूख लगी तो खा लो पी लो, ऐश करो मस्ती में जी लो, शाम हुई अब घर को जाओ, सारी दिन की थकन मिटाओ। शुक्रिया।
1: क्या नाम है आपका?
2: हूर फातिमा।
1: जी हूर, क्या सुनाएंगी आप?
2: शेर और चूहे की कहानी।
1: जी।
2: एक बार शेर जंगल में खाना खाकर सो गया, चूहे को शेर के ऊपर नजर पड़ी और वो उसके ऊपर खेलने लगा। जब शेर उड़ गया उसने उसको पकड़ लिया।
1: फिर क्या हुआ?
2: फिर चूहा बहुत डर गया, उसने बोला कि मुझे छोड़ दो कि मैं कभी आपके काम भी आ सकता हूँ। फिर शेर ने उसको छोड़ दिया। वो एक दिन पूरे जंगल का राउंड करने गया, वहाँ पर सिपाही ने उसको पकड़ लिया, चूहे ने उसको बचा लिया, फिर वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए।
1: कैसे बचा लिया बताएं जरा? शेर को जाल में बंद कर दिया, फिर चूहे ने अपने तेज तेज दांतों से उसको कुतरा और शेर आजाद हो गया। चले शुक्रिया आपका। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं?
3: दरअसल हम जब छोटे बच्चों की कोई कहानी सुनते हैं जो वो कहते हैं हमसे, तो हम उसे ट्रिवियल समझते हैं, मतलब ऐसा समझते हैं कि शायद ये हमारे किसी काम की नहीं है और सिर्फ ऐसे ही मजे मजे में बच्चों को सुनाई गई और बच्चे हमें सुना रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है।
1: जी
3: जैसे हमने अभी एक कहानी सुनी, बहुत अच्छी कहानी थी शेर और चूहे की, और मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे सभी लोगों ने इसको 100 से अधिक बार सुना होगा या उससे भी कई बार सुना होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कहानी है इसमें जो ये सबक है बस इतना सा है कि छोटी चीज बड़े के काम आ सकती है। नहीं, इसके बगैर भी इसका बहुत मतलब है। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है, और अगर इन छोटी चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ में थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी खराब हो जाती है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि हम एक टेबल पर किसी छोटे से चीज़ को रखते हैं और उसके ऊपर बाकी चीज़ों को बैलेंस करते हैं। अगर हम नीचे की ईंट को हटाएंगे, नीचे रखी हुई चीज़ को हटाएंगे, तो बाकी चीज़ें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो सब पिचक जाती हैं और गिर जाती हैं। तो हमें चाहिए कि जब भी हमारे साथ कोई ऐसी कहानी शेयर की जाए जो कोई छोटा बच्चा बताए, तो उससे सबक हासिल करने की पूरी पूरी कोशिश।
1: बहुत खूब। क्या नाम है आपका?
4: हुदा फातिमा।
1: क्या सुनाएंगी?
4: उर्दू।
1: जी।
4: उर्दू जबान हमारी है जानवा दिल से प्यार, ये मदरी जबान है रंग रंग में जो राव है, जब से जुबान खोली उर्दू है अपनी बोली, बचपन की ये साथी कि उसने जहन साजी, शहर जुबान है उर्दू चर्चा उसका हर सो, उर्दू में नगमे हैं क्या उसमें दिल खुशी है, उर्दू जो कोई बोले कानून में राज ये खोले, उर्दू में पढ़ना लिखना बात और जुबान में करना, उर्दू को जिंदा रखना हम पर ये फर्ज है अपना, लब जो फरग खोलो उर्दू में तुम भी बोलो। शुक्रिया।
1: उर्दू में तुम भी बोलो, क्योंकि उर्दू जो है वो बहुत मीठी जबान मानी जाती है। आप उसको जितने भी मिठास से बोलेंगे वो जरूर एक असर रखती है। क्या नाम है आपका?
5: आपिश।
1: आपिश क्या सुनाएंगी?
5: घर की सफाई।
1: जी।
5: हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, घर साफ हो तो कोई बीमारी का खतरा नहीं होगा, अगर हम घर साफ रखेंगे हर आने वाला खुश होगा, सफाई अल्लाह को भी पसंद है, घर अंदर से भी साफ रखना चाहिए और बाहर से भी, सुबह व शाम घर के फर्श को झाड़ू से साफ रखना चाहिए, घर के सैन और आसपास साफ रखना चाहिए, केले के छिलके को दरवाजे के नीचे से सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए।
1: जिस तरह से हम अपना घर साफ करते हैं उसी तरह से हमें अपना आसपास जो हमारे घर के सराउंडिंग्स हैं, हमारे रास्ते हैं, गली कूचे, उनका भी सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। क्या नाम है आपका?
6: अनीका रशीद। अनीका।
1: अनीका जी, अनीका क्या सुनाएंगी?
6: खेलों की अहमियत।
1: खेलों की अहमियत जी।
6: खेल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है, ये हमें तंदुरुस्त और मजबूत बनाते हैं, हम खेलों से जीत और हार का सामना करना सीखते हैं, खेल खेलने से हमारा जिस्म तंदुरुस्त रहता है, खेल खेलने से इत्तेहाद पैदा होता है।
1: بہت اچھی آپ نے بات کہی، کھیل کھیلنے سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی کھیل ہو، اس میں جتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، 10 ہوں، 11 ہوں، 12 ہوں، وہ باقی 12 لوگوں سے ملتے ہیں، یا یہاں سے جب نیشنل کھیلنے کے لیے جاتے ہیں یا

0: इंटरनेशनल खेलने के लिए जाते हैं, कल्चर एक्सचेंज होता है। आप एक दूसरे की जबान को, एक दूसरे के पहनावे को, एक दूसरे के खान पान को समझते हैं। तो खेलें जो हैं ये वाकई इत्तेहाद पैदा करती हैं। क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद इस्माइल अंद्राबी।
0: मोहम्मद इस्माइल अंद्राबी जी, क्या सुनाएंगे?
1: प्यासे
0: कौवे की कहानी है। कितना ये प्यासा कौवा जो है बहुत साल से सुनते आ रहे हैं, प्यासे कौवे की प्यास नहीं बुझती। चलिए सुनाइए, आज देखें हो सकता बुझ जाए।
1: एक प्यासा कौवा, उसको बहुत प्यास लगी, उसे एक मटकी मिली लेकिन उसकी चोंच नहीं पहुंच रही। उसने पत्थर डाले उसके अंदर, उसकी चोंच पहुंचने लग गई।
0: पत्थर डालने से पानी क्या हुआ?
1: ऊपर
0: ऊपर आ गया। और फिर कौवे ने क्या किया? पानी पिया। आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
1: यूकेजी येलो।
0: यूकेजी येलो में पढ़ते हैं। आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या नाम है?
1: मोहम्मद इनाम भट्ट।
0: सुनाइए, क्या सुनाएंगे?
1: और कमोजो छोटी चिड़िया का सबक। एक दरख्त पर नैनी चिड़िया का घोंसला था। आंधी आई तो सारे परिंदे उड़ गए, मगर चिड़िया ने हिम्मत न हारी। उसने तंगी तंगी से दोबारा घोंसला बनाया, पहले से भी मजबूत। कुछ दिन बाद जब धूप निकली, सब परिंदे उसका घोंसला देखकर हैरान हो गए। सबक, मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारो। मैंने से हर चीज मुकम्मल है, शुक्रिया।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही और सब बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि हिम्मत इंसान को कभी नहीं हारनी चाहिए। हाँ, हमेशा किससे काम लेना चाहिए? हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो चले, कुछ ऐसी ही बातें आपको, अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि हमारे दोस्तों के बहुत काम आएंगी।
2: खेलों की अहमियत। खेल किसी भी मुआशरे की सेहतमंद तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। ये न सिर्फ जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाते हैं बल्कि ज़हनी सुकून, नज़्म व ज़ब्त और खुद एतमादी को भी फ़रोग देते हैं। पाकिस्तान जैसे मुआशरों में जहाँ खेल मर्दों तक महदूद समझा जाता है, वहाँ ख़वातीन के लिए खेलों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ख़वातीन के लिए खेल जिस्मानी सेहत के हवाले से नहायत ज़रूरी है। बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी ख़वातीन को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है, इनकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है और मजमूई सेहत को बेहतर बनाती है। ख़ास तौर पर ऐसे मुआशरों में जहाँ ख़वातीन की जिस्मानी सरगर्मियाँ महदूद होती है, खेल इन्हें एक फ़ाल और सेहतमंद ज़िंदगी इख्तियार करने का मौका फराहम करते हैं। खेल ज़हनी सेहत पर भी मस्बत असर डालते हैं। ख़वातीन जो घरेलू जिम्मेदारियों, समाजी दबाव और दीगर मसाइल का सामना करती है, खेलों के ज़रिए ज़हनी सुकून हासिल कर सकती है। ये सरगर्मियाँ तनाव को कम करती है, मस्बत सोच को फ़रोग देती है और ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करती है। इस तरह खेल ख़वातीन की मजमूई फलाओ बहबूद में अहम किरदार अदा करते हैं। ख़वातीन के लिए खेल खुद एतमादी और खुद मुख्तारी को भी बढ़ाते हैं। जब ख़वातीन खेलों में हिस्सा लेती है और कामयाबी हासिल करती है तो इनमें एतमाद पैदा होता है, जो इनकी ज़ाती और पेशे वराना ज़िंदगी में भी झलकता है। ये इन्हें अपने फैसले खुद करने और मुआशरे में फ़ाल किरदार अदा करने के काबिल बनाता है। समाजी सतह पर भी खेल ख़वातीन के लिए एक मस्बत तब्दीली का ज़रिया है। खेलों में शिरकत से ख़वातीन को रुकावटों को तोड़ने का मौका मिलता है और वो रिवायती तासुरात को चैलेंज करती है। इसके नतीजे में मुआशरे में ख़वातीन के किरदार के हवाले से मस्बत सोच फ़रोग पाती है और सिन्फी बराबरी की तरफ पेश रफ्त होती है। ताहम ख़वातीन को खेलों में हिस्सा लेने के लिए कई रुकावटों का सामना भी होता है। समाजी रिवायत, ख़ानदानी दबाव, माहौलियात की कमी और मौाक़े का फुकदान इन्हें इस मैदान में आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई इलाकों में खेलों को ख़वातीन के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता, जिसके बायस इसकी हौसला शिकनी होती है। मीडिया और नुमाइंदगी का मसला भी अहम है। ख़वातीन खिलाड़ियों को वो पज़ीराई और कवरेज नहीं मिलती जो मर्द खिलाड़ियों को दी जाती है, जिसके बायस इनकी कामयाबियां नुमाया नहीं हो पाती। ये सूरत हाल नई आने वाली लड़कियों के लिए हौसला अफजाई में कमी का बायस बनती है। ख़वातीन की खेलों में शमूलियत के असरात नहायत मस्बत है। इससे न सिर्फ इनकी सेहत और खुद एतमादी बेहतर होती है बल्कि मुआशरे में एक मस्बत पैगाम भी जाता है कि ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकती है। ये एक ज़्यादा मुतवाज़िन

0: कैसा लगा आपको ये नगमा?
1: जी बाजी बहुत अच्छा।
0: चलिए ठीक है, आप आए, क्या सुनाएंगे आप?
1: जी आज मैं सुनाऊंगा।
0: नाम तो बताएं, मुझे पता है लेकिन सुनने वालों को नहीं पता।
1: जी मेरा नाम शेख उस्मान है।
0: जी
1: जी आज मेरा अनुमान है बहार का मौसम। वो देखो चमन में है आई बहार, खिले बेल बूटे हरे है चिनार, जिधर देखते हैं हरी घास है, गुलाबों की फैली हुई बास, बसों में है हलचल मची आजकल, स्कूलों में रौनक हुई आजकल, शिकारे हुए झील ढल में रवा, मसरत भरे हैं जमी आसमान, खुदा की है रहमत उसी रूप में, निकल आए बच्चे खिली धूप। मौसम बहार दिल फरेब और पुरलुत्फ मौसम है, जो फरवरी में शुरू होता है और अप्रैल तक रहता है। लफ्ज बहार बजाते खुद कितना रूप परवर लफ्ज, बहार आती है तो रंग गुलिस्तान बदलने लगता, पत्ते जर्द लिबास उतार कर सब्ज मखमल के जोड़े पहन लेते, बहार का मौसम खुशी और मसरत का आगाज करता है। शुक्रिया।
0: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम मोहम्मद अली है।
0: क्या सुनाएंगे आप?
2: मैं माँ के बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ। माँ शफकत, खुलूस, बेलूस, मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम है। ये दुनिया की वो सबसे प्यारी हस्ती है, जिसका ख्याल जहन में आते ही एक लतीफ सा एहसास जागता है। इसका साया चिलचिलाती धूप घने पेड़ की छाऊ जैसा है, इसका दस्त शफकत शजर साया दार की तरह साइबा बनकर औलाद को सुकून का एहसास दिलाता है।
0: तो चलिए पहले एक नगमा सुनवाते हैं।

0: तो बताइए कैसा लगा आपको नगमा?
1: जी बहुत बहुत अच्छा।
0: आज बस इतना ही, अगला प्रोग्राम लेकर होंगे फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जब तक के लिए
2: खुदा हाफिज।
3: समीने आप समाप्त कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम होनहार। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर है समीना शाह। समीन, मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम में मन की बात के जरिए कौम से मुखातिब हो रहे हैं। आइए समाप्त करते हैं।

0: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से।

0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
13: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800

0: एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेष कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेष जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेष कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज़ किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो

0: मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे अभी गुरिंदर, हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है अभी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज़ किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी, कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा, देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पर जाके बैठ, वहाँ पर स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम

0: रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, एक सच्चा

प्रयास है केरलम के आलुवा में। साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यही से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में

भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें

जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए।
और हो सके

0: तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधान की बात का संस्कृत अनुवाद।
2: अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए कौम से मुखातिब थे। आइए समाप्त करते हैं मन की बात का कश्मीरी तर्जमा।
3: मैंने टाठो वतनदारो नमस्कार। मन की बात प्रोग्राम सित हम कलाम सप्त छमे हद रुस खुशी महसूस सपदान मुल्क कैन ब्यून ब्यून हिस्सन मज मुल्क बाशंद वतनच बहबूदी बापत समाज च बेहतरी बापत तिथ गैर ममूली कदम तुलान जी यलि तिमन मुतलिक सोचान अश नव तरगीब मेलान। आज कर बो प्रोग्राम शुरुआत एथलेटिक्स मैदान मज मुल्क यछे अके अहम हसूलियबी सत कहो ब्रोह सपुद झारखंड मज कौमी सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पटिशन मुनद अत मू अल पल ठो शतो एथलीटो हिस्स यम पूर मुल्क पठ ओर आमित अत दौरान फुट चौन ब्यून ब्यून इवेंटन मज चोर कौमी रिकॉर्ड गुरविंदर सिंह विशाल टीके तेजस्विन शंकर देवमीना तो कुलदीप कुमार यमो खिलाड़ियो बने ब्यून ब्यून कैटेगरियन मज नव रिकॉर्ड बुस गोड़ अनवारी इन सारे खिलाड़ियन सठा सठा मुबारक करान सचो अख इवेंट यमुक चर्च पूर मुल्कस मज सपदान छु सुचो 100 मीटर रेस महज दोन दोहन मज फुट हाथ मीटर रेस मज त्रेय लट कौमी रिकॉर्ड यमो दयो खिलाड़ियो ये कमाल कोर तिम छ गुरविंदर सिंह तो अनिमेश कुजूर मैं सोच जे अजकिस मन की बात प्रोग्रामस मज करो इमन दोन खिलाड़ियन सत कथ अनिमेश जी नमस्कार गुरविंदर तुह तो चु नमस्कार सत श्री अकाल
4: नमस्कार सर
3: हे तुह दयो हस कोरव सठा बोड कमाल तुहज जूर हस थकिन लायक अस ओस मौसीकी मज जुगलबंदी मुतलिक बूजमुत वन वुछ अस खेलन हंदिस मुकाबलस मज ती ये कमाल अख छु चैलेंज दिवान तो ब्याख छु ब्याख चैलेंज पैद करान युद्ध जि त्रेमि लट ति मुकाबल बापत कॉम्पिटिशन पैद गच सठा इंटरेस्टिंग छु ये बुछुस यछान जि मन की बात कैन बोजन वालन बापत दियो तु जानकारी युद्ध जि तिमन ते तारि फिक्र तो युस कमाल तोह होव तमुक ते लग्यक पता।
4: नमस्कार सर सर मे नाव अनिमेश कुजूर बुस जहत मीटर तो चोर हथ मीटर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर तो बस छत्तीसगढ़ रोजन वोल सर बस वस उड़ीसा तरफ गिंदान पत्मे वरी जून मे एशियन मेडल तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल सर मे कर एथलेटिक्स जसास अकवू पे शुरू ये बहुत सकूल पे पास आउट सपदस बस सैनिक सकूल अंबिकापोर पे पास आउट सपदमुत बहुत गोड फुट बॉल गिंदान तो कोविडस दौरान उस मोन मोल मोज मे नबर नेर डील दिवान तो वनान जि गना तुल दव या गिंद तो पे कोविड खत्म सपुद तो मेन फुट बॉल गिंदन बज तमो वो मे अख स्टेट मीट सपदन वोल तो तत् सपद नेशनल लेवल सिलेक्शन बह ग तथ शामिल तो मे गई नेशनल लेवल सिलेक्शन तो आज चुस इंडिया रिप्रेजेंट कर इंटरनेशनली।
3: तो गुरविंदर जी तु तोजनु
5: नमस्ते सर मे नाव गुरविंदर तो बहुत इंडियन नेवी मज पैटी अफसर तो बहु भारत सारी खत तेज स्प्रिंटर हाल ही बनो मे हथ मीटर इवेंटस मज 10.9 कौमी रिकॉर्ड बहुत गोडनुक भारती यम 10.1 बेरस्तल दाव तुज तो बहुत कोशिश करान जे बु कर ट्रैक तो वर्दी मज ते पन्ने मुल्क खदमत मोन मोल तो बुढ़बब दोशव स्पोर्ट्स सत वाबस्त तो सान मुल्क कल्चर जे ये कह बोड दो आसान छु मिसाले दिवाली नौ वरी अस पन्ने गरिश सफाई करान बहुत पन्नस मल सजन ट्रॉफियन तो मेडलन सफाई करान मे सठा खुश करान तम अथस मज रटन तो तम साफ करन سات

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम और मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय नाइए आकाशवाणी दिल्ली चलते हैं।

हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मोहतरम, इसके अलावा हम आपसे जुड़े हैं DTH पर और आप हमें सुन सकते हैं आप ही के मोबाइल फोन्स पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऐप के जरिए। ठीक 12:10 हो रहे हैं। दोस्तों, आपको आपकी याद दहानी कराएं कि हाल ही में हिंदुस्तान के अजीम शायर डॉक्टर बशीर बद्र का इंतकाल हुआ है। आइए उनकी याद में समात करते हैं उन्हीं के कलमबंद किए हुए अशआर।

बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। जी हाँ समीन, ये थे डॉक्टर बशीर बद्र के अशआर। वाकई दोस्तों, उन्होंने ज़िंदगी के हर जज्बे को, हर रंज व गम को अपने शायरी के ज़रिए उसकी अक्कासी करने की बेहतरीन कोशिश की है।

सर, आपको बता दें कि आप इस वक्त गज़लें समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। दोस्तों, हाल ही में मारूफ शायर गज़ल की दुनिया के

अशा डॉक्टर बशीर बद्र का इंतकाल हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम समाप्त कर रहे हैं उन्हीं के अशआर। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है।

0: समीन गजलें आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। ठीक 12:30 हो रहे हैं, यह वक्त है खबरों का। ये समाप्त करते हैं पहले उर्दू, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अक्सर हिस्सों में जारी गर्मी की शदीद लहर को मद्देनजर रखते हुए आवाम से कहा है कि वो अपना खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि लोगों को पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए गर्मी के असरात से बचने के लिए संभल कर चलना चाहिए। आकाशवाणी पर आज अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूदात पर ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि गर्म लहर के असरात से महफूज रहने के लिए आवाम को सरकार और मुतलिका महकमों की तरफ से जारी किए जाने वाले रहनुमा खतूत और मशवरों पर अमल करना चाहिए।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: वजीर आजम ने मुल्क के तरक्याती सफर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पेशरफ्त हो रही है जो बाज़ औक़ात हमें नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए जो मुल्क की तामीर में तहरीक बख्श काम करते रहते हैं।
2: भारत के हर गांव में, हर शहर में

0: कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
1: वजीर अजम ने दीगर कई अहम मौजूदात के अलावा माहौलियात का तहफ़ यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने खास तौर पर नदी नालों, दरियाओं और तालाबों को हमारी आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने की ज़रूरत उजागर की। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने पहलगाम का दौरा करके वहां श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने उन्हें इस बारे में तफसीली जानकारी दी। डिविजनल कमिश्नर ने यात्रा के लिए किए गए इंतजाम और सयाहों की आमद में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। सीनियर फौजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। आज अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के मौके पर उन्होंने कहा कि सोच और एक्शन में नयापन लाने से फौजी सलाहियतों में बेहतरी वाक़ा होगी। नामा निगारों से बात करते हुए

0: सिनियर फौजी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। आज अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के मौके पर उन्होंने कहा कि सोच और एक्शन में नयापन लाने से फौजी सलाहियतों में बेहतरी वाकई होगी। नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने इस मकसद के लिए मुसल्ला अफवाज, सनत, एकेडमिया, स्टार्टअप्स और तहकीकी माहौल के माबेन ज्यादा शराकत दारी और तआवुन की जरूरत उजागर की। इधर श्रीनगर के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में एक पासिंग आउट परेड मुनक्कद की गई, जिसमें मुतलिक जवानों की हम आहंगी, हुबुल वतनी और फौजी दुरुस्तगी की एक शानदार नुमाइश देखने को मिली। इस परेड से अग्निवीरों के सातवें बैच के तहत 540 अग्निवीरों की तरबियत मुकम्मल हो गई है। पासिंग आउट परेड में फौज की व्हाइट नाइट कोर के GOC खास मेहमान थे, जिन्होंने मुतलिक जवानों की मशक और उनके फौजी मयारत के लिए उनकी सराहना की। GOC ने उन्हें कौमी खिदमत में पेश रहने की ताकीद की। जम्मू कश्मीर को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी है। मंशियात के ढांचे को खत्म करने, नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए भी हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इस दौरान जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में कल एक पद यात्रा निकालनी जाएगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां और इंतजाम मुकम्मल हैं। इधर पुलिस की तरफ से स्मगलरों को पकड़ने, उनकी जायदादों को कुर्क करने और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए मुसलसल इकदाम किए जा रहे हैं। शुपियां जिले में कैलर के चौवान इलाके में पुलिस ने जेर काश्त खशखाश की एक बड़ी मकदार को तबाह किया। इस बारे में मुतलिक काश्तकारों की निशानदेही करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की शुरुआत की गई है। दरियासना डिप्टी कमिश्नर शुपियां शिशिर गुप्ता की सदारत में जिला सतह की नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान उन्होंने जिले के किसी भी इलाके में जेरकाश्त नशा और फसलों को तबाह करने की हिदायत दी। जिला तरकियाती कमिश्नर मौसूफ ने मंशियात के खिलाफ जारी जंग में मुतलिक महकमों की तरफ से की गई अब तक की कार्रवाइयों का तफसीली जायजा भी लिया। इसी तरह से जिला बांडीपोरा में भी जिला सतह की नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। जिला की तरकियाती कमिश्नर इंदु कंवल चिप की सदारत में मुनक्कद इस मीटिंग के दौरान तमाम मुतलकीन को मंशियात की लानत के खिलाफ कमर बस्ता होने और आम लोगों को इसके मुजर असरात के बारे में जरूरी जानकारी फराहम करने की जरूरत उजागर की गई। इसी दौरान ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने नई दिल्ली में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके उनसे सरहदी अजला, राजौरी और पुंछ को रेल से जोड़ने जाने की देरी न मांग की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब, आकाशवाणी श्रीनगर, शबनम तिलगेम बोझने की खबर। وزیر اعظم نریندر مودی ملک کن اکثر حصن من جاری گریشم کرائے نظر تل تھوت عوامس وونمت تم گھن پن خاص خیال تھوین تمو وون لکن پہ زیادہ کھت زیادہ تریش چین تو گرمی ہند اثرو نش مچھ بچن خطر روزن حس آکاشوانی پہ آز من کی بات رتوار پروگرامس من مختلف موضوعن پہ خیال باپت کران وون تمو یہ گریشم ژنجی نش محفوظ روزن باپت گھس سرکار تو متعلق محکموں دس جاری کرنے یعنی واجن ایڈوائزرین پہ عمل کر
2: اس سمے دیش کے زیادہ تر حصوں میں بہت گرمی پڑ رہی ہے تیز دھوپ گرم ہوائیں ایسے موسم میں اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے پانی پیتے رہیے دھوپ میں اگر نکلنا ہی پڑے تو تھوڑا سنبھل کر نکلے اس دشا میں سرکار کی بھن بھن ڈپارٹمنٹس نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے وہ بھی بھولیے گا نہیں
1: وزیر اعظم وون ملک کن ترقیتی سفر ذکر کران زی اند پک کی تیس پیش رفت سپدان یم بازی اس درٹ یوان تمو وون زی پز تم لکن ساتھ دین یم ملک تعمیر کرنس من تحریک دیوان روزان چھ
2: بھارت کے ہر گاؤں میں ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں پریرنا دیتا ہے جو لوگ سماج کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیے ان کی سراہنا کیجیے ان سے سیکھیے اور ہو سکے تو خود بھی کسی اچھے کام سے جڑیے
1: تمو دیت باقی اہم موضوعن علاوہ ماحولیات تحفظ یقینی بنانس پہ زور خاص پاٹ مطلب تمو کلن دریاون تو تالابن ہن سانین ین والین پین ہند باپت محفوظ تھان ضرورت ہند صوبائی کمشنر انشل گرکن ہوت پہلگام دور کر تت شری امرناتھ جی یاترا ہند سلسلس من کرنا آمتن انتظامات تفصیلی جائزہ اننت ناگ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹن دس تم ات متعلق تفصیلی زانکاری ڈویژنل کمشنر بو یاترا یہ باپت کرنا آمتن انتظامات تو سالان ہندس اضافس پہ اطمینان سینئر فوجی افسر لیفٹیننٹ جنرل این ایس

समय मोहतरम, आपने जगजीत सिंह को सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर डॉक्टर बशीर बद्र का इंतकाल हुआ। आज के इस प्रोग्राम में हमने उन्हीं के कलाम का इंतखाब किया है। आप समाप्त कर रहे हैं बशीर बद्र के अशआर।

समीन, आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में ये बेहतरीन सी गज़ल समात की। यह अशआर थे डॉक्टर बशीर बद्र के। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए।

सामने मोहतरम, गज़लें आप आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से समाप्त कर रहे थे। दिन का एक बजा जाता है, आइए आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें समाप्त करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने

0: और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi says that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. Informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani today, Mr. Modi said that 3 rare copper plates have been found there related to Maharishi Balarjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
1: Gyan Bharatam Abhiyan ke tahat Chhattisgarh ke Malhar mein bhi ek mahatvapurna khoj hui hai. यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony, ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi urged the people

हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं। ठीक 1:10 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए आपका मन पसंद संडे रिक्वेस्ट शो मलिक मुख्तार के साथ।

0: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue.
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

जहाँ जमीन आप समाप्त कर रहे थे आपका अपना मनपसंद शो संडे रिक्वेस्ट शो और प्रोग्राम के होस्ट थे मलिक मुख्तार, प्रोग्राम की प्रोड्यूसर है समीना शाह। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 1:50 हुआ चाहते हैं, आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त करते हैं खबरें।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मुकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर के तांबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रिवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम की मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों की सताइश भी की। दिफाई अमले के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि भारतीय मुसल्लह अफवाज मुल्क के इख्तदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबंद हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी समझौता करने के करीब है, साथ ही ये वार्निंग भी दी है कि मुजाकरात नाकाम होने की सूरत में फौजी कार्रवाई का रास्ता खुला है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी का सामना कर रही है। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क में विरासत के अनमोल मुकामात को महफूज रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में एक अहम दरियाफ्त के बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वहाँ छठी और सातवीं सदी के पांडुवंशी खानदानी सिलसिले के महर्षि बलार्जुन से वाबस्ता तांबे की तीन कामयाब तख्तियां पाई गई हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था,

0: धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: वज़ीर आज़म ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी तذکرہ किया, जहां एक खसूसी तकरीब में चोला दौर की कदीम ताबे की तख्तियां भारत को वापस की गईं। जनाब मोदी ने कहा कि लोग खुशी का और फ़ख्र का इजहार कर रहे हैं, साथ ही दुनिया भर में तमिल बिरादरी के लोग ख़ास तौर पर इस बारे में जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
1: वज़ीर आज़म ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो गर्मी के इन दिनों में जहां तक हो सके एहतियात बरतें और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से जारी किए गए रहनुमा उसूलों पर अमल करें। जनाब मोदी ने तजवीज़ किया कि लोगों को मौसम गर्मा के मुख्तलिफ मशरूबात पीना चाहिए, जिनमें आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीर मोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी शामिल हैं। ये सब गर्मी को दूर करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवायती अंदाज से बनाए जाते हैं।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: आम का तذکرہ करते हुए मौसम गर्मा के दौरान जिनकी अक्सर व बेशतर बात होती है, वज़ीर आज़म ने कहा कि हर खित्ते के अपने अपने आम हैं, अपनी अकसाम हैं और अपना जायका है। जनाब मोदी ने आम की काश्त में शामिल किसानों के रोल को भी सराहा और कहा कि आम का ये सफ़र अब गांव से आलमी मार्केट तक पहुँच रहा है। अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने झारखंड के शहर रांची में हाल ही में मुनक़िदा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबलों का जिक्र किया, जहां तकरीबन 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ मुकाबलों में 4 नए कौमी रिकॉर्ड कायम करने पर गुरिंदर वीर सिंह, टी के विशाल, तेजस्विन शंकर, द्योमीना और कुलदीप कुमार को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने एक वीडियो के बारे में भी बात की, जिसमें ये दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में दरियाए गंगा की एक डॉल्फिन को फंसने के बाद बचाया गया। जनाब मोदी ने इस बात का तذکرہ किया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इस कार्रवाई में अहम रोल अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के मफादात का तहफ्फुज़ करने में हमेशा पेशावराना सलाहियत और कार्रवाई से मुतालिक फैसले करने की सलाहियत का मुजाहरा किया है और वो मुल्क के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबस्ता हैं। मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने कहा कि अंदाज़े फ़िक्र और कार्रवाई में इख्तरा से फौजी सलाहियतों को फ़रोग हासिल होगा। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज बहरिया के 27वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। कमान संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने के लिए भारतीय बहरिया मुस्तैद और चौकस है और उसे इलाकाई सिक्योरिटी के ऐसे माहौल में सरगर्मी के साथ तैनात किया जा रहा है जो चैलेंज से भरपूर, पेचीदा, गैर मुतवक्के और गैर यकीनी की कैफियत वाला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पूरा मुल्क उनकी जहानत, दर्दमंदी और अवाम की फलाह व बहबूद के तई गैर मामूली लगन के लिए उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ याद करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है

कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। जुनूबी दिल्ली में कल शाम साकेत मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक कमर्शियल इमारत के ढह जाने से 3 अफराद की मौत हो गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 11 जख्मी अफराद को इलाज के लिए लाया गया, इनमें से 3 को मुर्दा करार दिया गया। इधर दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता आज जुनूबी दिल्ली में उस मुकाम पर गईं जहाँ ये वाकया पेश आया था। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी से होगा। क्रिकेट में आज आईपीएल 2026 का फाइनल गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मुकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर की तांबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रिवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम की मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों की सताइश भी की। दिफाई अमले के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि भारतीय मुसल्ह अफवाज मुल्क के इकतदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबंद हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

समीना, आपने हसरत जयपुरी के अशार समात किए कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी में सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये नगमा आपने समात किया। इस नगमे को हमने लिया था फिल्म जी चाहता है से।

आई मिलन की बेला। जी हाँ दोस्तों, यह है फिल्म का नाम जिसका नगमा आप सुन रहे हैं इस वक्त, और ये आवाज़ है लता मंगेशकर की, शंकर जयकिशन की मौसीकी में ये हसरत जयपुरी के अशआर हैं।

0: education system. The India's education system is one of the largest in the world, because out of 1.45 billion people in India, इसमें ज्यादा हमारा यूथ 60% ऑफ ओवर 1.45 बिलियन इज बिलो 35 एज, सो दैट वी कॉल एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड. ये डेमोग्राफिक डिविडेंड इज यू नो ग्रेटेस्ट एडवांटेज फॉर इंडिया. सो हमारा सिलेबस वट एवर इट इज देयर इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम स्कूल सिस्टम चेंज होना है एज पर द नीड्स ऑफ टूडे वर्ल्ड. सो एआई the government is taking initiative. Now they are introducing even in primary education the artificial intelligence courses. So it's a good thing. I think in a longer run, if we can able to introduce this artificial intelligence courses, not only in STEM program, in every aspect, whether it is the arts, commerce, science, technology, medical, pharmacy, in every field, if we can able to add, then definitely India will become a leader in coming years, because that is the new thing which is happening across the world in the research also. Using AI tools, people are even in discovering medicine. You know, today when we are talking about AI, it is used in the medical practice to diagnose the disease pattern. You know, we can predict what is going to happen to the human body in the next 20 years using artificial intelligence. So ye sab technology use karna hai humne, hum ye bachchon ko sikhana hai, because today we have almost 450 million, that is a 45 crore students hai hamara primary education se leke PhD tak, and we have highest number of universities, almost 1200 universities, 55,000 colleges, more than 5 million primary schools. Ye sab एडवांटेज है इंडिया का. सो ये एडवांटेज लेके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेस ऐड करें तो देन डेफिनेटली इंडिया विल बिकम अ लीडर.
1: समीन, तेज रफ्तार सन्नती और मुआशी तरक्की के इस दौर में जिन चैलेंजेस ने इंसानियत को जज कर रखा है, उनमें माहौलियात का बचाव सबसे संगीन मसला है. टेक्नोलॉजी के बढ़ते असर रसूख के दरमियान हम अक्सर और बेशतर ये बात भूल जाते हैं कि हम माहौलियात का तहफ्फुज यकीनी बनाने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई सतहों पर कोई भी कोशिश नहीं करते. हम अपने घरों में रोजाना बुनियादों पर ढेर सारा कचरा पैदा करते हैं और फिर ये भूल जाते हैं कि हम इस कचरे को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाकर माहौलियात को इसके मुजिर असरात से बचाने की सही और जुदोजहद करें. शादी ब्याह की तकरीबात के दौरान पैदा होने वाला फजला हो या फिर हमारे घरों में पैदा होने वाला मुख्तलिफ नौवियत का कचरा, हम दोनों को इस कदर बेहंगम तरीके पर गली कूचों में फेंक देते हैं कि हर तरफ बदबू फैलती है और तरह तरह की बीमारियों के पैदा होने का खदशा लाहक रहता है. समीन, हाल ही में भारत की एक मशहूर मारूफ माहिर तालीम सादिया हलीमा, जो की दुबई के तालीमी मंजरनामे में अपनी इख्तराई सोच की बदौलत इनकलाबी तब्दीलियां ला चुकी हैं, ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया. शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा तारिक राथर ने मौसूफा के साथ एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने बीरूनी ममालिक में वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ताल्लुक से बात की है. आइए समाप्त करते हैं इस इंटरव्यू का अगला हिस्सा.
2: वाजवान हमारा यहाँ कल्चर है, कश्मीर का कल्चर जो है हम सर्व करते हैं शादियों पे या किसी और जगह भी, ऐसे भी कोई फंक्शन होगा घरों में तो वहाँ होता है, लेकिन वेस्टेज भी होता है. दिस इज यू नो एक्नोलेज्ड फैक्ट, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता.
3: अब अगर हम बात करें जैसे कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है, तो अभी जो दूसरे कंट्रीज में इसका पूरा पूरा रिवाज हो चुका है कि सस्टेनेबल गिफ्टिंग करेंगे, ताकि इस तरह से जो लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें कि वो सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं, उनको प्रमोट किया जा सके. तो इसका
2: लाइक क्या क्या हो सकता है उसमें,
3: जैसे कि वुड के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बैम्बो के प्रोडक्ट्स हैं, या इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जूट के बैग,
2: कागज भी इसमें आता है.
3: जी जी, तो रिसाइकल पेपर इसमें आता है. तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट करते हैं. इसके अलावा जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन की फील्ड ले लें, तो वहां पे ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट कर रहे हैं. ग्रीन बिल्डिंग्स के कुछ नॉर्म्स हैं कि वो ये चीजें हैं जिनको फॉलो करते हैं सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, और अगर वो फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, तो फिर उनको ग्रीन बिल्डिंग का वो सर्टिफिकेशन दिया जाता है. इसके अलावा और जितनी भी जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस की का जो फील्ड है, उसमें भी हम देखें उस सेक्टर में भी, तो उसमें भी जीरो वेस्ट है, या इसके अलावा और भी पॉलिसीज बनाई गई हैं कि अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम सस्टेनेबिलिटी को की तरफ हम बढ़ते हैं. तो ये सब जो अवेयरनेस है है और प्रैक्टिस है, दो चीजें हैं, अवेयरनेस टू एक्शन। ये मुझे लगता है कि अभी भी हमारे मुल्क में इस पे तवज्जो देने की जरूरत है, जबकि और दूसरे
2: मुल्कों में
3: इस पे बहुत तवज्जो दी जा चुकी है। अगर मैं सिंगापुर की मिसाल दूं, सिंगापुर में मैं जाती हूँ, वहां रहती हूँ अपने बेटे की फैमिली के साथ, तो वहां पे जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है, वो एक एक फैमिली इतनी अवेयर और इतनी कॉन्शियस है कि वो रिसाइकल्ड मटीरियल

0: को कभी भी वो गार्बेज में फेंक ही नहीं सकते, तो वो अलग से ही रिसाइकल मटेरियल को रखते हैं। जैसे कि आप देखिए अमेजोन से कितने हमारे पार्सल्स आते हैं, छोटी सी चीज आप ऑर्डर कीजिए, पेन ऑर्डर कीजिए, कितना पैकेजिंग का सामान उसके साथ होता है। मैं तो सबसे पहले कहती हूँ इसे ही बंद कर देना चाहिए, ये ऑनलाइन शॉपिंग को ये बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है हमारे सस्टेनेबिलिटी को। तो वो जो रिसाइकल मटेरियल्स होते हैं उनको वो अलग सेग्रीगेट करते हैं, जो किचन मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पील्स होते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, उसे वो अलग सेग्रीगेट करते हैं। बाकी और जो दीगर वेस्टेज होते हैं उनको अगर करते हैं तीन हिस्सों में उसे बांट करके, उसके अकॉर्डिंग उनके लिए प्लेसेस बने होते हैं जहां वो डालते हैं, और जो रिसाइकेबल मटेरियल्स हैं वो डायरेक्टली रिसाइकल के लिए चले जाते हैं।
1: डॉक्टर मैम, आपने और जितनी कंट्रीज का आपने दौरा किया है, बहुत सारी कंट्रीज का, तो कहां कहां आपको देखने में आया कि जहां एक्सपीरियंस आपने कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वी शुड फॉलो या वी शुड यू नो इंप्लीमेंट दोज प्रैक्टिसेस, कुछ मिसालें देंगे आप?
0: जी, जैसे देखिए मैं मालदीव्स की मिसाल दूं। मालदीव्स एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, और ओशंस है वहाँ पे, वाटर बॉडी के पास ही है। वहाँ मैं ये कहूँगी कि वहाँ के लोग अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने वाटर बॉडीज के लिए, ओशंस के लिए बड़े कॉन्शियस हैं।
1: जी,
0: तो जिस स्कूल में वहाँ प्रिंसिपल मैं रही BIS में, वहाँ मैंने देखा स्कूल एजुकेशन में ही इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है कि वहाँ पाबंदी से बच्चे बीच क्लीनिंग के लिए जाते हैं।
1: जी,
0: वहाँ पाबंदी से बच्चे नाइट कैंप्स करते हैं स्कूल के अंदर, और उन नाइट कैंप के दौरान सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो सब वो एक्टिविटीज होती हैं जो उनको सस्टेनेबल बनाती हैं, कि हमें एज आइलैंडर किस तरह अपने आप को सस्टेन करना है,
1: हमारा फ्यूचर क्या
0: जी,
1: है,
0: हमारा फ्यूचर क्या है, उसमें हमें जो लोकल वहाँ पे सामान है
1: जिंदा रहना है, आगे जिंदा रहना है जो भी आएंगे।
0: जी, तो इसीलिए आप अगर जाएं वहाँ के बीचेस पे तो आप देखेंगे कि इतनी सफाई, इतना शफाफ पानी। मैंने भी एक कॉन्फ्रेंस भी की थी वहाँ,
1: जी,
0: तो मेरी एक फ्रेंड कानपुर से वहाँ आई,
1: जी,
0: और जैसे ही वो लैंड की मालदीव्स में माले एयरपोर्ट पे, उसने वहीं से अपने बच्चों को फौरन ही वीडियो कॉल पे लिया और कहा कि बच्चों देखो अभी भी दुनिया में नीला आसमान है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली के आसपास
1: क्या एयर क्वालिटी है,
0: एयर क्वालिटी और आसमान कैसा है, ग्रे आसमान,
1: एवरीवेयर इट इज यू नो इट इज हैपनिंग, एयर क्वालिटी खराब हो रही है।
0: और उसने फौरन ही कहा कि देखो और ओशन भी नीला है और इसका पानी भी इतना साफ है, अभी भी दुनिया में ऐसा है। तो मैं वहां उसकी तारीफ करूंगी मालदीवियंस की, वो बहुत ही एफर्ट्स लगा रहे हैं इसके लिए, मिनिस्ट्री भी लगा रही है और वहां की जो कॉमन पब्लिक है वो भी। अब अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में वेस्टेज का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है।
1: जी, हमें काम करना है प्रैक्टिकली, चाहे कोई एक दूसरा करे या ना करे। सो कि हम शायद हमें क्या ये समझना चाहिए कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि ये इंडिविजुअल जो हम कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है, दरिया बनता है, पौंड बनता है। क्या हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? क्या हमें इस तरह का एजुकेशन सिस्टम, जैसे आपने बताया वही तो है वहां पे, तो क्या इस तरह हमें इस उम्र में या जो भी जिस उम्र में है अभी भी जो हमें सुनने वाले हैं, सामयीन हैं, हम देखते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, किस तरह का अप्रोच हमें अपनाना चाहिए, किस तरह का माइंडसेट हमें बनाना चाहिए?
0: जी, सबसे पहले तो हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए,
1: जी,
0: कि अगर कहीं भी दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो हम क्लाइमेट एक्शन की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, या और भी दीगर प्रॉब्लम्स की बात करें, तो हम भी जिम्मेदार हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम ये नहीं कह सकते अरे हम क्या करें, हमारी तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, हम क्या करें, हमारा तो कोई हाथ नहीं है इसमें। नहीं, हमारा हाथ है, क्योंकि हम साइलेंट विक्टिम हैं, इसलिए भी हमारा हाथ है। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो अगर दुनिया में
1: गलत काम हो रहे हैं तो उसको हम सह रहे हैं, देख रहे हैं,
0: उसको हम देख रहे
1: हैं,
0: यस, तो हम भी जिम्मेदार हैं। तो कम से कम अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोलिए, आप सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाइए। उसके बाद जो छोटी छोटी चीजें हम अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, पहले उससे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम।
1: बिल्कुल,
0: हम दुनिया को तरकीब देने जा रहे हैं और खुद हमारा ये हाल है,
1: हमारा घर नहीं है,
0: वेस्टेज करते जा रहे हैं, हम एनर्जी नहीं सेव कर रहे हैं, हमारे पास वाटर वेस्टेज हो रहा है। इसके लिए क्या है कि हमें एक कॉशियस एफर्ट करके हर महीने अपने बिल को भी देखना है कि अच्छा मैंने पिछले महीने का ये था, इस महीने मैंने एफर्ट लगाया, अब कितना कम हुआ, वाटर कंजम्पशन कितना कम हुआ, इसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेज के यूजेस होते थे वो कितने कम हुए, वेस्टेज हमारे घर से कितना निकल रहा है, अगर हम स्कूल चला रहे हैं तो हमारे स्कूल में वेस्ट कहाँ कहाँ पे ज्यादा हो रहा है।
1: आपने वार्डरोब की बात की, उस बारे में जरा बताइए हम सबको कि वार्डरोब को कैसे समझना चाहिए लोगों को।
0: जी जी, देखिए हकीम साहब के नाम से शायद आप सब वाकिफ होंगे, हकीम अब्दुल हमीद, जो कि हमदर्द के फाउंडर हैं।
1: जी,
0: और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके स्कूल में काम किया, और जब वो बाहयात थे
1: जी,
0: तो मैंने उनसे बहुत ही क्लोज वे में मैंने उनके साथ काम किया। मैंने उनके लिए बल्कि चपाती भी एक दिन बनाई थी, वो भी मुझे फख्र है उस चपाती पे, हालांकि मैंने हजारों चपातियां बनाई होंगी लेकिन उस पर बहुत फख्र है। हकीम साहब एक शेरवा

0: 18 साल तक पहनते रहे,
1: अच्छा,
0: एक फिएट गाड़ी में घूमते रहे, जबकि उनके पैसों से कमाने वाले लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे
1: जी,
0: और बड़े बड़े सूट पहनते थे, महंगे महंगे सूट, मगर उन्होंने 18 साल तक उस एक शेरवानी को पहना। उन्होंने ये कहा कि जब इससे मेरी जरूरत पूरी हो रही है तो मुझे दूसरे को बनाने की क्या जरूरत है। तो जब भी हम अपने वार्डरोब
1: तो ऐसी शख्सियात जो है बहुत ही नायाब होती हैं दुनिया में,
0: लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं।
1: मेरा मतलब है हम आम लोग हैं तो आम लोगों को क्या करना चाहिए।
0: देखिए, आम लोगों को क्या करना चाहिए कि आम लोगों को सबसे पहले जब भी कुछ नया खरीदने जाए तो पहले जो आपका पिछला है उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है।
1: ओके,
0: अगर वो पहनने के लायक है तो आप किसी ऐसे को दीजिए जिसके पास नहीं है और वो उसे पहन सके, जरूरत है। अगर वो उस लायक नहीं है, बहुत घिस गया है, पिट गया है, तो फिर उससे और क्या दूसरी चीजें बन सकती हैं। आजकल आपने देखा है कि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पुराने कपड़ों से दूसरे मटेरियल्स बना रही हैं, उसको काट काट करके उससे बनाते हैं, उसको फिर दोबारा से धागों में कन्वर्ट करके फिर बनाते हैं। तो हमें उस तरह की एजेंसीज को पता करके
1: ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसा इंटरवेंशन होना चाहिए सरकार की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, जहां ये वेस्टेज है वहां पे वो यूटिलाइज हो
0: जाए। जी जी, वहां पे हमें भेजना चाहिए। तो एक तो
1: वो रिसाइकलिंग वगैरह करते होंगे,
0: जो रिसाइकलिंग करते हैं उसको दोबारा से इस्तेमाल में लाते हैं, यानी कि उसको सिर्फ लैंडफिल में नहीं फेंक देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान होता है जब हम किसी भी चीज को बस लैंडफिल के लिए डाल देते हैं। तो हमें सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, हम सब जानते हैं इसराफ कितना मना है हमारे
1: ओवरऑल है,
0: इसराफ मना है,
1: ऑस्टेरिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिस।
0: बिल्कुल, मॉडरेशन में, इत्तेदाल में जिंदगी गुजारना है। जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट आजकल हो गया है कि रिपीट नहीं करना है।
1: Yes.
0: अब मैंने एक जगह पहन लिया, दोबारा कैसे पहनेंगे?
1: अच्छा,
0: तो हर कोई ये सोचता है कि वो क्या कहेगा। भाई, वो कौन है? हम और आप ही तो वो है ना।
1: जी जी,
0: वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगा? अगर हम कहना बंद कर दें दूसरों के लिए तो वो कुछ नहीं, वो तो हम ही है, और कौन है वो?
1: बिल्कुल।
0: तो ये रिपीट करना शुरू करें कि आप 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 लगाते हैं, जो वेडिंग वगैरह में लोग कपड़े लेते हैं, क्या इस्तेमाल होता है उनका?
1: बस वन टाइम
0: इस्तेमाल होता है। और जो आसपास के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके भी काफी महंगे होते हैं। तो हमें यहीं पे इसको रोकने की जरूरत है कि हम उसे क्या कुछ इनोवेटिव वे में, कुछ उसकी चुन्नी तब्दील करके, कुछ उसका जम्पर तब्दील करके, या उसमें कुछ और डिजाइन चेंज करके, क्या हम उसे दोबारा तिबारा चौबारा नहीं पहन सकते हैं?
1: बिल्कुल।
2: समीन, मरकज में एनडीए या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार ने अपने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन 12 साल में मरकजी हुकूमत ने कई ऐसे अवाम दोस्त इकदाम किए जिनकी बदौलत मुल्क भर में आम इंसान की जिंदगी पर बेहद मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। इन्हीं इकदाम में आयुष्मान भारत स्कीम भी शामिल है। इस स्कीम के तहत मुल्क भर में लोगों को मखसूस कार्ड फराहम किए गए हैं और किसी भी बीमारी के लाहक होने की सूरत में लोगों को 5 लाख रुपए तक के इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाती हैं। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान इस स्कीम से लाखों अफराद मुस्तफीद हुए हैं। डायरेक्टर न्यूज आकाशवाणी श्रीनगर तारिक राथर ने इस स्कीम के खदोखाल और इसके फवायद के ताल्लुक से वादी के एक मारूफ माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब के साथ एक खसूसी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, जिसका कुछ हिस्सा हम आपकी समातों के नजर करते हैं। आइए सुनते हैं।
1: डॉक्टर एजाज अयूब साहब, तो हम जानना चाहेंगे कि चूंकि आयुष्मान भारत ये अंडर इम्प्लीमेंटेशन है जम्मू कश्मीर में और कश्मीर रीजन में भी इसका जो एक इम्पैक्ट है, तो ये जो आयुष्मान भारत जो है स्कीम, ये क्या है?
3: किसी भी मुल्क में टैक्स कलेक्शन जब सरकार करती है तो उस टैक्स कलेक्शन का एक हिस्सा बहुत बड़ा मुल्क की तरक्की के लिए होता है, जिसमें हम ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स, हॉस्पिटल्स, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें वेलफेयर के लिए भी इस्तेमाल होता है। उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिक सतह से नीचे है, उनके लिए हम कैसे, ताकि वो इक्विटेबल रहें, आपको खाना, आपको कपड़ा, आपके सर के ऊपर छत, इसके अलावा तालीम और हेल्थ केयर,
1: जी,
3: इन चीजों का ख्याल कैसे सरकार इन लोगों के लिए रखे। तो हर साल जब भी बजट बनता है उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन जाता है इन लोगों के लिए जाता है, लेकिन ये स्टैंड अलोन नहीं जाता है, इसके पीछे पॉलिसी होती है। इसी तरीके से हिंदुस्तान में नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने जब एनालिसिस किया पूरे हिंदुस्तान का, उससे पता चला कि 2018 से पहले 2017 में किया, उससे पता चला कि करीब करीब 6 करोड़ लोग हर साल हिंदुस्तान में गरीबी की सतह से नीचे चले जाते हैं, इस वजह से क्योंकि उनको हेल्थ केयर पे काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। अचानक से कोई बीमार हो गया तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो उनको होते हैं
1: जी,
3: जो कुछ ऐसी बीमारियां एक्सीडेंटल हो या कुछ हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो या तो लोन उठाते हैं या जो सेविंग्स है वो खत्म करते हैं, एज ए रिजल्ट वो पॉवर्टी की सतह से नीचे चले जाते हैं
1: जी।
3: 6 करोड़ हर साल, ये एक स्टैगरिंग नंबर था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज का खदशा, जैसे कि हमने रिसेंटली कोविड भी देखा, या उसके अलावा हमने देखा फैटेलिटीज ड्यू टू एक्सीडेंट्स या फैटेलिटीज ड्यू टू कुछ ऐसी डिजीज है, हालांकि वो क्रिटिकल डिजीज नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से भी बहुत सारे फैमिलीज में जो असर पड़ता है।

0: कर सकती है।
1: एज एन एक्सपर्ट कैसे आप समझते हैं कि क्या बेनिफिट्स अपेरेंट ओवरऑल क्लियर बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कीम?
0: क्लियर बेनिफिट सिंपल सी चीज है। मैं एक यूनिट इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, एक हाउस होल्ड है जिसकी हैंड टू माउथ है, जो कि हमने देखा कि लगभग 50 करोड़ इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं लोग, और 10 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी मेंबर इसमें से, अगर अर्निंग मेंबर तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, नॉन अर्निंग मेंबर भी, तो जो स्पेंडिंग पैटर्न है घर का, एक तो हो गया किचन या ग्रोसरी एक्सपेंसेस, उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई वगैरह, उस पर असर पड़ जाता है। तो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रही है, अगर घर पे कोई ज्यादा बीमार पड़ गया तो बीमारी एक प्रायोरिटी में पढ़ाई के ऊपर आती है, तो पहले बीमार शख्स को इलाज के लिए पैसे लगाने
1: पड़ते हैं। इनक्रीजिंग ऑफ एक्सपेंडिचर,
0: करेक्ट, एक्सपेंडिचर। तो ये आएगा कहां से? ऑब्वियसली किचन से तो नहीं आएगा, तो लोगों की पढ़ाई से या बाकी जरूरियात से कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आप एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जहां पे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए या सेहतमंद रहने के लिए उसको सैक्रिफाइस, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। क्या मुझे बच्चों को कंटिन्यूसली पढ़ाना है, या मुझे बच्चों को पढ़ाई से उठा के उनको काम पे लगाना है
1: जी,
0: या कोई अर्निंग हैंड ही खुद बीमार हो जाता है। तो ये ट्रेड ऑफ की वजह से आप 10 साल के बाद देखेंगे एक सोसाइटी बहुत ही आपकी वो कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट हुई नहीं होगी। जैसे कि हम नेबरिंग कंट्रीज में देखें, चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया ह्यूमन डेवलपमेंट पे, तब जाके उनका आउटपुट इतना ज्यादा। हिंदुस्तान की भी यही कोशिश है, जो पॉलिसी मेकर्स है नेशनल हेल्थ पॉलिसी की भी या इकोनॉमिक पॉलिसी की भी, कि हम लोगों के जो सोशली वल्नरेबल है, इनकी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है जिसकी वजह से इनको एग्जिस्टिंग बजट जो कि ऑलरेडी बहुत टाइट है उस पर असर ना पड़े, हम इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दें। वो सपोर्ट इस, जैसे कि मैंने कहा, 17,500 करोड़ की सूरत में इस बजट में है, और ये दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है, और हॉस्पिटल्स इसमें भी ऑनबोर्ड हो रहे हैं, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी रिलैक्स हो रही है, लिबरल है सरकार। जैसे कि मैंने कहा, जो एलिजिबिलिटी हमने देखी, लेकिन जिन लोगों के पास हम सोसाइटी में गोल्डन कार्ड देखते हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन गोल्डन कार्ड है
1: बिकॉज़ ऑफ यू नो लिबरल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक रियलिटीज ऑन ग्राउंड, जो रिक्वायरमेंट है।
0: ये इसमें रेवेन्यू लीकेज का भी एक चैलेंज आ जाता है सरकार के पास, जैसे कि बहुत सारी सरकारी स्कीमों है रेवेन्यू लीक होता है, लेकिन अब उसको कंटेन करने के लिए सरकार के पास इवेंचुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता डेटा ज्यादा जमा होना चाहिए। जैसे आधार ने बहुत अच्छी चीज की कि आधार बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, जो भी कोई बेनिफिट है वो आइडेंटिफाइड है एंड यूजर, वो डायरेक्टली उसके
1: अकाउंट में ट्रांसफर हो
0: जाए। मिडिलमैन जो कि इसमें एक्सप्लॉइट करते थे, उस चीज को लेके काफी जो है सुधार आया। तो मेरे ख्याल में ये रेवेन्यू लीकेजेस भी कंटेन हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये स्कीम यहाँ पे 2020 दिसंबर से लागू हुई, रेस्ट ऑफ द कंट्री में सितंबर 2018 से लागू हुई।
2: इसके साथ ही नई मंजिलें प्रोग्राम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। निगराने आला तारिक राथर, तरतीब तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौश की कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग मुख्तार अहमद शाह, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
3: जी समीन, आप समाप्त कर रहे थे हमारे शोबे खबर की पेशकश नई मंजिलें। हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। जमीन सपहर के 3 बज रहे हैं। अब पेश होता है फाजी भाइयों के लिए फिल्मी नगमों का प्रोग्राम।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, फिल्मी नगमे लेकर हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। आइए समाप्त करते हैं प्रोग्राम की पहली सौगात।

फौजी भाई को आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में आनंद बख्शी के अशआर समाअत किए, अनुराध पौडवाल और महेंद्र कपूर की आवाज़ें थीं। फिल्म का नाम अमृत।

आइए दोस्तों, अब नितिन मुकेश और लता मंगेशकर को सुनते हैं। संतोष आनंद के अशार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी।

0: फौज भाई, आपने साहिर लुधियानवी के अशआर समाअत किए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। दोस्तों, फिल्म का नाम कभी कभी। फौज भाई, प्रोग्राम जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: फौजी भाइयों, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है।

फाजी दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को सुना फिल्म काला पत्थर में। जिन दोस्तों ने अपने रेडियो सेट सभी अभी ऑन किए हैं, उन्हें हम बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर का प्राइमरी स्टेशन मीडियम वेव और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, इसके अलावा हम आपसे जुड़े हैं DTH पर और आप हमें सुन सकते हैं आप ही के मोबाइल फ़ोन्स पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऐप के ज़रिए और AIR न्यूज़ पर भी हम आपसे मुखातिब हैं।

कभी अजनबी थे। जी हाँ दोस्तों, ये है फिल्म का नाम जिसका नगमा आपने अभी अभी सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। आइए दोस्तों, आप आशा भोसले को सुनते हैं फिल्म खूबसूरत में।

फौजी भाइयों, आपने अमित खन्ना के बोल समाप्त किए कर रहे हैं। बप्पी लहरी की मौसीकी में किशोर कुमार की आवाज़ है। फिल्म का नाम है चलते चलते।

0: कहना। जी हाँ फौजी भाइयों, कभी अलविदा ना कहना, सिर्फ ये कहना कि आज के बाद, आज के प्रोग्राम के बाद फिर एक प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात होंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान लाहौता फरहान को इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। ठीक 3:50 हो रहे हैं। आइए समीन समाप्त करते हैं उर्दू खबरों का बुलेटिन।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लोग गर्मी के असरात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम का इजहार ख्याल। समाजी बहबूद की वजीर सकीना ऐतू ने जालावारी से मुतासर किसानों को हर मुमकिन इमदाद का दिलाया यकीन। तम्बाकू नोशी के खिलाफ आलमी दिन आज। और IPL के फाइनल में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान होगा मुकाबला। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अक्सर हिस्सों में जारी गर्मी की शदीद लहर को मद्देनजर रखते हुए आवाम से कहा है कि उन्हें पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए गर्मी के असरात से बचने की तदबीर करनी चाहिए। आकाशवाणी पर आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि गर्म लहर के असरात से महफूज रहने के लिए आवाम को सरकार और मुतलका महकमों की तरफ से जारी किए जाने वाले रहनुमा खतूत और मशवरों पर अमल करना चाहिए।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: वज़ीर आज़म ने मुल्क के तरक्याती सफर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे आसपास कुछ ऐसी पेशरफ्त हो रही है जो बाज़ औक़ात नज़र नहीं आती। अलबत्त उन्होंने कहा कि उन लोगों का साथ दिया जाना चाहिए जो मुल्क की तामीर में तहरीक बख्श काम करते रहते हैं।
2: भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
1: वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार मुल्क में विरासत के अनमोल मकामात को महफूज रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। उन्होंने आम लोगों से तलकीन की कि वो इस काम में अपना रोल अदा करें। वज़ीर आज़म ने दीगर कई अहम मौजूआत के अलावा माहौलियात का तहफ़ुज़ यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने खासतौर पर नदी नालों, दरियाओं और तालाबों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने की ज़रूरत उजागर की। समाजी बहबूद की वजीर सकीना ऐतू ने कहा है कि सरकार क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्रू ने खबर दी है कि वजीर मौसूफा ने जिले के दमहाल हांजीपुरा में अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल का जायजा लेने के बाद जालाबारी से मुतासर हुए किसानों को हर मुमकिन मुआवनत का यकीन दिलाया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
3: कल भी कई एरियाज में नुकसान हुए बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, तो मैंने उसी टाइम बात की है कंसर्न ऑफिसर्स से। लेकिन जहां तक क्रॉप इंश्योरेंस का ताल्लुक है वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो डिपार्टमेंट को हिदायत दी है, जो कंसर्न मिनिस्टर साहब है वो इसको एग्जामिन कर रहे हैं और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जो क्रॉप इंश्योरेंस का इशू है उसको हम इंशाल्लाह सेटल करेंगे ताकि हमारा जमींदार भाई जो है वो बच सके, उसके नुकसान जो होते हैं वो ना हो और जो वो पेस्टिसाइड्स और बाकी चीजों के लिए बैंक लोन का इस्तेमाल करता है को फायदा हो क्रॉप इंश्योरेंस से ताकि वो आगे बढ़े और उसका जो सेब है वो सेफ रहे।
1: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि मुसल्ला अफवाज ने मुल्क के मफादात का तहफ़ करने में हमेशा पेशवराना सलाहियत का मुजाहरा किया है और वो इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहद बस्ता हैं। मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणी ने कहा कि अंदाज फिक्र और कार्रवाई में एक तरह से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। इस दौरान एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने

0: के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मेयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। बैंक की तरफ से कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत भी कई सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा शाम 5:50 पर गोजरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
1: हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं। समीन सफर के 4:00 हैं। समाज की जांच का पहाड़ी प्रोग्राम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

अस्ति आवाज तुसां तोणी पहुंच रही आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी। मैं हां तुसां दा मेज़बान इम्तियाज अहमद मीर प्यार खलूस ते ताज़ीम नाल अपने सारे सामीन को अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करदा ते प्रोग्राम विच जी आया आखदा। सामीन उम्मीद करदे हां कि तुसी सारे बखैर वाफियत होसो और हमेशा दी तरह अपने पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम दिलचस्पी और कौर नाल सुन रहे होसो। सामीन अज महीने का आखिरी अतार है, जिसलै कि तुसी सारे जानते हो कि हर महीने के आखिरी अतार को वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपनी कौम नाल खिताब करदे हन और अपनियां गल्लां सांझियां करदे हन। समें अज 134वीं किस्ता सी ते फिर पेश है 134वीं किस्ता पहाड़ी तर्जमा। माड़े प्यारे हमवतनों आदाब, मन की बात बिच एक बार फिर तुसां नाल जुड़का मुको मुझ खुशी हो रही है। मुल्क दे मुख्तलिफ हिस्सों बिच असदे मुल्क दे लोग मुल्क वास्ते समाज वास्ते इजी अजीब चीज़ां कर रहे हैं और जद उनके बारे बिच सुनते हाँ तो असा को एक नई तारीख मिलती है। आज प्रोग्राम की शुरुआत में एथलेटिक्स बिच मुल्क की इजी कामयाबी थी कर सा। कुछ दिहाड़े पहला ही झारखंड के रांची बिच नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबला होया। इस बिच करीब 800 एथलेटिक्स ने हिस्सा किन्या। मुल्क भर थी आए दे आसे। इस दौरान चार मुख्तलिफ यूनिट बिच चार नेशनल रिकॉर्ड भजे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार उन्हां साथियों सुन मुख्तलिफ कैटेगरी बिच नवे रिकॉर्ड बनाए। मैं सब थी पहला तो इन्हां सबां को मुझ मुबारकबाद देंदा। साथियों एक यूनिट जिसकी मुल्क भर बिच काफ़ी चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर्स रेस, 100 मीटर की दौड़। महज दो दिहाड़ियां के अंदर मैनज 100 मीटर रेस बिच नेशनल रिकॉर्ड त्रै वार भजद है। जिन्हां दोवां खिलाड़ियां सुन एक कमाल दसा लिया है ओवन गुरविंदर सिंह और अनुमेश कोजू। मैं सोचा इस बार मन की बात बिच उन्हां दोवां खिलाड़ियां नाल गल कीती जुले। अनुमेश जी नमस्कार, गुरविंदर वीर तुसां को भी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा भराओ, तुसां ते काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल कीती है, तुसां दी जोड़ी सुन भी बड़ा कमाल कीता है। असा सुनता मौसीकी बिच जुगलबंदी दिखी आसी, लेकिन चैलेंज बिच हुण जुगलबंदी होंदी है कि एक बार एक चैलेंज दे फिर दुआ इस चैलेंज को चावे फिर त्री बार करके ना। बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू रहा तुसां दा। मैं चाहता कि मन के बाद दे सामीन को पता चले कि तुसां लोगों के बारे बिच उन्हां को जानकारी होवे, तुसां सुन जिहड़ा पराक्रम कीता दा उसके बारे भी पता चले। नमस्ते सर, माड़ा नाम अनुमेश कोजू है। मैं 200 मीटर और 400 मीटर दा नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हाँ। मैं छत्तीसगढ़ बिच रहिंदा और आला मैं उड़ीसा बिच खेड़दा। मैं लास्ट एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल गिन के आया और मैं एथलेटिक्स 2021 थी शुरू कीता जब मैं स्कूल

थी, पास आउट होया सा। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर थी, पास आउट आ, और मैं पहला फुटबॉल खेड़ा आसा। और माड़े पेरेंट्स कोविड दे वेले मुको थोड़ी देर छूट दें दिया से कि तू जाके बाहर दौड़ के या खेड़ के। जब कोविड खत्म होने लग्या, माड़े फुटबॉल दे जड़े फ्रेंड्स आसे उन्होंने सुन मुको आख्या कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तो उस बीच पार्टिसिपेट कर। और मैं पार्टिसिपेट किया और मुको पता नहीं आसा कि मैं उथे थी नेशनल लेवल का सिलेक्शन है। मैं उथे थी नेशनल भी सिलेक्ट होया और आज मैं इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और गुरिंदर वीर जी के है? नमस्ते सर, माड़ा ना गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी बिच पेटी अफसर हाँ और मैं इंडिया का सब थी तेज स्पेंटर हाँ। हूँ ही मैं 100 मीटर बिच 10.09 का नैशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हाँ जड़ा 10.1 थे बेर दे बुन दौड़िया। और मैं कोशिश कर रहा कि मैं ट्रैक और वर्दी बिच भी अपने मुल्क की सर्विस करा। माड़े वालद और माड़े दादा दोए स्पोर्ट्स करदे आसे ते असां दे इंडियन दा कल्चर है जिस वेले भी कोई त्यौहार होंदा है, जब दिवाली है, नया साल है, तो असीं अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने प्यो दी ट्रॉफियां और मेडल की सफाई करदा सा तो मुझको मुझ असल लगदा सा, मैं मुझ खुश होंदा सा। तद जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करदा सा तो मैं पुछता सा कि ये ट्रॉफी कित्थों जीती दी है, ये मेडल किसने जीत्या, ये फोटो कद दी है। तो मुझको अपनी कहानी सुनांदे से कि भाई मैं इत्थे खेड़े वास्ते गया, मैं ये नेशनल मेडल जीता और मैं अपनी टीम को इस तरह जिता लिया। तो फिर मैं भी उनको दसता सा कि भाई मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है और रनिंग करने को गेंदे से मॉर्निंग बिच। तो मैं भी उनको आखन लग गया कि मुगो भी केन का जुलिया करो अपने नाल। तो मुगो भी वो अपने नाल जुलन लगे। तो जड़ा उन्हें सुन अपने गेम्स स्पोर्ट्स पर सिक्ख्या दा सा वो मुगो भी सिखाण लगे। तो माड़ा इंटरस्ट बद गया, मैं यूसिन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भजदा दिखिया। तो एक कहानी है, ए मजा ही है कि मैं कि टीवी दिख रहा सा तो मम्मी सुन मुगो टीवी बंद कर छोड़िया। तो आख्या कि बच्चा पढ़ने का वेला हो गया है, तू पढ़। तो मैं आख्या भाई ठीक है, तुसी मुगो टीवी नहीं दिखने देंदे, एक तेड़ा ऐजा आसीगा तुसी मुगो टीवी बिच लौटसोगे और दिखसोगे कि गुरविंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब माड़ी माँ मुगो टीवी पर दौड़दा दिखती है। वाह वाह वाह, बड़ी शानदार गल है भाई ये तो तुसां दी। हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर माड़े फादर वो भी वॉलीबॉल खेडदे से घरै दी मुश्किलात दी वजह नाल उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उन्हों का जिहड़ा सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने सुन माड़े अंदर वो सपना दिखिया, माड़ा बच्चा वो सपना पूरा कर सीगा। तो मैं उन्होंने गल करता सा, फिर सुनता सा कि मिल्खा सिंह इतनी मेहनत कर दिया से। तो मैं उन्होंने को आखता सा कि किमें भी एक तैड़े तुसां दा सपना पूरा कर सांगा। तो वह आखते से कि सपना पूरा इस तरह नहीं होता, उस वास्ते मुझ हार्ड वर्क करना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी है। मिल्खा सिंह जी खून दी उल्टियां कर दिया से, धुप्पे भी दौड़ दिया से, सारा सारी दिहाड़ी ट्रेनिंग कर दिया से। तो वह चीज़ां माड़े को इंस्पायर कर दियां सियां, माड़े वालद मुगो इंस्पायर करते रहे कि मैं दौड़ सा तो अपने मुल्क वास्ते मैडल आना जीता। और यह भी ऐसा कि भाई जब मैं कोई यूनिट चूज किया 100 मीटर तो सारे मुगो आखन लगे कि भाई 100 मत करो, 100 इंडियन का यूनिट नहीं है, इंडियन की बॉडी 100 मीटर वास्ते नहीं बनी दी। तो मैं और माड़े फादर हमेशा आखते से कि अगर गुरविंदर अगर असा सोने चूज किया है तो असं इसकी पिछे नाठसांगे और तू कर के दसाल सिंगा। मुगो तुड़े पर पूरा भरोसा है। वह भरोसा जब माड़े को माड़े वालद सुन माड़े पर किया तब उन्होंने भरोसे को अपनी हिम्मत बढ़ा के मैं टुरिया। और आज हर इंडियन आखता है कि भाई इंडियन स्प्रिंट कर दिखो, तुसा सुन मुझ बड़ा कमाल किया है। और सिर्फ 2 दिन के अंदर तुसा दुआई सुन 3 बार नेशनल रिकॉर्ड बनया 100 मीटर्स बिच दौड़ना। जिस तरह गुरविंदर सुन आख्या कि लोग आखते से कि भारत के लोगों का तो जिसम इस काम वास्ते बनया ही नहीं, इतना मुश्किल होंदे होया भी तुसा सुने जिहड़ा काम किया है। दुआई कोलू मैं जानना चाहसांगा और मन की बात दे सामीन भी सुनना चाह सकगे कि केड़ा जज्बा आसा, के जिद आसी, के सोचा आसा और के कर रहा सी, ये कितना मुश्किल होंदा है। गुरिंदर वीर जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जद स्टार्टिंग बिच सर मुझ स्ट्रगल आसा, मुझ बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा, मैं सही चूज़ किया, क्योंकि हर बार तुसी नहीं जीतते, कदे कदे तुसी सीखते हो। जद मैं हारदा सा, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती आसी, कोई इंजरी आ गई आसी, तो माड़े घर आले मुगो सपोर्ट करते आसे कि भाई कोई नहीं, एक तैड़ा बुरा

चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इसकी जिंदगी खराब नहीं होती। सपने देखना नहीं छोड़ दे, तो मड़े कोच भी मुगो ये सिखा लिया कि अगर तू नहीं कर सेंगा तो कोई नहीं कर सकसीगा। तो इस तरह जब असा की कम्युनिटी असा के आस पास के लोग असा को उत्साहत कर दिया से असा कदे भी वह मोटिवेशन नहीं बचिया। अनिमेश जी सर मुगो तो सारे लोग आखते से कि जब मैं 2021 शुरू किया एथलैटिक्स तो मुगो आखन लगे कि देख इन फील्ड है तू कर सकसेंगा कि नहीं। तो मैं आख्या कि मैं तो इस फील्ड बिच आ गया दा तो मैं जरूर कर सांगा। माड़े वालद भी मुगो हमेशा आखते से कि इस फील्ड बिच गया दे तो कदे पिछे मुड़ के नहीं दिखना, किया कि सोचते तो सारे हैं मगर करके घट ही दसते हैं। तो बस इस फील्ड बिच तू आ गया दे तो तू इस पर अमल कर, इस फील्ड बिच अगे बद तुगो सारी फैसिलिटीज़ सारी चीज़ असी सपोर्ट्स कर सांगे, फैमिली सपोर्ट फाइनैंशियल सपोर्ट सब चीज़ा असी लोग कर सांगे। तो बस मेहनत कर और इंडिया को दसाल कि इंडियंस भी दौड़ सकते हैं, क्या कि ए मुगो भी लोग आखते हैं कि इंडियंस दे जीन्स इजे नहीं होते कि वो सब 10 या 10.1 के अंदर दौड़ सकसनगे या कोई वो स्प्रिंट कर सकता है, मगर असा दोवां सुन ए प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, इजा कोई हार्ड नहीं है, असी सारे भी एक कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ा मुगो मुझ मोटिवेट कर दी असियाँ मैं जिस तरह असा सुन ट्रेनिंग करते रहे असा को टाइमिंग बन रहा सियाँ अपना और बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिस रही सी और इंडियंस भी कर सकते हैं और असी होर भी कर सांगे और असी दोवें का सिलेक्शन कामनवैल्थ गेम वास्ते भी होया है उत्थे भी कंपटीशन बिच असी असल परफॉर्म कर सांगे। अच्छा देखो माड़े मन बिच एक कोताहिल है और लोगों को भी उसी गा कि मैं सुनया कि तुसें दोवें असल दोस्त भी हो और दोवें उठान के रखे दे कि तुम्हारा रिकॉर्ड पढ़ मैं तुरा रिकॉर्ड बन सांगा। सर जी पहला रिकॉर्ड 10.8 का आसा जड़ा कि माड़ा ही आसा और फिर उसको गुरिंदर वीर सुन पनिया, गुरिंदर वीर सुन सेमीफाइनल भी पनिया 10.17 करका और मैं भी फिर उसको सेमीफाइनल 2 बिच 10.15 करके पनिया। तो उस वेले जब माड़ा सेमीफाइनल होया असी दोए खुश आसिया कि हाँ चलो ठीक है आई रिकॉर्ड भजया और चलो असी दोवें सुन पनिया दे, क्योंकि उस वक्त कंपटीशन भी राइवलरी रही है लेकिन असी दोवें ठान के रखी दिया सी कि असी कर सांगे। असी लोग सऊदी अरब भी गए दे असियां कंपटीशन करने वास्ते, उत्थे भी असी दोए रूममेट्स आसियां तो असी भी एक गल करदे आसियां कि इंडिया दे स्प्रिंटिंग को अग्गे किस तरह खड़ना है वह असां दे हत्थां विच है और हर चीज़ जिहड़ी असी कर सांगे बाकियों को मोटीवेट कर सेगी। गुरविंदर क्या आखना चाहते हो सर? असं दोवें सुन डिसाइड किया असा कि असी दोए असल दौड़ सांगे तो कदे भी सर एक दुए की जरूरत होंदी है तो असं एक दुए के नाल खले रेंदे हैं। जिस तरह भी रिकॉर्ड करने थी पहला जब मैं रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश सुन किया तो जब असी वार्म अप कर रहे से तो मैं अनिमेश को दसाल रहा सा कि अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पर जाकर बिज उत स्ट्राइड केन केन और वार्म अप कर सांगे इतें पर वार्म अप सही हो सीगा तो एक दुए की हैल्प करते हैं एक दुए की हैल्प करते हैं करते रह सांगे और दुआ भी इंप्रूव करता है। दोस्ती भी सर ग्राउंड की बाहर है कंपटीशन के बाहर है तो असं दोस्त हाँ जब असं ग्राउंड बिच गेंदे हाँ तो एक दुए के कंपीटेटर हो गेंदे हाँ तो यह होंगे कि मैं इसते फास्ट दौड़ा। देखो तुसा सुन जी स्पर्धा की है ना वो मुल्क का मान बधाए वास्ते ही है मुल्क के मुस्तकबल बिच इस जगह पर पहुँचाने वास्ते ही है और एक पॉजिटिव सिपरट ही है और मैं मनदा कि तुसा का जरा स्पोर्ट्समैन सिपरट है खेडना भी है एक दुए को चैलेंज भी देना है और फिर अगे निकलने की कोशिश करना है फिर अगे जाने वास्ते एक दुए की मदद भी करना है ये अजीब काम है। तो सर लोगों को माड़ी तरफ थी मुझ मुबारकबाद माड़ी तरफों मुझ शुभकामनाएं। तुसी मुल्क का नाम भी रोशन कर सोगे मुझको पूरा भरोसा है तुसी इस तरह ही मेहनत करते रहो मुझ तरक्की हो सीगी बहुत बहुत शुभकामनाएं माड़ी तरफों। शुक्रिया सर तुसा का भी शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। माड़े प्यारे हम वतनों इस वेले मुल्क दे ज्यादातर हिस्सों बिच मुझ गर्मी पै रही है तेज धूप गर्म हवावां इजे मौसम बिच अपना ध्यान रखना मुझ जरूरी है पानी पींदे रहो धुप बिच अगर निकलना ही पवे तो थोड़ा संभल कर निकलो। इस संबंध भी सरकार दी भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स हुन जिहड़ी गाइडलाइनस जारी कीती दी ओ भी भुल्यो ना। साथियों असां दे इत्थे गर्मी थी लड़ने दा तरीका कई बार रसोई बिच ही मिलदा है तुसां सुन देखिया होसीगा जियां जियां गर्मी बद्दी है उसरै घरै दी रसोई दा जायका बदल गेंदा है रसोई दा प्रकार बदल गेंदा है कुरे मटके दा पानी निकल आंदा है कुरे दही जमना शुरू हो गेंदा है ते कुरे कच्चे आम उबलना शुरू हो गेंदे और फिर शुरू होंदा है देसी पे दा
دور دیسی پیے تھیں تسی واقف ہو اگر تسی شمالی ہندوستان بچ

सोगे त काफी जाई त तुसा को मिल सीगा अम्पना कच्चे आम दा जायका और गर्मी थी राहत भी। पंजाब हरियाणा गेसोगे त लस्सी मिल गई सीगी बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात बिच छाछ जिसरे हर खाने दी साथी बन गेंदी है। बिहार झारखंड मशरकी उत्तर प्रदेश बिच सत्तू दा शरबत उसकी तुके गल है ढेड भी पार गेंदा और ताकत भी। कोंकण और गोवा बिच कोकम शरबत सूल घड़ी। जनूबी हिंदुस्तान बिच पांकम नीरमोर संभारम और उड़ीसा बिच बेलपना वो सिर्फ पिए नहीं भारत के मुख्तलिफ खित्यां दी रवायत का हिस्सा है और इस बिच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक गल जरूर ध्यान रख सोगे उन्होंने ज्यादातर चीज़ा असा की अपनी रसोई थी निकल दियां असा दे खेत खलिहान थे निकल दियां और कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है लेकिन पीढ़िया का तजर्बा उन्होंने समाया है। तुसीं भी गर्मी के दौरान देसी पीलों का खूब लुत्फ चाहो। साथियों गर्मी आंदियां ही एक और चर्चा हर घर भी शुरू होंदी है और वह आम आम चर्चा का मौजू होंदा है। भारत भी शायद ही कोई घर जो सीगा जिसे गर्मियों में आम की गल ना आती हो। हर इलाके का अपना आम अपना जायका अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापस अल्फांसो गुजरात का केसर यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और माड़े काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की खास गल आती है पकने के बाद भी उसका रंग कई बार राई रहा है सबज ही रहा है। बिहार का जरदालू जिसकी खुशबू थी पहचान आती है। चौसा मालदा हर नाम के नाल लोगों की यादा जुड़ी जाती हैं। जनूबी हिंदुस्तान कछो तो बैंगनपली तापोरी नीलम बंगाल का हिमसागर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुरनरेखा इन्हें जा बदलती है आम दे रूप रंग और उसका जायका भी बदल गेंदा है। और साथियों आम की यह यात्रा हम ग्रां थी ग्लोबल मार्केट तक पहुँच रही है। अज मन की बात के जरिए मैं आम की पैदावार थी जुड़े अपने किसान भरा भैन की तारीफ करता तुसी मुल्क की जरी मेषत वास्ते आम किसानी मुझ खास हो इस राई छाए रहे हो। साथियों गर्मी दे इन्हां ध्याड़ां विच इस तरह तो स्कूलों की छुट्टियां होंदियां मगर मैं एक इजी क्लास की गल कर सांगा जिस विच तुसां दा एडमिशन करने का मन कर सीगा। साथियों एक सूरत हाल तसवर करो एक इजा स्कूल जिथे बच्चे भी आंदे होवन जवान भी और बुजुर्ग भी जिथे कोई फीस ना होवे कोई बड़ी बिल्डिंग ना होवे कोई क्लास रूम भी ना होवे और सब ती दिलचस्प गल उथे क्लास नदी विच लगती होवे। साथियों कोई कहानी नहीं है एक सच्ची कोशिश है। केरलम दे अलोवा बिच साजी वाला शराल जी इजा एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। उन्हें तोनी 15,000 से ज्यादा लोग इथे तिरना सीख के दिन साजी जी सुन दिवांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई दी है। इस कोशिश के पिछे एक पीड़ा भी छुपी दी है। कुछ साल पहला एक हादसे बिच कई तालबे इलमां दी मौत हो गई। इस घटना सुन साजी जी दे अंदर झंझोड़ के रख छोड़िया। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चों को तैरना आंदा होंदा तो शायद कई जाना बच गेंदियां। बस इथे थी शुरू होया उन्होंने ये मुहिम। साथियों साजी वाला शैलल जी की जिंदगी असा को एक मुची बड़ा सिख देंदी है। खिदमत करने वास्ते मुझ बड़े साधन जरूरी नहीं होंदे जरूरी होंदा एक असल इरादा और लगातार की गई कोशिश। उन्होंने दम पर हजारा लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आने जुल सकती है। माड़े प्यारे हमवतनों पिछले ध्याड़े बिच मुगो यूरोप दे नैदरलैंड जाने का मौका मिलिया। उथे मैं कई मीटिंगां बिच शामिल होया। इस दौरान एक इजा लम्हा आया जिस हुण हर भारती को गुरूर थी बार छोड़िया। नैदरलैंड बिच मुनक्कद एक खास तकरीब बिच चोला काल दी कदीम तांबे दी पेटियां भारत को वापस दित्तियां गईयां। इस प्रोग्राम बिच नैदरलैंड दे वजीर आजम भी मौजूद आसे। इन्हां तांबे दी पेटियां कोल किनका मुगो मुलक और बैरून मुलक दी लगातार पैगामात मिल रहे हैं। लोग खुशी जिता रहे हैं गुरूर जाहिर कर रहे हैं। दुनिया भर के तामिल समाज बिच भी इसको गिनके खासी उत्साह है। साथियों इन्हां तांबे दी पट्टियां को गिनके लोगों बिच काफी गल्लां भी हैं। इस वास्ते आज मैं इन्हां थी जुड़ी कुछ गल्लां तुसां नाल सांझियां करना चाहता। इन्हां बिच इक्की बड़ी और त्रै निक्की तांबे दी पेटियां। यह बुनियादी तौर ते राजा राजेंद्र चोला अवलम दी तरफ थी अपने वालिद राजा राजर जा चोला दे एक वादे को पूरा करने थी जुड़ी थी है। इन्हां बिच एनी मंगलम ग्रां दे एक बधार को दान देने दा जिक्र है। इन्हां तांबे दी पेटियां बिच चोला वंश दी उपलब्धियां दा भी वजाहत मिलती है। उन्हां थी पता चलता है कि चोला सल्तनत दी समुंदरी ताकत कितनी मजबूत सी। जनूबी मशरकी एशिया के ममालक के नाल इन्हां दे तालुकात की जानकारी भी इन्हां विच मिलती है। चोला सल्तनत दे दौलतमंद तारीख और सकाफत पर भी असा को मुझ गरूर है। साथियों असां दी सरकार भारत दी इजी अनमोल
ਡਰੋ ਹਰੋਲ।

तहफ्फुज़ वास्ते लगातार कोशिश कर रही है। इस तरबियत बिच ज्ञान भारतम मुहिम के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार बिच भी एक अहम खोज हुई दी है। इत्थे त्रै नायाब तांबे की पेटियां मिली दियां। ए पांडो ऋषि राजवंश के महारिषि बाला रजन दे हुकूमत काल की जुड़ी मनी गई। माहरीन मनते हैं कि यह इंस्क्रिप्शन छठी सत्तवीं सदी दे हैं। इन्हें 1400-1500 साल पुराने ए तांबे की पेटियां कदीम बरहमी लिपि और पालिपि जुबान भी लिखियां दियां। उन्हें उस वेले की हकूमत व्यवस्था धर्म और सकाफत के बारे में अहम जानकारी मिलती है। साथियों, असी भारतीयों बिच फलकियात को किन के हमेशा खास आकर्षण रहा है। असां दे मुल्क भी अज भी सदियां पुरानी ऑब्जरवेटरीज मौजूद हैं। इत्थे अजीब रियाजियाती दरियाफ्तां होइयां दियां, नेविगेशन होवै, पचांग होवै या असां दे परो तहवार, इन्हां सारयां दा तालक असमान और सितारियां ते रहा है। असां दे इत्थे फलकियात सुन हर पीढ़ी को कोताहिल कीता दा। इस एक्सप्लोरेशन वास्ते तारीख दित्ती दी है और अज दे नौजवानां विच भी इसको किन के काफ़ी उत्साह दिखाई देता है। अजकल तुसी दिखते हो सोगे मुल्क भर में फलकियात क्लब्स तेजी नाल मकबूल हो रहे हैं। बड़े शहरों थी किन के निक्के कस्बियां तिगर, स्कूलों थी किन के पार्कों तिगर इन्हां दी सरगर्मियां दिखाई देती हैं। मुगो बेंगलोर फलकियात सोसाइटी के बारे भी जानकारी मिली। इत्थे ऑब्जरवेशनल सैशन मुनक्कद किए गए हैं। इस तंजीम सुन दही इलाकों में फलकियात को मकबूल बनाए का मिशन भी शुरू किया गया। खगोल मंडल नाँ की एक टीम सुन 30 घंटे का यह मुच इनोवेटिव कोर्स शुरू किया गया। साथियों, रात बिच सितारियों को निहारना तुसा अपने आप में अजीब तजर्बा होंदा है। एस्ट्रो कैरलम नाँ की एक तंजीम नाइट ऑब्जरवेशन कैंप्स और वर्कशॉप मुनक्कद करती है। इत्थे नौजवान साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार्टअप्स का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। राजकोट के बुग बैंग फलकियात क्लब सुन गिर दे जंगलों से किनके कज के रंते कर मुतद्दद फलकियात इवेंट्स मुनक्कद किए गए। इत्थे ऑब्जरवेशनल फैसिलिटीज के नाल नाल किताबा लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सहूलियत भी है। मैं आईसैक का भी जिक्र करना चाहसांगा। एक स्टूडेंट लीड नेशन वाइड नेटवर्क है जिहड़ा फलकियात और फलकी तबियात क्लब्स को आपस में जोड़ता। साथियों, अपनी हॉबी वास्ते वेला कढ़ना और लगातार कुछ नया सीखते रहना मुझ जरूरी है। मैं नौजवानों से इल्तजा कर सांगा कि वो किसी फलकियात क्लब थी जरूर जुड़न और उन्हें छुट्टियां बीच किसी प्लेन ट्रैम को भी जरूर दिखने जुलन। साथियों, मन की बात प्रोग्राम दी जेड़े लोग टीवी पर दिख रहे हैं, मैं उन्हें को आखसांगा एक वीडियो जरूर दिखसोगे। ए वीडियो पिछले त्याड़ा मुझ चर्चा भी रहा। इस बीच कुछ लोग मुझ सबर थी, मुझ सावधानी थी, एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुसा को यह जानकर ताज्जुब होगा, इस पूरी कोशिश बिच करीबन 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इस बिच मुझ बड़ा किरदार रहा भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। यह घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्थे एक गंगा डॉल्फिन नहर बिच फस गई दिया सी। इजे वेले बिच नमामि गंगे मुहिम के तहत बने एम्बुलेंस इस वास्ते उम्मीद बनकर पहुंची। फिर मुझ सावधानी थी, इसको बाहर कढ़िया गया, इसकी जांच की गई, इसका इलाज किया गया और उसके बाद उसको महफूज राबती नदी बिच छोड़िया गया। इस तरह थी आख सांगी एक जिंदगी फिर अपने घर लौट गई। साथियों, ए डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस मुझ खास है। इसको एक चलते फिरदे अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इस भी डॉल्फिन को महफूज रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सहूलियत और खास स्ट्रेचर सन बचाव के आलात भी हैं। यानी अगर कोई डॉल्फिन जख्मी हो चुला है, नहर बिच फस चुला है या नदी थी कट चुला है तो फौरन उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब असी गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो असी सिर्फ एक किस्म को नहीं बचाते बल्कि असी गंगा की विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जिंदगी तंजीम को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियां वास्ते कुदरत दी एक अनमोल धरोहर भी बचाते हैं। माड़े प्यारे हमवतनों, तुसा विचों मुझ लोगों की नदी तालाब और कुएं थे पानी की जुड़ी यादा जरूर होसनगियां। किसी को तालाब बिच तैरना याद होसीगा, किसी को दोस्तों के नाल तालाब किनारे खेडना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होसीगी। बचपन की जी यादा जिंदगी भर मन बिच बस्तियां रहदियां। साथियों, इजी यादा को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला भी सामने आई है। बस्ती दे आकाश गुप्ता सुन अपने ग्रां दी मनोवरमा नदी को देखकर मुझ दुखी हो गया से, क्योंकि जिस नदी को उन्हें सुन बचपन भी साफ और जीवन दिखा दा सा, वेले दे नाल उस नदी भी प्लास्टिक जमा होने लग्या, गंदगी बद्दी चली गई। श्रीमान आकाश सुन तय किया कि वो शिकायत नहीं कर सनगे, एक नई शुरुआत कर सनगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्हें सुन अपने दोस्तों को नाल किने सिर्फ जाला सा, फावड़ा सा, टोकरिया सी और सबती बड़ी ताकता सी कुछ बदलने दा इरादा। ए नौजवान नदी बिच गेंदिया से, जल कमीनी निकड़दिया से, प्लास्टिक और कूड़ा बाहर आणदिया से। कई बार एक तैड़े बिच 50-60 किलो तक कूड़ा नदी थी कढ़िया।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। 4:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं मन की बात का शीना तर्जमा।
1: आदाब, मन की बात तो शीना तर्जमा गी मो अमान वाफिक सोमो सुहानुस मैं शिदाट वतनदारी। आदाब, मन की बात इज एक चोट फेरागे सोसी यो बोई ला शिराबे हूँ। वतनी लाए दिशोजू असी जख से वतनी गे समाजी कैरी अदा हंगली थैनो क्रोमी थीन हा कि कोई गट बेस सुनु बारिश परजुन हंस असुट नए पुनु बारिश पाई फैछी। अजोकु प्रोग्राम अट 10 उठम वतनी खिलाड़ियों इंदाई कामयाबी गी। जेक सूर्य मुछोट झारखंडो रांचेज नेशनल सीनियर एथलीट्स फेडरेशन कंपटीशन मुनकिद बुल रसिज पूर्व वतनज आलक तकरीबन अष्ट शल खिलाड़ी हिस्सा हरिये रसिज चार हुर हुर प्रोग्राम उज चार वतनी बड़े रिकॉर्डी फुटिये। गुरेंद्र वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वन शंकर, ड्यू मीना ग कुलदीप कुमार रिनिज हुर हुर खेलोज ना रिकॉर्ड कायम थिए। मुस बुटोजु चल सकुल खिलाड़ियों हियो गुटमार्गी यूथ मानुस शुलो एक इवेंट केसु बारिज कुल वतनज चर्चा याज हूँ। शल मीटर दरबक आई दू सूर्युज मनोजु शल मीटर दरबकुज वतनज कायम थिएक रिकॉर्ड ट्रे फेराई फुटलु। कोई दू खिलाड़ीस जो कारनामा अंजाम दिए सहा एनिमेश कजूर गे गुरेंद्र वीर सिंह। मैं सोचवास के नुगटा निमन की बात इच मुस रेबेजूसी मुश्किल थम। एनिमेश जी आदाब, गुरेंद्र वीर जी तुटे आदाब। आदाब सर, अच्छा छे ज लई बड़ी कामयाबी हासिल थिए थनत छे जोड़ी से गे कमाल थे पशये ही बस मौसीके जोगलबंदी ट्रकियस लिस मगर चे अनाए खेलो जिगे रो बे हूँ कि एक से चैलेंज दे हूँ ग मुतुस रो कबूल थे हूँ ग चमुग फेरा ना रिकॉर्ड कायम बे थे छो जो क्रोम ला मिस्ट दरुल। मुस चाहम होस कि मन की बात कौन दीनक सामीन से छो बारिश दष्टीन छे जो कोई कारनामा अंजाम दिए थनत ससु बारिश दष्टीन। अनिमेश जी अदाब सर, म्योनूम अनिमेश कजूर हूँ। मो दो शल मीटर गे चार शल मीटरों नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हनुस गमियो निबुहु छत्तीसगढ़ जू गकोत मुस ओडिशा वेडू उशारम होस। मे पतिनु बैड्रज एशियन मेडल गे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल जने अटासलोस। मेनी खेलो आगाज दो साज गे बीगे एकज थास कोई गट मे सुकूल मोजास पाए मो सैनिक सुकूल अंबिका पूरे जू पासा उठानुस निजु मुछूट मुस फुटबॉल उशारमलुस। कोविड दौरान मे मामालस मोट अब बस के आज़ादी दिन से लें दरूड बोजीनी कैरी कोई घटा कोविडो से खेण मोजुनगण्यो मैं फुटबॉल नोटिन एक शूलस रहिए कि एक स्टेट मीट ब्यूनवेल ही तो गई ओबो मैं इस असिज हिस्सा हरियास मोट रपाई न हासिल की रसिज मोट नेशनल लेवल झुंठीन थे मोसादू नेशनल लेवल ही कर हुठिए गाश मुस बैन अवी सतेज तोमू वतनी कर उशारम होस। वजीर आजम गुरिंदर वीर जी सोसग रजा तो मुबारिश। गुरिंदर नमस्ते सर, म्यो नोम गुरिंदर वीर हूँ गमो इंडियन नेवेज पिटी अफसर हनुस गे कोतमो हिंदुस्तानु तेज तरीन स्प्रिंटर हूँस ब्यालो कोती मई शल मीटर दरबा कुश दई अशेरिया 9 सेकंडों को

करे दिए नु फोटू करु कहूँ होडस मोट तो मैं कहानी रजिन सिल यहो मोस ग्राम लोस की मोटे घूं शरुनी सलोष्टी चल दरबक थिन बोजिन सिल मै रयास की मोग आकोसी हरा यहो सिनीज गिणिये मोग आकोस नला हरुन कोई का क्रोम सिनीज सेंट्रल सिल मोटे गिणिये सिंचयुन मोट गिण्यो शोक बस्क्युन मै उशन बोल्टू आलमी रिकॉर्ड बनयू ट्रकालोस एकमिष्ट दलील खी सर मोस टी वी ट्रकमलोस मै मास टी वी बंद थी रई चे सबक पयुनु खेण हूँ मै रयास ठीक हूँ आज तुस मोट टी वी ट्रक्युन ने दे हैं मगर एक छका एक सूर्यादय ए तुस मो टी वी ट्रके आसे रजे आसे ट्रक्या गुरिंदर से दरबक थी हूँ अश कोई गटा मै मास मो टी वी दरबक थ्यू ट्रके ही मोट शिराबे हूँ वजीर आजम वाह वाह वाह वाह बड़ मिस्ट मोज रया गुरिंदर आ सर बे एक सदा टोलेजू ऊन हंस कून म्यो मालुस वाली बालू शारसुल गोरु मुश्किलात रोयू ससट पोलो रो फत थ्यूनी जनू साचु नसब दरुल सिनीज रो साचु मोई ट्रकिए कि जनू बाल से रो पूरु थे हूँ मोस जनू सी मोज थमसलोस ग परिजमलोस कि मिल्का सिंह से कचाक मेहनत थे सुल मोसराम सुलोस की एक गटा मोस्थे साठ जरूर पुर थम रजन सिल की साठ आई रजूनी पूरे ने भी नहा रसी कारी मेहनत जर रही रजन सिल की मिल्का सिंह से सख्त मेहनत थे सुल ताति सूर्य दरबक थे सुल जुक सूर्य बोसिल रसी सी नला रा चीज मो अकूवेट फरिए म्यो मालूस हर गटा मोठ हेमत दई सुल कि तोमो वतनी कै दरबक थे तुम वतनी करी मेडलिजन है चे कोई गट मई शल मीटर इवेंटुज पाँच रास लाज अक्स रजिन सिल की रे इवेंट हिंदुस्तानियों करी निश सस रजिन सिल की असू जिसम रे शल मीटर ही करी ने बनो जुलूँ मगर मोगे म्यो मालूस हमेशा रजुन सिलस कोई गट बेस निपोनी चे पाँच हेरियस हंस चे पतूट ने खजुन कोई जक से रजिन हाँ की बेस ने भी उन थे थ्यूनी बेस सुनुट थे पशायन म्यो मालूस मोट रस सुल की तू जरूर कामयाब बे मोट भरोसा हूँ तुझ म्यो मालू रु यकीन से मई हिम्मत पुख्ता था गाश मुस हर एक हिंदुस्तानी रजम हुस कि हिंदुस्तानी स्प्रिंटर बनो जा दरबक थ्या गमुशूट खजा वजीर आजम तो बेसक वाकई ला बड़ क्रोम थिए था आई दू सूर्यज छजे ट्रे चोट कौमी रिकॉर्ड फुटियत शल मीटर दरबकुज हिस्सा हरियोनी कदात गुरिंदर वीर सिंह से रयाऊ ला जक से रो लेल थी ना कि रो हिंदुस्तानी जसी करी ने बनो जिल्हा अचाक मुश्किलात पतनूगे सो कामयाब बिलत मोग मन की बात कुंड देने सामीन से दश्टूने सुनहास कि सोज कोई जज्बा असुल कोई चीज ही जिद असली जोक सोचवे नु मुमकिन बनवियत नु कचाक मुश्किल आसू गुरिंदर वीर आ सर शुरुआती जला औरत पर्थ पोल थीन कचाक फेराई मोर शक बुल की मैं सही पुन रटास होज दा कि ने के तो हर गटा कामयाबी ने लजी जी कचाक फेराई इंसान से आई खाली सिंट हूँ कोई गटा मो हरवजम लोस कोई गटा म्यो क्रम असल ने बेसुल या जख्मी बेमलोस मोट गोरोचस हेमत दिनसिल ससराज इंसिल अगर एक सूरी अथा की खत या एक बरिश असल ने गऊ रसिज जिंदगी ने नोशी साठ ट्रक्यून बन ने बोझिन थ्यूनी म्यो कोश से मोट रुई सिंचयऊ कि अगर तुस कोशिश ने थे मुत ये सग ने बिन थ्यूनी कोई गट असी कम्युनिटी या असुट एल एल हानक से हेमत दिन हाँ असू जज्बा जाद ग खत्म ने बे वजीर आजम अनिमेश जी सर कोई गट मई दू साज गे बी गे एक मुगश उशरूनी शुरू था सलोस बुटस मोट रजिन सिल किनु एक ना मैदान हूँ थे खबर तु रसिज कामयाब बेदा या ने मै रयास की चेमो कोई गट नु मैदाना जचितोस होस निसी जरूर कामयाबी ग हासिल थम म्यो मालूस गे हमेशा मोट रसुल कोई गट थो निपुन रटा हो चे जाद ग पतूट ने बोझी थे खजूनी क्या तु सोचवीन हाँ बुटस क्या अनुथम थे आथम थे मगर थे पशाइन हाँ लापस सुस रसुल कि तू निपोनिज शला चौक बोईदार जाद ग पतूट ने खस बेस्तुट हर तरफू मदद थून तोम टोलू तरफू गे हेमत दूनी माली मदद ग थूनी बस तुस मेहनत थे ग हिंदुस्तान और पशाई की हिंदुस्तानी से गे बीन दरबक थ्यून मोटक जक्स रजिन सिल की असू ले लदा निश कि बे सब दई या दई अशेरिया एक
खेण इस दरबा के ब्यून थे।

0: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमें डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी समाप्त कर रहे हैं। ठीक 5 बजे आप समाप्त करेंगे आज का गोजरी प्रोग्राम। प्रोग्राम में आप वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की मन की बात का गोजरी तर्जमा भी समाप्त करेंगे। प्रोग्राम से पहले ये वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में

0: आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम लेके हूं थारो मेजबान शौकत अमन बोकड़ा थारी खिदमत में हाजिर हूं। ते तम सारा ना मेरा तरफ ते प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। उम्मीद करो कि तम खैर सुख नाल होएगा ते अपना मनपसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहे होएगा। सामीन इकराम, आज इस महीना को आखिरी अतार है ते तम जाने कि हर महीना का आखिरी अतार ना मुल्क का वजीर आजम मन की बात के जरिए थारे संग जुड़े। तो इस मन की बात को गोजरी तर्जुमो लेके मारा साथी शबीर अमन पसवाल साहब और मारे नाल स्टूडियो में मौजूद हैं। आओ इनते मन की बात को यू गोजरी तर्जुमो सुन लिया।
1: मेरा अजीज हम वतनो नमस्कार, मन की बात माँ एक बार फिर तम सारा ना जुड़ के मिना बेहद खुशी हो रही है। मुल्क का मुख्तलिफ हिस्सा माँ मारा मुल्क का लोग कौमी मुफाद और समाजी भलाई के वास्ते ऐसा हैरत अंगेज काम अंजाम दे रहे हैं और जद उनका बारा माँ सुना ता हम ना नई तहरीक और हौसलो लबे। आज का प्रोग्राम को आगाज हूँ एथलेटिक्स माँ मुल्क की ऐसी ही एक कामयाबी नाल करूँगो। कुछ दिन पहला झारखंड का रांची मा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन मुनाकद हुई। इसमें तकरीबन 800 एथलेटिक्स ने शिरकत की जिड़ा के मुलक भारते आया था। इस दौरान चार मुख्तलिफ इवेंट्स मा चार कौमी रिकॉर्ड्स टूट गया। गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार इन साथियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में नवा रिकॉर्ड कायम किया। वो सबसे पहला इन सारा ना दिल की डूंगाई ना मुच मुबारकबाद पेश करूं। दोस्तों, एक इवेंट जिसको मुल्क भर में मुच तस्करो हो रहा है वो है 100 मीटर रेस, यानी 100 मीटर की दौड़। सिर्फ 2 दिन के अंदर मैनस 100 मीटर रेस में कौमी रिकॉर्ड 3 मरतबा टूट गयो। जिन 2 एथलीट्स ने यू कमाल दस्यो वे हैं गुरविंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैं सोचो कि इस मरतबा मन की बात में इन 2 खिलाड़ियों ना गल की जाए। अनिमेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: गुरविंदर वीर तमना भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
3: नमस्कार सर।
1: अच्छो भाई, तमने तय मुझ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, थारी जोड़ी ने भी कमाल कर देतो है। हमने मौसीकी में तय जुगलबंदी देखी थी, लेकिन मुकाबला में हूँ ऐसी जुगलबंदी हुआ कि एक मरतबा कोई चैलेंज कर दे और फिर दूजो उस चैलेंज ना कबूल कर ले, फिर तीजी मरतबा उस ना होर आगे ले जायो जाए। थारो मौजू बहुत दिलचस्प रहो है। ऊँचाऊँ कि मन की बात का सामीन ना तम लोकां का बारा में मालूमात मिले। तमने जुड़िया कारनामा अंजाम देता है उनते भी लोग वाकिफ हों।
2: नमस्कार सर, मेरा नाम अनमेश कुजूर है। 200 मीटर और 400 मीटर को कौमी रिकॉर्ड होल्डर हाँ और मेरा ताल्लुक छत्तीसगढ़ हुआ है और इस वेले ओडिशा की नुमाइंदगी करूँगा।
1: और गुरविंदर जी, थारी कहानी के है?

0: नमस्कार सर, मेरा नाम गुरेंद्र वीर है और हूँ इंडियन नेवी में पीटी ऑफिसर हूँ और इस वक्त हूँ हिंदुस्तान को तेज तरार स्प्रिंटर हूँ। मैं हाल ही में 100 मीटर में 10.9 को कौमी रिकॉर्ड कायम करी हुआ है और हूँ पहलो हिंदुस्तानी हूँ जिसने 10.1 बैरियर तले दौड़ लाई है और हूँ कोशिश करूँ लगो कि ट्रैक पर भी और वर्दी में भी अपना मुल्क की खिदमत करूं। मेरे बाप ते दादो दो ही स्पोर्ट्स नाल वाबस्ता था। मारा मुल्क की रीत है कि जब भी कोई बड़ो दिन वह जिस तरह दिवाली या नौ साल ताम अपना घर की सफाई करा, हूँ अपना बाप का मेडल ते ट्रॉफी साफ करूँ तो मिला यह गल डाडी पसंद आए थी और हूँ डाडो खुश हूँ तो जद हूँ कई ट्रॉफी साफ करूँ तो ताऊ पूछू तो कि यह ट्रॉफी तमने कित जीती है, यू मेडल कित हासिल की हुआ है, यह तस्वीर कद की है। ता वो बिना अपनी कहानी सुनाया करे थो कि वो फलानी जगह खेडन गियो, यूको भी मेडल जीतियो, अपनी टीम ने कामयाबी हासिल कराई, ता फिर वो भी कहूँ थो कि बिना भी काय खेड इख्तियार करनी चाहिए, वी सुबह दौड़ लान जाए था, वो कहूँ थो बिना भी नाड़ ले जाया करो, ता भी बिना नाड़ ले जान लगा और जो कुछ उन्होंने स्पोर्ट्स तो हासिल करियो वो मेरा सिखाण लगा। इस तरह मेरा डाढ़ो शौक पैदा हो गयो। मैं उनका बोल्ट को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता देखियो। इस बारे एक मज़ेदार वाक़ो है, वो टीवी देखो तो ते मेरी माँ ने टीवी बंद कर छोड़ी ते कहन लगी बच्चा और पढ़ाई को वक़्त हो गयो है, टीवी बंद कर ते पढ़। मैं क्यों ठीक है, आज तक मेरा टीवी देखण नहीं देती लेकिन एक दिहाड़े तब मेरा टीवी पर टोड़ेगी कि देखो मेरे जातक दौड़े लगो। मेरा डैडी खुशी हुआ है जब मेरी माँ बिना टीवी पर दौड़ लाता देखती मैं।
1: वाह वाह वाह, मुठी शानदार गल है भाई।
0: जी मारो खानदान मिडिल क्लास है, मेरे बाप वालीबॉल खेडे करे थो, कार के हालात की वजह तो उसना खेड़ छोड़नी पड़ी, उनका ख्वाब अधेड़ा रह गया। फिर उनने मेरा अंदर भी ख्वाब देखा कि यू ख्वाब पूरा करे गो, वो उस तरह गल करूँ थो और सुनो भी थो उसकी गल कि मिल्खा सिंह किस तरह मेहनत करे थो, वो कहूँ थो कि एक दिहाड़े वो भी तेरा ख्वाब पूरा करूँगो, उनको जवाब वह थो कि ख्वाब इस तरह पूरा नहीं होता, इस वास्ते डाढ़ी मेहनत करनी पै, मेहनत और लगातार रियाजत जड़ी है वह जरूरी है। मिल्खा सिंह साहब खून की उल्टी तक करे था तो पर दौड़ लाए था, पूरा वो त्याड़ो ट्रेनिंग करे था, जी गल मैंने तारीख दिया थी। मेरे वालद मैंने हमेशा हौसलों दिया थो कि मैंने अपना मुल्क वास्ते दौड़नो है, मुल्क वास्ते मेडल जीतना है और जब मैं 100 मीटर को एवेंट चुनियो तब मेरा सारा कह था कि 100 मीटर ना करो, यो हिंदुस्तानियों को इवेंट नहीं, हिंदुस्तानियों को जुस्सो इस वास्ते बढ़ियो ही नहीं, वो तो मेरे बाप का था कि हमने यूरा चोट लियो है, हम पीछे नहीं हट सकता, जिड़ा लोग कहें कि हम नहीं कर सकता ता हम करके दसांगा। जब मेरा बाप ने मेरा पर इतनो भरोसा कियो ता मैं इस भरोसा ना अपनी हिम्मत बनायो और अगे बात कियो, वो अज अपना हिंदुस्तानिया ना कहूँ कि हिंदुस्तानी स्प्रिंटर दुनिया में अपनी पहचान बना सके।
1: देखो, तम दुआ ने मुझ बड़ो कमाल कियो है। सिर्फ दुआ दिना के अंदर तम दुआ ने 3 मरतबा कौमी रिकॉर्ड तोड़ियो है। 100 मीटर रेस में दौड़नो जिस तरह के गुरविंदर वीर ने कियो कि लोग के हिंदुस्तान का लोगों को उनकी बॉडी कम के वास्ते मुनासिब ही नहीं, इतनी मुश्किलात के बावजूद तमने यह कामयाबी हासिल की। हूँ तम दुआ ते और मन की बात का सामीन की तरफ से यू जानना चाहूँ कि थारे अंदर कड़ो जज्बो थो, कड़ी जिद थी, तमने के सोचो थो, किस तरह यू सब मुमकिन हुआ, यू कितनो मुश्किल वह।
0: जी सर, पहले हूँ परेशान हूँ थो, कितने कितने मेरा शक भी हो जाए थो कि क्या यू कुछ वो कर सकूँ, वो ठीक कर रही हो, क्या मैं सही राह चुनी हुआ, क्योंकि हर बार कामयाबी नहीं मिलती, कदे तब जीते और कदे कुछ दो सीख न मिले। जब वो हारू थो, जब मेरी कारकर्दगी चंगी नहीं वह थी या चोट लग जाती, तब मेरा घर आला मेरा

अगर तो मां निकलनो ज़रूरी है ता एहतियात के ना निकलियो। इस सिलसिला में हुकूमत का मुख्तलिफ इदारा की जानब से जुड़ी हिदायत जारी की गई हैं, उन्होंने भी नज़रअंदाज न करियो। दोस्तों, मारे इत गर्मी को मुकाबलो करने को तरीको अक्सर बावर्ची खाना में भी मिल जाए। तमने भी देखियो वैगो कि जिस तरह गर्मी बद गई है, घर का बावर्ची खाना को जायको भी बदल जाए और खान पीन को अंदाज भी तब्दील हो जाए। कितें मटका का पानी इस्तेमाल होने लगे तो कितें दही जमनो शुरू हो जाए और कितें कच्चा आम उबलन लगे तो फिर देसी मशरूबात को दौर शुरू हो जाए। तम भी इन देसी मशरूबात ते वाकिफ होएगा। अगर तम शुमाली हिंदुस्तान जाएं ता मुझ सारी जगह पर आम पन्ना मिले जो कि कच्चा आम को जायको भी दे और गर्मी ते राहत भी। पंजाब और हरियाणा गया ते लस्सी मिल जाए, वह भी बड़ा गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ और खाना को साथी बन जाए और बिहार झारखंड और मशरकी उत्तर प्रदेश में सत्तू को शरबत। उसकी तय गल ही कुछ और है, टेट भी भर दे और ताकत भी बख्शे। कोनकान और गोवा माँ कुकुम शरबत और सोल काढ़ी मशहूर हैं। जनूबी हिंदुस्तान माँ पनाकम, नीरमोर और सांबरम, जबकि उड़ीसा माँ बेलपना सिर्फ मशरूब नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाक़ा की तहजीब और रवायत को हिस्सों हैं। इन माँ एक भारत श्रेष्ठ भारत का जज्बा की झलक भी नज़र आए। और एक गल ज़रूर याद रखियो कि इन बिचू अक्सर चीज़ मारा अपना बारची खाना और मारा खेत खलियाना ते निकली हैं। इनके पछे कोई बड़ो तजारती तशहीर नहीं, लेकिन नस्लां को तजुर्बो और हिकमत इन माँ समाई हुई है। तम भी गर्मी के दौरान इन देसी मशरूबात ते खूब लुत्फ अंदोज होइयो। दोस्तों, गर्मी आता ही एक और गल हर घर में शुरू हो जाए और वो है आम। आम आम गुफ्तगू को मौजू बन जाए। हिंदुस्तान में शायद ही कोई कारवा है जित गर्मियों में आम को तस्करो ना होता है। हर इलाका को अपना आम, अपनो जायको और अपनी खुशबू वह। महाराष्ट्र और कोंकण का हापूस या अल्फांसो, गुजरात को केसर, ये तय आम रस की जान है। उत्तर प्रदेश को दशहरी और मेरी काशी को लंगड़ा। इस तरह लंगड़ा आम की एक ख़ास गल वह कि पकने के बाद भी उसको रंग अक्सर नीलो ही रहे। बिहार का जरदलू जिसकी खुशबू दूर ते ही पहचान ली जाए। चूसा और मालदा हर ना के ना लोकों की याद वाबस्ता है। जनूबी हिंदुस्तान जहाँ तय बंगनपली, तोतापुरी, नीलम और मालगोवा मिले। बंगाल का हिम सागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का स्वर्णरेखा भी अपनी अलग पहचान रखें। यानी इलाक़ा बदलें तो आम की शक्ल सूरत और उसको जायको भी बदल जाए। और दोस्तों, आम को यू सफ़र होन देहात निकल के आलमी बाजारों तक भी पहुंच गयो है। आज मन की बात के जरिए वो आम की पैदावार नाल वाबस्ता अपना काश्तकार पाइया और बहना की तहसीन करना चाहूँगा। तब मुल्क की ज़राती मैशियत के वास्ते मामूली काश्तकार नहीं बल्कि मुझ खास अहमियत रखें। इसी तरह कामयाबियों के ना नुमाया रहो। दोस्तों, गर्मी का इन दिनों में आम तौर पर मदरसा और स्कूल की छुट्टी हुई है, लेकिन उन तमना
एक ऐसी क्लास का।

यानी एक साल में हर तालबेलम की जानब ते 365 रुपया जमा हुआ। इन छोटी छोटी रकमां ते तकरीबन 40 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी रकम को चेक मेरे सुपुर्द कियो। उन ना गुफ्तगू के दौरान मैं महसूस कियो कि माँ भारती के वास्ते उनकी वफादारी और लगाव कितनो डूंगो है। गुज़श्ता साल ही चेन्नई का पहला हिंदू विद्यालय ने अपना 50 साल मुकम्मल किया है। मुल्क की तालीम और सकाफती इफ्तिखार ना आगे बढ़ाण मा इस स्कूल नेटवर्क को किरदार मुझे ही काबिल तहसीन है। हूँ इन नाल वाबस्ता तमाम अफराद ना दिल की डूंगाई ते मुबारकबाद दियूँ और उन तलबा ना भी ख़ास तौर पर उनकी तारीफ करूँ जिन्होंने अपना बहादुर फौजियों के वास्ते अपनों हिस्सों सटियो। दोस्तों, हिंदुस्तान का हर ग्राम हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है

0: कितनों डूंगुआ। गुज़श्ता साल ही चेन्नई का पहला हिंदू विद्यालय ने अपना 50 साल मुकम्मल किया है। मुल्क की तालीम और सकाफती इफ्तिखार ना आगे बढ़ाण में इस स्कूल नेटवर्क को किरदार मुझ ही काबिल तहसीन है। हूँ इन नाल वाबस्ता तमाम अफराद ना दिल की डूंगाई ते मुबारकबाद दूँ और उन तलबा ना भी ख़ास तौर पर उनकी तारीफ करूँ जिन्होंने अपना बहादुर फौजियों के वास्ते अपनों हिस्सो सटियो। दोस्तों, हिंदुस्तान का हर ग्रां हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमने तहरीक दे। कई मरतबा इन कोशिशों को ज़्यादा तस्करो नहीं होता, लेकिन जब हम इनका बारा में जाना ता मारा यू यकीन मजबूत हो जाए कि मुल्क अपना आवाम की कुवत ना आगे बढ़ रही है। मेरी थारे दरख्वास्त है कि अपने आसपास में ऐसी कोशिशें ना ज़रूर दसो जिड़ा अफराद मुआशरा की भलाई के वास्ते अच्छो काम कर रहे हैं उन्होंने पहचानो, उनकी कदर करो, उनसे सीखो और अगर मुमकिन वह ता खुद भी किसी नेक काम को ऐसो बनो। अगला महीने मन की बात में कुछ और हौसला अफजा कहानियों के ना हूँ फिर थारे सामने हाजिर होंगो मुखातिब होंगो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: जी हाँ सामीन, हम मन की बात को गोजरी तर्जुमा सुन रहा था। मन की बात को यो गोजरी तर्जुमा थारी खिदमत में पेश कर रहा था शबीर अमन पसवाल साहब। और अगे हमारे को थोड़ो जो वक्त बच्चा लगवा, इस वक्त को फायदो चाहता थारे वास्ते पेश है मुकद्दर हुसैन की आवाज में यो गीत।

जिया समीना में मुकद्दर हुसैन ना सुन रहा था ते अग्गे थारे वास्ते सूरज सिंह शबनम अख्तर ते संगना की आवाज में लोक गीत ला के रखे हुए आप सुन लिया।

जी समीन, इसके नाल ही मारा आज का गोजरी प्रोग्राम का वक्त मुके लगोवा। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी, ते अपना मेजबान शौकत अमन बोकड़ा ना। अगली मुलाकात तुरी दियो इजाजत। अच्छा जी, राब राब।

मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समय 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहां से गोजरी में खबरें नशर होंगी। याद रहे कि गोजरी खबरों के फौरन बाद यानी ठीक 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन भी ब्रॉडकास्ट होगा। पहले आइए गोजरी में खबरनामा सुनते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी होंद श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव अक्सा सख्त शुरा किलोहर्ट्ज़ ते एफएम 3.5 मेगाहर्ट्ज़न बेट शबजित 5 मिनट सपित अके वक्फ पत पेश गमी बायन हिंद खतर सोन अजुक प्रोग्राम
3: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे।

अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।

القرآن. عليك القرآن لتشقى.

والأرض خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى.

now. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله

نار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. صدق الله العظيم.

0: आकाशवाणी। शाम के 6:15 सपदे खबरनाम हूँ मीर तारिक गोड़ हेडलाइनन पे अख नजर। लूख वर्तविन गर्मी हिंदो असरों निश बचने बापत एहतियती तदबीर, मन की बात प्रोग्रामस मज वजीर आजम सज ख्याल बावत। बचाव अमलिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यन वोनमुत भारत हथियारबंद फौज मुल्क के इकतदार आला तलाकई सालमियत सुन बचाव करने बापत पन्नस वादस पे डटित। तम्बाकू नोशी खिलाफ आलमी दुआ आज। आईपीएल क्रिकेट किस फाइनलस मज लगे आज शाम 7:30 गुजरात टाइटन्स टीमस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीमस सहित मुकाबल। वन पेश खबरन हुन तफसील। वजीर अजम नरेंद्र मोदी मुल्क कैन अक्सर हिस्सन में जारी ग्रीष्म चंड नजर तल थवित लूकन वोनमुत तिमन पजे आबुक ज्यादा खुद ज्यादा इस्तेमाल करान गर्मी हिंदो असरों निश बचन तदबीर करें। आकाशवाणी पे वोन आज पन्नस रेतवार रेडियो प्रोग्राम मन की बात मज मुख्तलिफ मौजून पे ख्याल बावत करान तिमो जि ग्रीष्म चंज हिंदो असरों निश महफूज रोजन बापत पज लूकन सरकार तो मुतलिक महकमों द्वारा जारी करने यन वाले रहनुमा खतूतन तो मशोरन पे अमल करें।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: वजीर अजमन वोन मुल्क के तरक्याती सफर जिक्र करान जन्द पे तिस पेशरफ्त सपदान उस नुन वज नजर ग अलबत् वो तमो जिम लूकन हूं साथ पज दिन ये मुल्क के तमीर बापत बेहतर काम करान रोजान।
1: भारत के हर गांव में हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
0: वजीर अजमन वोन सरकार मुल्क मज वरासत चन अनमोल जायन महफूज थवन बापत लगातार कोशिश करान तिमो कोर आम लूकन तकीद जिम करें अत काम मज पन रोल अदा। वजीर अजमन दुमन कैचन अहम मौजून अलाव माहौलियात तहफुज यकीनी बनानस पे जोर तिमो वतल खास पे नदी नाल दरियाव तो तालाब इन वाजन पई बापत महफूज कर जरूरत। नबी तो काबिल तजदीद तवानाई हिंद वजीर प्रहलाद जोशियन वोनमुत पी एम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तहत मुल्क मज भारत पशन पे अक्स दोहस मज सारे खुद ज्यादा 15,000 शमसी पैनल लागन रिकॉर्ड कायम कर्मत। भारत यम रेतन 23 तारीख यह कामयाबी हासिल करम। अकि सोशल मीडिया पोस्टस पे वोन तिमो अत कामयाबी मज महाराष्ट्र अहम रोल रूदमुत अम कर अक्स दोहस मज रिकॉर्ड 4,700 रूफ टॉप शमसी पैनल कायम। तिमो वो जित पा गुजरात पत महाराष्ट्र मुल्क मज दम रियासत बनम यम 6 लाख पेट रूफ टॉप शमसी पैनल नसब करम। जम्मू कश्मीर मज समी बजे हज वजीर सकीना इतवन वोनमुत सरकार क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी पे कान वसीलों मुताबिक सकीना इतवन जिल किस दमहाल हंसपुर इलाकस मज अवमी दरबारस दौरान लूकन हंद मसलन हूं जायजे हेन पत डोठ सतर सपदमित कुमलन प्रेत मुमकिन अथवाज दिन यकीन। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर कथ करान वोन तिमो
2: कल भी कई एरियाज में नुकसान हुए बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, तो मैंने उसी टाइम बात की है कंसर्न ऑफिसर्स से, लेकिन जहां तक क्रॉप इंश्योरेंस का ताल्लुक है वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो डिपार्टमेंट को हिदायत दी है, जो कंसर्न मिनिस्टर साहब है वो इसको एग्जामिन कर रहे हैं और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराई में जो क्रॉप इंश्योरेंस का इशू है उसको हम इंशाल्लाह सेटल करेंगे ताकि हमारा जमींदार भाई जो है वो बच सके, उसके नुकसान जो होते हैं वो ना हो और जो वो पेस्टिसाइड्स और बाकी चीजों के लिए बैंक लोन का इस्तेमाल करता है को फायदा हो क्रॉप इंश्योरेंस से ताकि वो आगे बढ़े और उसका जो सेव है वो सेफ रहे।
0: चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ लेफ्टिनेन्ट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन छु वनमुजे हथियारबंद फौजन छु मुल्क कन मफादन हुन तहफुज करनस मज हमेशा पेशवराना सलाहियत सुन मुजाहरा कोरमुत तो सुच अलाकाई साल

0: और सरहदी सियात बतदरीज फरोग पा रही है। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, हा? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हा?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333।
5: 9018074333।
6: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामस।
7: तो क्या इस शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेल का इस्तेमाल करान?
6: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
7: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
6: मगर ये है आज सठा द्रो?
7: हाँ ना ना सुई कमत मज मुश्क ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
8: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनायु सेहतमंद तो प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानयो। बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसैलन की जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर टाइप कर।
9: इशूड इन पब्लिक इन ट्रस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
11: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
10: नहीं माँ अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आ रहे माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
11: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
10: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
11: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
10: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
11: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
10: हाँ माँ आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
11: शुक्र है अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
10: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: शर्बीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने महानश्रीय मन की बात में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े उमूर पर बात की, जिनमें खेलकूद, तालीम, रिवायत, आम की बरामद और दीगर कई उमूर शामिल हैं। मौसूफ ने झारखंड में हाल ही में मुकम्मल हुए एथलेटिक्स मुकाबलों के ताल्लुक से बात करते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर 100 मीटर की दौड़ में कौमी रिकॉर्ड का 3 बार टूटना खिलाड़ियों की हिम्मत और उनके हुनर का जीता जागता सबूत है। वजीर आजम ने गर्मियों के मौसम में आम की अहमियत का तज़किरा करते हुए बैन अल-अक़वामी मंडी में भारतीय आम की मांग का हवाला भी दिया।
12: मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ, इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह

0: और अनिमेष कुजूर। साथियों, गर्मी आते ही एक चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात। इधर जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज्ब इख्तिलाफ सुनील कुमार शर्मा ने आज अपने एक बयान में कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला किसी भी सूरत में अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से भी निचला दर्जा दिया जाए और उमर अब्दुल्ला को सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बना दिया जाए तब भी वो ओहदा नहीं छोड़ेंगे। सुनील कुमार शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर खानदानी सियासत और इकतदार से चिमटे रहने के इल्जाम भी आयद किए। दरअसल जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अराकीन असेंबली का अहम इजलास 3 जून बुधवार को अपनी गुपकार रिहायशगाह पर तलब किया है। जराये के मुताबिक इजलास में अवामी फलाह बहबूद और इज्तमाई अहमियत के मामलात पर गौर किया जाएगा। सियासी हलकों में कयास आ रही हैं कि इजलास में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली समेत अहम सियासी उमूर पर बहस हो सकती है। समय आज पहलगाम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब श्रीनगर का एक 42 साल बाशिंदा मोहम्मद अशरफ मीर दरियाए लिदर में डूब गया। इत्तिलात के मुताबिक मोहम्मद अशरफ मीर का बेटा फहद दरिया में फिसल कर गिर गया था कि जिसे बचाने के लिए मोहम्मद अशरफ मीर ने दरिया में छलांग लगाई मगर तेज बहाव ने उसकी जान ली। मकामी लोगों ने बच्चे को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। इधर टंगमर्ग के छनपुरा इलाके में अबू बकर नामी 3 साल बच्चा नहर में डूबकर जान बहक हुआ। बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल में मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे वहां मुर्दा करार दिया। इसी दौरान आज आरिहल पुलवामा में एक तेज रफ्तार टाटा मोबाइल गाड़ी ने एक बाप बेटे को टक्कर दे मारी जिसके नतीजे में 5 साल बच्चा मौके पर ही जान बहक हुआ जबकि उसका वालिद अल्ताफ अहमद वगे जख्मी हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। शुपियां से फैयाज वानी की इतला है कि जिले के रेशनगरी, जमनगरी, अमशीपुरा, टुकरू, जाऊरा, मोशवारा, करेवा शादाब, टेंगवनी, सैदोबाला, छानपुरा, सिंधव शिरमाल, मीमंदर, गागरन, कसपुरा और दीगर कई इलाकों में कल शाम हुई जालाबारी के नतीजे में मेवा बागात को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि जालाबारी से सेब और नाशपाती के बागात को खासतौर पर नुकसान पहुंचा जबकि धान की पनीरी और सब्जियों की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचा। इसी दौरान चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर शुपिया ने आज मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली और जिलाई सदर शुपिया शौकत हुसैन गनाई और पार्टी के जिलाई सेक्रेटरी शुपिया निसार अहमद निसार ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि शुपिया जिले के लगभग एक दर्जन देहात में कल की जालाबारी से हुए नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासरीन को फिलफौर मुआवजा अदा किया जाए। शौकत हुसैन गनाई और निसार अहमद निसार ने अपने बयान में कहा कि नुकसान का जायजा लेना तब तक बेसूद है जब तक कि इसका पूरा पूरा तखमीना न लगाया जाए ताकि मुतासरीन को माकूल मुआवजा अदा किया जा सके। इधर गांधी किंग फाउंडेशन के सदर बराए जम्मू कश्मीर डॉ मोहम्मद अयूब मत्तू ने शुपियां के मुख्तलिफ देहात में कल की जालाबारी से होने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुतासरीन को मुआवजा अदा किए जाने का मुतालबा किया है। समय आज 31 मई है। यह दिन पूरी दुनिया में तंबाकू और सिगरेट नोशी के इंसदाद के दिन के तौर पर मनाया जाता है।

0: बैठेंगे आप स्मोकिंग छोड़ देंगे। सो ये कहना बहुत आसान है कि कुछ नहीं होता है। मेजोरिटी लोगों में स्मोकिंग से प्रॉब्लम होती है, छाती की तकलीफ है, सांस की तकलीफ है, कैंसर्स। तो लेकिन जब वो रियलाइज करें कि हाँ यार तकलीफ हो गई, देन इट्स उस वक्त काफी देर हो चुकी होती है। भलाई इसमें ही है कि वक्त पे इस पे अमल किया जाए, इस एडवाइस पे स्मोकिंग की तरफ ना जाया जाए, और अगर स्मोकिंग कर रहे हैं वक्त रहते इसको छोड़ दिया जाए और सही रास्ते पे आया जाए।
1: ये थे मेडिकल इंस्टीट्यूट सवरा के इंटरनल एंड पल्मोनरी मेडिसिन शोबे के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुदस्सिर कादरी, जो आज तंबाकू नोशी के आलम दिन के मौके पर बात कर रहे थे। इधर आज अजीम सूफी बुजुर्ग, मौर्रिख, मुसन्निफ और नातगो शायर हजरत मीर सैयद अजीजुल्ला हक्कानी के यौम विसाल के मौके पर कई तकारीब का अहतमाम किया गया। आज सुबह उनके मरकज वाक़ नरपरिस्तान में एक मजलिस मुनक़िद हुई, जिसमें ख़त्मात मौज़ूमात और ज़िक्र अज़कार के साथ साथ ईसाल सवाब की इज्तमाई दुआ का अहतमाम किया गया। बाद में सोबुक बड़गाम में एक और तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तिलावत कलाम पाक, ख़त्मात मौज़ूमात, ज़िक्र अज़कार और दुरूद सलाम का अहतमाम हुआ। हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के सरपरस्त आला और सज्जादा नशीन खानकाह हक्कानिया सैयद हमीदुल्ला हक्कानी और जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार ने हजरत मीर सैयद अजीजुल्ला हक्कानी को उनके यौम विसाल के मौके पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उनकी हमजहत शख्सियत की मिसल तारीख में मिलना मुश्किल है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। वादी में गुज़त चंद हफ्तों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाहों की तादाद में धीरे धीरे इजाफा होने लगा है। आने वाले महीनों में सयाहों की तादाद में हौसला बख्श इजाफा होने की कवि उम्मीद है। उधर कुपवाड़ा के करना इलाके से हमारे नुमाइंदे इशफाक सईद का कहना है कि सरहदी सियाहत को बढ़ावा देने की हुकूमत की कोशिशें समरावर साबित हो रही हैं। बताया जाता है कि करना में फौज की तरफ से तैयार किया गया अपनी नौयत का एक मुनफरद कॉम्प्लेक्स सयाहों को तेजी से अपनी तरफ रागिब कर रहा है। तफसीलात के साथ करना से इशफाक सईद।
4: शुमाली कश्मीर का सरहदी इलाका करना इन दिनों सियाहत के मैदान में नई पहचान हासिल कर रहा है। बरसों तक सरहदी कशीदगी और महदूर नकलो हरकत के बाद कुदरती हुसन से मालामाल ये खेता सियाहों की नजरों से ओझल रहा। तहम हालात में बेहतरी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के बाद करना बॉर्डर टूरिज्म, मजहबी सियाहत और कुदरती सियाहत के एक अहम मरकज के तौर पर उभर रहा है। सर सबज व शादाब वादियां, बुलंद व बाला पहाड़, घने जंगलात, शफाफ चश्मे और लाइन ऑफ कंट्रोल के दिलकश मनाजर सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान लाखों सियाहों, जायरीन और मुसाफरों ने लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल इलाकों का सफर किया, जिसके नतीजे में करना और टीटवाल के सियाहती शोबों में नुमाया वसत आई है। हाल ही में डन्ना एस एम हिल पर कायम सोरिया गाता कम्प्लेक्स सियाहों की तवज्जा का मरकज बना हुआ है। भारतीय फौज के बहादुर जवानों की कुर्बानियों और सरहदी तारीख को उजागर करने के मकसद से कायम इस कम्प्लेक्स में जंगी यादगारें, तारीखी मालूमात, खूबसूरत व्यू पॉइंट और सरहदी इलाकों की तारीखी व जगराफिया से मुतालिक मुख्तलिफ हिस्से शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद बॉर्डर और बैटल फील्ड टूरिज्म को फरोग देना, मकामी होम स्टे कल्चर को मुस्तहकम करना और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है। दूसरी जानब लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरियाई किशन गंगा के किनारे वाका टिटवाल भी सियासी सरगर्मियों का अहम हिस्सा बन चुका है। यहाँ कायम होम स्टे, रेस्टोरेंट और मकामी मेहमान नवाजी के मराकज मुल्क भर से आने वाले सियाहों को अपनी जानब मतवजा कर रहे हैं। टिटवाल में वाका तारीखी शारदा मंदिर भी इन दिनों

0: हासिल होगा। इस दौरान एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज बहरिया के 27वीं सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाली। श्रीनगर के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में एक पासिंग आउट परेड मुनाकिद की गई, जिसमें फौजी जवानों की हम आहंगी, हुबुल वतनी और फौजी दुरुस्तगी की एक शानदार नुमाइश देखने को मिली। इस परेड से अग्निवीरों के 7वीं बैच के तहत 540 अग्निवीरों की तरबियत मुकम्मल हो गई है। पासिंग आउट परेड में फौज की व्हाइट नाइट कोर के जीओसी खास मेहमान थे, जिन्होंने फौजी जवानों की मश्क और उनके फौजी मेयारात के लिए उनकी सराहना की। जीओसी ने उन्हें कौमी खिदमत में पेश रहने की ताकीद की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। फरीज़ हज अदा करने के बाद जम्मू कश्मीर के हुज्जाज किराम की वापसी का सिलसिला 2 जून मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में किए गए इंतजाम के बारे में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
1: वापस आने का सिलसिला इंशाल्लाह 2 जून से शुरू होगा। पहले कुछ दिन एक एक फ्लाइट रहेगी, 6 दिन, उसके बाद 2 फ्लाइटें या 3 फ्लाइटें होंगी और ये सिलसिला 17 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो हमारे हुज्जाज किराम 18 अप्रैल को गए थे 3 फ्लाइटों के जरिए, उनमें से एक फ्लाइट पहली जो है 2 तारीख को आएगी, दूसरी 3 तारीख को आएगी, एक फ्लाइट 4 तारीख को आएगी। तकरीबन 145 के करीब हुज्जाज किराम हर फ्लाइट में होंगे, तो हुज्जाज किराम को जो उनके रिलेटिव होंगे वो एयरपोर्ट पे ही रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट के दाखिले के लिए उन्हें ऑनलाइन हज कमेटी की वेबसाइट से पास डाउनलोड करना है गाड़ी के लिए और उस पास से वो एयरपोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। जो हुज्जाज किराम यहाँ से गए थे, एक को छोड़ के सबों ने हज किया। अरफे के दिन ही उनकी सर्जरी थी तो वो उनका वकूफ अरफात ना हो पाया। बाकी सब आजमीन इंशाल्लाह हज करके अब वापसी उनकी है।
0: SKCC श्रीनगर में कल से शुरू हुआ 2 रोजा कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का 3रा शुमारा आज भी जारी रहा। फेस्टिवल का इफ्तिता कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था। अपने खिताब में उन्होंने अदीबों और कलमकारों से ताकीद की कि वो अपनी तख्लीकात के जरिए मुस्बत सोच और रवादारी को फरोग दें। फेस्टिवल के दूसरे दिन आज भी कई सरगर्मियां और प्रोग्राम मुनक्किद हुए। अब पेश नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और इस ताल्लुक से पुलिस कार्रवाईओं पर मुश्तमिल खबरें। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं और मनुष्यात के ढांचे को खत्म करने नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। LG मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चलाचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर में इस समाजी बुराई से बचने के इकदाम के बारे में एक शहरी बुरहान जावेद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
3: पहले मैं लोगों से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि वो इस खतरनाक बीमारी से दूर रहे, क्योंकि इससे हमारे वालिदैन भी मुतासिर होते हैं और हमारी जिंदगी भी इससे मुतासिर होती है। कश्मीर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, इसी के साथ प्राइवेट बिजनेस है हमारा या कलमकारी वगैरह है, वो इनके साथ राबता करे और इनके साथ वो अपना टाइम वक्फ करे और इस बीमारी से दूर रहे। साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी अपील करते हैं कि वो ये देखे कि ये मंशियात किस जगह से उभर रहा है और उसको जड़ से खत्म कर दे।
0: इस दौरान जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम में कल यानी 1 जून को एक नशा मुखालिफ पदयात्रा का इनेकाद हो रहा है। ये पदयात्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में निकाली जाएगी। आज तंबाकूनोशी के खिलाफ आलमी दिन है। आज के दिन दुनिया भर में तंबाकूनोशी के मुजर असरात के बारे में अवाम में बेदारी पैदा की जाती है। इस सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ महकमों और तंजीमों की तरफ से कई जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। तंबाकूनोशी हर एक फर्द के लिए मुजर सेहत है। ये न सिर्फ इसका इस्तेमाल करने वालों को मुतासिर करती है बल्कि आसपास के लोगों, खासकर बुजुर्ग अफराद पर इसके मुजर असरात पड़ते हैं। इस हवाले से बुजुर्गों के अमराज के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
4: सिगरेट और हुक्का सब लोगों, खासकर बुजुर्गों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, COPD, चेस्ट इन्फेक्शन और बहुत सारे कैंसरों का सबब बन सकता है। रिसर्च के मुताबिक रोजाना स्मोकिंग सालों की सेहतमंद जिंदगी छीन लेता है। سموکنگ صرف صحت ہی نہیں بلکہ ہزاروں روپے کا مالی نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ سموکنگ کا دھواں، جسے سیکنڈ ہینڈ سموک کہا جاتا ہے، گھر کے دوسرے افراد، خاص کر بچوں اور بزرگوں اور دل یا پھیپھڑوں کے مریضوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اگر آپ سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ایک تاریخ

0: मैं एजाजा अख्तर। मई के महीने में कश्मीर में शाम के अवकात के दौरान तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और जालाबारी ने देही और शहरी इलाकों को बुरी तरह मुतासिर किया। इन मुतासिरा इलाकों में वस्ती और शिमाली कश्मीर के मुतअद्दिद देहात शामिल हैं, जहां ज़िरात और बागबानी के शोबों को नुमाया नुकसान पहुंचने की इत्तला मौसूल हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में फलों, बिलखुसूस सेब, चरी और सब्जियों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बायस किसानों और बाग मालिकान को गहरी तशवीश पैदा हुई। गैर मौसमी बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला कश्मीर के कई अजला को मुतासिर करता रहता है। ताहम इस बार शिमाली और जनूबी कश्मीर में होने वाली शदीद जालाबारी ने टंगमर्ग, लोलाब, कुलगाम, बारामूला, बडगाम और गांदरबल के इलाकों को ज्यादा मुतासिर किया। वादी में बार बार होने वाली जालाबारी ने बागात, सब्जियों के खेतों और धान की पनीरी को गैर मामूली नुकसान पहुँचाया। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बाग मालिकान और किसानों का कहना है कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान उन्हें बार बार गैर मुतवक्के मौसमी हालात का सामना करना पड़ा है, जिससे इनकी साल भर की मेहनत मुतासिर होती रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मौसमी पेशगोई के निजाम को जदीद बनाया जाए और किसानों को बरवक्त इत्तला फराहम करने के लिए मकामी सतह पर एक मौसर निजाम कायम किया जाए, ताकि मुमकिन नुकसान को कम किया जा सके। सेहत और तिबी तालीम के वजीर सकीना ईतू ने पुलवामा में एक अवामी दरबार के दौरान जालाबारी से फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया और मुतासर किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वाज़ह रहे कि 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जम्मू कश्मीर तक तवसी देने का फैसला किया गया था, लेकिन ताहाल इस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर के जमींदारों और किसानों ने हुकूमत पर जोर दिया है कि उन्हें भी फसल बीमा स्कीम के दायरे में शामिल किया जाए, ताकि कुदरती आफात की सूरत में उन्हें माली तहफ्फुज हासिल हो सके। कुदरती आफात हमेशा से किसानों के लिए तबाही का सबब बनती रही है। गुज़श्ता साल भी किसानों के लिए शदीद आजमाइश का साल साबित हुआ था और मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि नया साल भी उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत किसानों के तहफ्फुज, फसलों की बीमाकारी और जदीद मौसमी निजाम की फराहमी के लिए मौसर इकदाम करे, ताकि उनकी मेहनत और रोजगार को महफूज बनाया जा सके। तबसरा खत्म हुआ, शब बख़ैर।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: ये जो आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन, मीडियम वेव 77.8 मीटर, एफएम 17.5 मेगाहर्ट्ज़ इन बिट, रोज सज 8 बजे। سامعین محترم، آج سپید ملکک وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی پنس رتوار ریڈیو پروگرام من کی باتس مز قومس مخاطب، ولو بوزو امہ خطابک کوشر ترجمہ۔ یہ امہ رتوار پروگرامک اخت 34 قسط۔
7: میانو ٹاٹھو وطندارو نمسکار، من کی بات پروگرامس مز تہ ست ہم کلام سپت چھمے حد رس خوشی محسوس سپدان۔ ملک کن بون بون حصن مز ملکک باشند وطن چ بہبودی باپت، سماج چ بہتری باپت تتھ غیر معمولی قدم تلان زل تمن متعلق سوچان اش نو ترغیب میلان۔ آز کر بہ پروگرام شروعات ایتھلیٹکس کس مدانس مز ملک چہ اکہ اہم حصولیبی ست کہ برہ سپود جھارکھنڈس مز قومی سینئر ایتھلیٹکس فیڈریشن کمپٹیشن منعقد۔ ات مز نو ال پل اٹھو شتو ایتھلیٹو حصہ یم پور ملک پیٹھ اور آمت اس۔ ات دوران پھٹ چون بون بون ایونٹن مز چور قومی ریکارڈ۔ گرویندر سنگھ، وشال ٹی کے، تیجسوین شنکر، دیو مینا تو کلدیپ کمار، یمو کھلاڑیو بنے بون بون کیٹیگرین مز نو ریکارڈ۔ بچھس گوڑا انواری یمن سارن کھلاڑین سٹھا سٹھا مبارک کران۔ ساتھیو اک ایونٹ یمک چرچ پور ملکس من سپدان چھو سو چھو 100 मीटर

0: تُہۍ ٲسوٕ شاہ قلندر صٲبٕنۍ لیٖکھمٕتۍ کینٛہہ کلام بوزان؟ گلوکار ٲسۍ محجبیٖن زہرا تہٕ عبدالرشیٖد فراش، سٲنِس دوٚیمِس اعلانَس پرٛٲرِو یہِ آکاشوانی سرینگر ہے 8:45 ہو رہے ہیں، آئیے رخ کرتے ہیں آکاشوانی دلی کا، جہاں سے آپ ہندی میں خبریں سماعت کریں گے۔
1: نمسکار، آکاشوانی سے سماچار سندھیا کے ساتھ میں سر فیروزی۔ مکھیہ سماچار، प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक

0: बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
0: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीत कर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए।

0: थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शाह स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना

0: घटना 29 मई की रात को चुरहा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा केलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।
2: दी, ये देख कैसे?
3: Happy birthday भाई।
2: दीका?
4: हाँ, मेरा फेवरेट कलर।
3: हमेशा शॉपिंग।
5: I know माँ, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: I know ना।
7: RBI कहता है,
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
1: रोज संजय 9 बजे तो शुभोजान आकाशवाणी हुंदो श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव अक्सा सकत शुरा किलोहर्ट्स ते एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पेट। समय मोहतरम शमस फकीर सबिन लीख मितियां कलाम बोजो। आगाज करो जमीला खान ने आवाज़ सहित।

0: आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निज़ाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में BJP ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में BJP ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड में जीत हासिल की है। सोलन में BJP ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड हासिल किए हैं। मंडी में BJP ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है, जबकि BJP ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर मुनक़द हुए थे। ताहम BJP और कांग्रेस दोनों ने अपनी हामी उम्मीदवारों की कामयाबियों का जिक्र किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के तीसरे मरहले के तहत नंबर शुमारी का काम शुरू हो गया है। कमीशन ने बताया कि उन सभी अहल वोटरों को जिनके नंबर शुमारी फार्म इंतखाबी रजिस्ट्रेशन दफ्तर को 28 जून को या इससे पहले मौसूल हो गए चुनाव फहरिस्तों के मुसवदे में शामिल किया जाएगा। SIR का मकसद यह है कि कोई अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से न रह जाए और कोई नाअहल शख्स चुनाव फहरिस्त में शामिल न रहे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर निज बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज अगरतला में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब रेड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि PM स्वानिधि स्कीम के 6 साल पूरे होने के मौके पर मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रेड़ी पटरी वालों को रुपए पैसे के डिजिटल वसीले से किए जाने वाले लेन देन को फरोग देने और माली तौर पर खुद किफालत के लिए कर्जों के चेक और QR कोड वाले क्रेडिट कार्ड तकसीम किए। मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक़िद तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है, क्योंकि रियासत में साबिका TMC सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन BSF के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हस्सा जिले मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दफाई एतबार से अहम चिकन नेक राहदारी पर भी हिफाजती इंतजाम मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। यह राहदारी शुमाल मशरकी खित्ते को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाती है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मुंबई में लोकभवन में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अहिल्या देवी होलकर की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत नजर किए। इस दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर जिले में चौंडी के मकाम पर अहिल्या देवी होलकर यादगार का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामकम टाउनशिप के

फिल्मी गीतों का फरमाइशी प्रोग्राम आपकी फरमाइश जो आप ही के भेजे गए खतूत और ईमेल्स पर मबनी है लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेजबान जावेद अंद्राबी। दोस्तों कहिए कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है आप खुश होंगे, खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे। आज का प्रोग्राम भी हस्ब मामूल आप ही के पसंदीदा नगमों पर मबनी है जिसमें मौसीकी के मिले जुले रंग भी मौजूद हैं और गुलकारों की दिलकश और सहर अंगेज आवाजें भी। मौसीकी और आवाज के इस संगम का मजा लेते हैं और सुनते हैं आज के प्रोग्राम का पहला नगमा। लेकिन उससे पहले हम नए सामीन के लिए प्रोग्राम का पता बता देते हैं। पता है इंचार्ज प्रोग्राम आपकी फरमाइश मारिफत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी श्रीनगर पिन 1900001। फरमाइशी पैगाम भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है akf10pm@gmail.com। प्रोग्राम का पहला नगमा कुमार सानू की आवाज में है। फिल्म है दिल का क्या कसूर। इस नगमे को सुनने की फरमाइश की है इन दोस्तों ने। ये हैं हरदपंजू बीरवा से फारूक अहमद चौपान। इनके साथ ये दोस्त भी इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। ये हैं एजाज अहमद चौपान, पुलवामा से अफरोजा जी, शाहिना जी, जीनत, रुतबा और बिलाल अहमद, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। ये मेल हमें मिला है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ की जानिब से। भेजने वाले हैं राज पैलेस मावनाथ बंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा माव से मुन्ना भाई खरनकार, पिंकी खरनकार, आर्यन कुसना और पीहू खरनकार, जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागिनपुरे, राधेश्याम नागिनपुरे, वंदना भावना, कुसुम भाई, बाबू देवयांश और सूरज कुमार डाक से। पेश है आप सबकी पसंद पर प्रोग्राम का यह पहला गीत कुमार सानू की।

आवाज में। फिल्म है दिल का क्या कसूर, गीतकार हैं नवाब आरजू और संगीतकार नदीम श्रवण। नगमा सुनवाने से पहले ये शेर, तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो शायद ये तुम्हें मालूम नहीं, तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो शायद ये तुम्हें मालूम नहीं, महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज पे नूर आ जाता है।

0: नमस्ते प्रिंसिपल साहब हैं घर में?
1: पापा तो मम्मी के साथ बाहर गए।
0: ये किताब उन्हें दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि मैं आया था।
1: दीदी से नहीं मिलेंगे?
0: हाँ
1: ऊपर है।

अब जो गीत हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म पूर्णिमा से। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं। ये नगमा इन दोस्तों की पसंद है। ये हैं पटेल नगर मलूद से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, अर्जू जजोरिया और गुड्डू। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर जाधव खर्चे, डॉक्टर प्रशांत राज जाधव, कुमार सुनचीत वाहल, कुमार प्रथमेश देशमुख और कुमारी प्रणाली देशमुख। ये मेल आया है कुमारपुरा सहारनपुर से। भेजने वाले हैं सईद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम। तो दोस्तों पेश है आप सभी की फरमाइश पर फिल्म पूर्णिमा से नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। नगमा निगार हैं गुलजार, मौसीकार कल्याण जी आनंद।

समीन, आप इस वक्त फिल्मी नगमों का फरमाइशी प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। आपकी फरमाइश आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब जो नगमा आप सुनेंगे उसे मोहम्मद रफी ने गाया है फिल्म ख्वाब के लिए। नगमा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, लोवी आलिया और अयान बाबू, पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशवी वर्मा। ये मेल हमें मिला है गंज टुंडवारा उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं मास्टर केलो परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाज शेख, दानिश शेख और अमन अफरीदी। ये फरमाशी ईमेल हमें मौसूल हुआ है हिंगोली महाराष्ट्र से। ये हैं शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदादा। तो दोस्तों, आपको इंतजार होगा अपनी पसंद का नगमा सुनने का। लीजिए, समाप्त कीजिए फिल्म ख्वाब से ये नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंदर जैन। लीजिए, समाप्त कीजिए।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब फिल्म छाया से एक नगमा सुनते हैं। आवाजें लता मंगेशकर और तलत महमूद की हैं, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और मौसीकार सलील चौधरी। इस नगमे को पसंद फरमाया है वारागाम बीरवास से नई मलिक, हिमू जान, ताहिरा, रजिया जान, तब्बू रानी, ड्राइवर मोहम्मद शफी, खालिदा जान, बिल्किसा जान, अशरफ डार, मंजूर डार, पीर अल्ताफ खान, तनवीर खान और अब्दुल अहद खान ने। तो दोस्तों लीजिए समाप्त कीजिए अपनी पसंद का नगमा फिल्म छाया से।

दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर पे आपने आनंद फिल्म से नगमा सुना मुकेश की आवाज में। गीतकार थे योगेश और संगीतकार सलील चौधरी। आपको प्रोग्राम का पता बता देते हैं। पता है इंचार्ज प्रोग्राम आपकी फरमाइश, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्रीनगर, पिन 19001। हमारा ईमेल आईडी है akf10pm@gmail.com। इसके साथ ही आज के आपकी फरमाइश प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अगले एतवार को रात 10 बजे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इस दुआ के साथ इजाजत। आप खुश रहें, खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। शब्बा खैर।

आप समाप्त कर रहे थे आप ही के भेजे हुए खतूत और ईमेल से आरास्ता फरमाशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपकी फरमाइश। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे जावेद अंद्राबी।

0: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्स और FM 103.5 मेगाहर्ट्स पर। आप हमें DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी समाप्त कर रहे हैं। स्टूडियोज़ की घड़ियों में शब के 11 बज रहे हैं। अब आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली का, जहां से आप खबरें समाप्त करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया।

0: है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Myint Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratanlal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party

इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तुम सुनो या ना सुनो, हाथ बढ़ाओ ना बढ़ाओ, तुम सुनो या ना सुनो, हाथ बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, डूबते डूबते एक बार पुकारेंगे तुम्हें। कभी कभी ऐसा हो जाता है रिश्तों में, जब हम ऐसे मुकाम पर आ पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि बस अब ये रिश्ता खत्म, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। कभी कभी बस एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटी सी माफी सब कुछ ठीक कर देती है। और ये कहने के साथ साथ चलिए सुनते हैं अगला गीत, महेंद्र कपूर की आवाज में, और फिल्म है गुमराह।

यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। मैं हूं आपकी रेडियो सखी रेणुका और कार्यक्रम चल रहा है गीत मेरे मनमीत। जिगर मुरादाबादी कहते हैं, हमें मालूम है हमसे सुनो मशहर में क्या होगा, हमें मालूम है हमसे सुनो मशहर में क्या होगा, सब उसको देखते होंगे वो हमको देखता होगा। अगला गीत किशोरदा और लता जी की आवाज में।

इंसानी फितरत भी कितनी अटपटी मालूम होती है ना। पूरे दिन बस हम यही ख्याल करते रहते हैं कि कब रात होगी, कब हम आराम करेंगे, और जैसे ही रात होती है तो या तो हम बीते दिनों के बारे में सोचते हैं या आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। खैर, अब इंसानी फितरत को बदला तो नहीं जा सकता, पर हाँ, हम आपको गाना जरूर सुनाएंगे। और अगला गीत है मेरा नाम जोकर से, और इस गीत को गाया है मुकेश जी ने।

गुलाम हुसैन साजिद कहते हैं, एक ख्वाहिश है जो शायद उम्र भर पूरी ना हो, एक ख्वाहिश है जो शायद उम्र भर पूरी ना हो, एक सपने से हमेशा प्यार करना है मुझे। खैर, कुछ सपने होते ही ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी भर हम प्यार करते रहते हैं। अगला गीत पेश है लता जी और मोहम्मद रफी की आवाज में।

अगला गीत पेश है लता जी की आवाज में और फिल्म है महबूब की मेहंदी। और लता जी हम सबसे एक सवाल पूछ रही हैं और शायद ही इस सवाल का जवाब हम में से किसी के पास होगा। खैर, अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा।

उबैदुल्लाह अलीम कहते हैं, जो आ रही है सदा गौर से सुनो उसको, जो आ रही है सदा गौर से सुनो उसको, कि इस सदा में खुदा बोलता सा लगता है। तो आप भी गौर से सुनिए हमारे आखिरी गीत को, जिसे गाया है आशा ताई और किशोर दाने, और फिल्म है बरसात की एक रात।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम समाप्त करते हैं अपना कार्यक्रम और अगली बार मैं आपसे बहुत जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और शुभ रात्रि, शबा खैर। और हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी आ रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं सुरभि आपके साथ। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां और दिल को छू लेने वाले एहसास, और आइए कुछ पल सुकून के जिसमें हम और आप बांटते हैं अपनापन और सुनते हैं वो गीत वो नगमे जो कहीं ना कहीं हमारे दिल को मन को एक मुस्कुराहट दे जाते हैं। तो कभी किसी के प्यार के दो शब्द पूरे दिन को रोशन कर देते हैं और किसी की एक मुस्कुराहट जिंदगी को पूरी खुशी दे जाती है। तो चलिए बहुत ही प्यारी प्यारी बातों के साथ, अपनेपन के साथ, छोटी छोटी बातें जो हमारी और आपकी दुनिया को खूबसूरत बना देती हैं, आगाज करते हैं निशिगंधा का। और सबसे पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, तीसरी मंजिल फिल्म से।

और अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जब आप इसे सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये गीत कानों में उतर के जैसे कि शाम ने चुपके से तेरी याद का आंचल ओढ़ लिया हो, हवा में कोई पुरानी मिठास खुल गई हो, दिल उन बातों तक लौट आता है जिन्हें कभी शब्दों में कहा ही नहीं गया, तुम पास नहीं होते फिर भी हर धड़कन में तुम्हारा नाम एक अधूरी धुन की तरह बजता रहता है, लगता है शायद यही प्रेम है, किसी के ना होने के बावजूद भी हर पल उसका साथ महसूस होना और ऐसे लगना जैसे कोई गीत कहीं दूर बज रहा हो, उसकी हर पंक्ति बस तुम्हारी ही कहानी कह रही हो। हम पांच फिल्म का ये गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

निशिगंधा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। और प्यार की कहानी में अक्सर दो लोग होते हैं और प्यार शुरू दो लोगों से होता है। और कुछ रिश्ते जो आवाज नहीं करते, केवल धीरे से मन में उतर जाते हैं। और ऐसे में अगर उसकी याद आए और चांदनी रात हो, जहां चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में ठहरा हो और तारे भी खामोशी में मोहब्बत भरी दास्ता सुनाने निकले हों, ऐसे में उसकी याद आ ही जाती है। चांदनी रात में हवाएं जब धीरे धीरे बहती हैं, तो दिल यही चाहता है कि कोई अपना पास हो और ये रात खूबसूरत हो जाए। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत।

कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिसे देखकर दिल खुद ब खुद शायरी करने लगता है, और जब खूबसूरती में मासूमियत खुल जाए तो चांद भी फीका लगने लगता है।

निशिगंधा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और चलिए अब चलते चलते बॉबी फिल्म का ये गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र की आवाज में।

इसी गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UPT 4, शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार और तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित। साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जब दिल सच्चे स्नेह से जुड़ जाता है तब किसी की आवाज शब्दों तक सीमित नहीं रहती बल्कि खूबसूरत एहसास बनकर दिल में बस जाती है। एक ऐसा एहसास जो मन को छूकर अपने पन की ओर ले जाता है और इसी भाव को बहुत ही सुंदरता से व्यक्त करते हुए कुछ गीत हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। प्रोग्राम है गीत सुहाने, मैं हूं सुरभि आपके साथ। जहां प्रेम में समर्पण हो, अपनापन हो और बिना शर्त साथ निभाने की भावना हो, तब क्या ही कहने हैं। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। और चलिए अब हम और आप मिलकर सुनते हैं रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज में जब जब फूल खिले फिल्म का ये गीत।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। यादें जब दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो हर पल किसी अपने की कमी महसूस होने लगती है और इंतजार की ये घड़ियां लंबी लगती हैं। मन बार बार उसी को याद करता है। प्यार में दूरी चाहे कितनी भी हो, एहसास हमेशा करीब रहते हैं। दिल की तड़प कभी खामोश नहीं होती और वो हर धड़कन में अपना असर छोड़ जाती है। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है चरस।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं सुरभि। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसके साथ सिर्फ साथ नहीं होता बल्कि वो पूरी दुनिया बन जाता है, जिसकी मुस्कान में खुशी और जिसके साथ में सुकून खुद ब खुद मिलता है। और ये रिश्ता तब और खूबसूरत बन जाता है जब ये प्यार का रिश्ता हो जाए, इसमें अपनापन और विश्वास गहराई से जुड़ जाए। कुछ एहसास शब्दों से नहीं दिल की धड़कनों से समझे जाते हैं। इन्हीं मीठे जज्बात को बड़ी खूबसूरती से पिरोता है ये गीत। फिल्म है साथी

सफर को और कुछ दुश्वार करते हैं, सफर को और कुछ दुश्वार करते हैं, अभी मंजिल को तुम इनकार करते हो। ये क्या है कि उम्र भर चारा गरी की, किसी को इश्क में बीमार करते। तो एक दिन तुमसे खुशबू आने लगती, अगर तुम भी फूलों का कारोबार करते। तमन्ना है ये दिल में तेरी खातिर, किसी दिन हम भी दरिया पार करते। सफर को और कुछ दुश्वार करते, अभी मंजिल को तुम इनकार करते। इसी के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। आपसे मुलाकात होगी रात सुरमई में 2:10 पर। अब से कुछ ही देर में सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी

0: वाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं सुरभि आपके साथ। दर्द सीने में छुपाए रखा हमने माहौल बनाए रखा, दश्त में आई बला टलने तक शोर चिड़ियों ने मचाए रखा, वरना तारों को शिकायत होती हमने हर जख्म छुपाए रखा।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, सिर्फ FM गोल्ड पर।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपके साथ सुरभि। क्या खूब कहा है किसी ने कि अफसाना ए हयात को दोहरा रहा हूं मैं, अफसाना ए हयात को दोहरा रहा हूं मैं, यूं अपनी उम्र रफ्ता को लौटा रहा हूं मैं, एक एक कदम पे दर से वफा दे रहा हूं मैं, ये किसकी जुस्तजू है किधर जा रहा हूं मैं, यूं अपनी उम्र रफ्ता को लौटा रहा हूं मैं।

इश्क में जहां से गुजरते हैं गुजरने वाले, इश्क में जहां से गुजरते हैं गुजरने वाले, मौत की राह नहीं देखते मरने वाले, आखिरी वक्त भी पूरा न किया वादा ए वस्ल, आप आते ही रहे मर गए मरने वाले। जान देने का कहा मैंने तो हंसकर बोले, जान देने का कहा मैंने तो हंसकर बोले, तुम सलामत रहो हर रोज के मरने वाले, इश्क में जहां से गुजरते हैं गुजरने वाले, मौत की राह नहीं देखते मरने वाले।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अब दीजिए सुरभि को इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। वे निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।

0: मलयालम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि उनकी सेना ने दक्षिणी लबनान में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ब्यूफोर्ड किले पर कब्जा कर लिया है। इसराइल की सेना ने कहा कि ब्यूफोर्ड रिज और वादी अल सलूकी क्षेत्रों में प्रवेश के बाद इस स्थल पर कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और हिजबुल्ला की क्षमताओं को कमजोर करना है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लबनान के जहरानी नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को खाली करने को कहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar on a 5-day visit to India on Saturday. A correspondent

समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की, लेकिन आप सबका प्यार भरा स्वागत करती हूं मैं कार्यक्रम हमराही में।

अभी आपने गीत सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। रात की खामोशी में जब दिल किसी अपने को पुकारे तो हर धड़कन बस एक ही नाम गुनगुनाए। मोहब्बत वही है जो बिना कहे भी दिल को समझ जाए।

रातों में कुछ यादें यूं दस्तक देती हैं, जैसे कोई दूर होकर भी बहुत करीब है। और बस दिल यही कह उठे, तेरे बिना ये रात अधूरी सी है।

तस्वीरों में कैद मोहब्बत जब ख्वाबों से बाहर आती है तो हर धड़कन चांदनी बनकर दिल की महफिल सजाती है।

कभी कभी दोस्ती से शुरू होने वाले रिश्ते, कभी कभी दोस्ती से शुरू होने वाले रिश्ते धीरे धीरे प्यार की सबसे हसीन दास्ता बन जाते हैं, जहां हर बार में अपनापन और हर खामोशी में एहसास होता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हम राही। जब किसी की मुस्कान रात की तन्हाई में भी सुकून दे तो समझ लेना दिल को प्यार हो चुका है और फिर हर सपना उसी के नाम हो जाता है।

कुछ रिश्ते चांद और चांदनी जैसे होते हैं, दूर होकर भी हमेशा साथ रहने वाले, जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं पूरी जिंदगी बन जाता है। और छोड़ के जा रही हूँ आपको कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ, जल्द मिलूंगी 4:10 पर लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने

0: के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे लोकभवन में होगा। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar, on a 5-day visit to India on Saturday. Our correspondent reports that Myanmar lies at the confluence of India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies. The official visit of Myanmar President to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles will co-chair the second India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi today. The Ministry of Defence said that during the dialogue, discussions will focus on strengthening defence and security cooperation, enhancing military interoperability and industry collaboration, including co-development and co-production opportunities.

एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है कार्यक्रम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस गीत के साथ। गीत है फिल्म संजोग से लता मंगेशकर की आवाज में और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म आपकी कसम से किशोर कुमार की, आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार रविंद्र जैन, गीतकार रविंद्र जैन। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म परिंदा से सुरेश वाडकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में, संगीतकार आर डी बर्मन।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म अनुरोध से किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत पैरीलाल।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म तीसरी मंजिल से मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीतकार आर डी बर्मन।

छोड़े जा रही हूँ अब मैं आपको कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ। गीत है फिल्म मान मिलो सजना से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउनलाइन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा, संपर्क व्यवस्था और